0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: हे नीता, तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है?
3: कौन? ओ सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं?
2: तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से। मैं खुद समझ नहीं पा रहा, उसकी एक नजर ही काम कर गई। मैं बता नहीं सकता नीता, वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे। क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर, सो सिंपल, सो इनोसेंट। और फिर उसका इस तरह चले जाना, आई मीन, जस्ट लेफ्ट सो मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, यू नो।
3: Too much. Oh, wow, Raj, that is so romantic. अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती।
2: नीता, you've got to help me. मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही होगी।

सोनिया, मैं जानता हूं कि तुम बहुत कुछ सह चुकी हो। तुम पर क्या बीती होगी इसका तो शहर में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सोनिया, तुम भूल रही हो कि जिंदगी अब भी तुम्हारे साथ है।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ टीना से। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। जरूरी चीजों पर नई छूट लागू होने के बाद 3 दिन बाद जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शिल के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी कांचूना, कॉर्न बीफ, कॉर्न मटन, लचन मीट, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीजें इस छूट में शामिल है। और सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चुना मछली के सेक्शन में जो नई सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। मंत्रिमंडल ने नोट किया कि प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मॉरिशस और सेशल्स के बीच मौसम परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दोनों देशों में हाई कमीशन खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकती है। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है। और विदेश में दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर बढ़ती सख्ती के बीच माफिया ने नया रास्ता तलाश किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य क्रू सदस्यों को अपने नेटवर्क में फंसाकर उन्हें तस्करी के लिए कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और अंत में मौसम का हाल।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: हमारे इलाके पर हल्की एवं अस्थिर हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात्रि के समय भी आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 13-16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के बड़े समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 6:46 पर और सूर्यास्त शाम के 5:42 पर।
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
4: Radio Musti.
5: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस।

घड़ी मिला लीजिए समय मॉरिशस में सुबह के 6:03 हो रहे हैं। सभी दोस्तों को और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। नई सुबह नए दिन का आगाज कीजिए AM2 MBC रेडियो मॉरिशस के साथ। सुबह के 6:04 हो रही है। आज है शनिवार का दिन 4 जुलाई साल 2026। सो आज का ये नया दिन, सब को बहुत बहुत मुबारक हो और बेशक हमारा आपका साथ रहेगा अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। और अगर साथ देने का वादा करते हैं तो बता देते हैं कि अभी आप सुनेंगे कुछ क्षणों में वैदिक नाथ प्रोग्राम, उसके बाद CB की ओर से कुछ विज्ञप्तियाँ, फिर 6:15 कुछ भक्ति गीत, फिर 6:30 पूरा समाचार बुलेटिन, 6:30 होगा पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल, स्पोर्ट्स रिव्यू और मैगजीन दिलों पर, फिर 7:00 सुबह का नजराना, 8:15 ज्ञान सरोवर, 8:00 सुबह को आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, शोक समाचार भी, फिर 8:15 तक होगा सुबह का नजराना पार्ट 2 और 9:00 हमारा आपका साथ पूरा हो जाएगा। तो इस नए दिन की शुरुआत कीजिए नए विचारों के साथ, अच्छे अच्छे विचारों के साथ, और अपने आप से कहिए कि हे प्रभु, आज जो काम मैं करूँ मुझे उस काम में सफलता मिले और मैं जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। तो हम यही चाहते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आज आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, मुस्कुराते हुए इस दिन को बिताएं, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम ना हो आपके जीवन में, बस प्यार ही प्यार हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, बाहर ही बाहर हो, और सभी लोग कहें वाह आज सैटरडे है, क्या बात है। चलिए विचारों के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की ओर, जो है वैदिक नाथ गहलोत राजपूत महासभा की ओर से।

0: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल करूं
0: वैदिक नाथ
2: जय गायत्री माता
3: ओम स्तुतां

आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्तुति करते हम वेद जानकी, जो माता है प्रेरक पालक, पावन करती मनुज मात्र को, आयु बल संतति पशु कीर्ति, धन मेधा विद्या का दान, सब कुछ देकर हमें दिया है, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान, मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान। ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वैदिक नाद के सभी श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते और सुनने के लिए हृदय से स्वागत के साथ धन्यवाद। श्रोताओं, आज का विषय है महर्षि दयानंद जी द्वारा रचित आर्योदिश्य रत्नमाला पुस्तक पर एक विचार। महर्षि दयानंद जी ने इस पुस्तक में 100 शब्दों के अर्थ लिखे हैं। आज आपके साथ प्रारंभ से क्रमशः विचार करते हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। पहला शब्द ईश्वर। ईश्वर का अर्थ महर्षि दयानंद जी इस प्रकार से करते हैं, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध न्यायकारी दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, उसको ईश्वर कहते हैं। श्रोताओं, यह है महर्षि दयानंद द्वारा प्रस्तुत जो है ईश्वर का अर्थ। अब इस विचार करते हैं, प्रारंभ में लिखते हैं गुण कर्म स्वभाव। परमात्मा के गुण, परमात्मा के गुण यह बताया जा रहा है, परमात्मा अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ होता है जो एक, अर्थात वो एक ही है, वो दो नहीं है। द्वितीय दो, अद्वितीय जो दो नहीं है अर्थात एक है, अर्थात अद्वितीय का अर्थ हुआ यहाँ पर परमात्मा एक है। सर्वशक्तिमान का अर्थ, सर्वशक्तिमान का अर्थ यह श्रोताओं, ऐसा नहीं कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सृष्टि क्रम के अनुसार कर्म करता है, ये उनके गुण हैं। सृष्टि कर्म के अनुसार अर्थात जैसे सृष्टि में हम देखते हैं वर्षा ऊपर से होती है, तो वर्षा ऊपर से ही होगी, यह है सृष्टि क्रम। परमात्मा सर्वशक्तिमान का अर्थ नहीं हुआ कि और एक परमात्मा अपने से बना सकता है, ऐसा सृष्टि क्रम विरुद्ध है। तो यह है सर्वशक्तिमान, और निराकार आप तो जानते हैं। सर्वव्यापक का अर्थ यह हुआ वही सर्वव्यापक हो सकता है जिसका कोई आकार नहीं, और अनादि इत्यादि ये उनके गुण हैं। अब उनके जो हैं कर्म, कर्म यहाँ श्रोताओं परमात्मा मात्र 5 कर्म करते हैं। पहला कर्म परमात्मा जो करता है वह है जगत की उत्पत्ति, संसार को बनाता है, और दूसरा कर्म संसार को वो चलाता है, और तीसरा कर्म संसार का विनाश अर्थात समाप्त करता है। ये 3 कर्म हुए परमात्मा के, संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार को समाप्त करना, ये 3 कर्म। और चौथा कर्म परमात्मा के जीव इसे कर्म करता है, उनके पुण्य और जो है पाप दोनों के जो है ठीक ठीक उनके फल देना,
यह चौथा काम। और पांचवा काम जो है यह है, परमात्मा ज्ञानी है अर्थात उनके पास ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? राजा रानी की कहानी नहीं है परमात्मा के यहाँ, उनके पास जो है मानव कल्याणार्थ के लिए, मानव के हर प्रकार जीवन के सुख सुविधा के लिए परमात्मा के यहाँ उनके जो ज्ञान है उसको हम वेद नाम से जानते हैं। वेदों का ज्ञान परमात्मा देता है। तो श्रोताओं यहाँ ध्यान देना, परमात्मा जो है ये पांच कर्म करते हैं अर्थात संसार को बनाना, संसार को चलाना और संसार को समाप्त करना, ये तीन, और जीव के कर्म अनुसार फल देना और वेद का ज्ञान देना। ये पांच कर्म ही, जो ये पांच कर्म करे वो परमात्मा। तो यहाँ विस्तार से यहाँ पर परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव,

के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। और परमात्मा जो है वे इन पांच कर्म के अनुसार के अतिरिक्त और कोई कर्म ऐसा नहीं हमने देखा है या सुना है या कहीं पढ़ा है। महाश्रद्धान के अनुसार ये आपको ईश्वर के बारे में कुछ बातें बताई गई। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, महत्वपूर्ण शब्द हैं जो महर्षि जी यहाँ पर लिखते हैं, धर्म। धर्म का अर्थ महर्षि जी लिखते हैं अपनी पुस्तक में, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना, जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। महाश्रद्धानंद जी महाराज यहाँ पर धर्म के अर्थ हिंदी में सरलता से यहाँ पर लिखे हैं। और आज हम धर्म विषय को लेकर के हम अपने अनुसार कुछ बातें से बना देते हैं, परंतु शास्त्रोक्त अर्थात वेद अनुकूल जो हैं बात इस प्रकार से हैं। पहले जो हैं लिखते हैं प्रथम पंक्ति में, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, ये हमारा परम धर्म बनता है। हमें जानना है कि परमात्मा की आज्ञा क्या है जिसका हम पालन करें। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोलते हैं, उनमें से जो तीसरा मंत्र है वह तीसरा मंत्र या आत्मदा बलदा, उस मंत्र का अर्थ जब वहाँ हम देखते हैं, महाश्रद्धान जी वहाँ पर लिखते हैं कि परमात्मा की आज्ञा का पालन, अर्थात वहाँ पर स्पष्ट करते हैं बात इस प्रकार से यहाँ पर कि परमात्मा की भक्ति अर्थात उनकी आज्ञा का पालन। तो परमात्मा की भक्ति आज्ञा का पालन, अब उसकी आज्ञा का पालन ही भक्ति है, भक्ति ही परमात्मा की आज्ञा का पालन है। तो प्रारंभ में जब सृष्टि की रचना हुई वहाँ पर परमपिता परमात्मा की आज्ञा क्या रही, परमपिता परमात्मा जिस संसार को बनाया न बाल्यावस्था में न वृद्धावस्था में मनुष्य को उत्पन्न किए, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ युवावस्था में मनुष्य को उत्पन्न किए और वहाँ परमात्मा ने आज्ञा दी कि अब यहाँ से जो हैं आप जो हैं इस संसार को चलाएं, अर्थात इस संसार में जैसे मैं परमात्मा प्रारंभ में युवावस्था में अर्थात जो है उत्तम जो है जनता इस संसार को दिया, आप भी मनुष्य इस संसार में उत्तम संतान उत्पन्न करो। तो ये है परमात्मा की आज्ञा का पालन अर्थात उसकी भक्ति, संसार को उत्तम संतान देना। आगे बढ़ते हैं, धर्म की बात चल रही है, पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित आदि जहाँ पर ये बात आती है, सब बातें हैं वेद के अनुसार होना चाहिए। वेद के अनुसार ही महर्षि कनाद जी वो लिखते हैं कि धर्म का अर्थ वो बताते हैं, यत अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक शरीर आध्यात्मिक आत्मा की बराबर उन्नति को धर्म कहा जाता है, उसकी सिद्धि, ये महर्षि कनाद जी का विचार है। महाश्रद्धानंद जी यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि धर्म अर्थात जितने वेद के अनुसार कर्म है वो धर्म धर्म है। और इसी पुस्तक में जब आते हैं अधर्म की बात, तो अधर्म की बात जो है इससे जो विरुद्ध, अगर आप धर्म के अनुसार अर्थात वेद के अनुसार अपना कर्म नहीं करते हैं तो उसको हम अधर्म माना जाएगा, अर्थात वो धर्म नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं जो है पुण्य, आज हम पा रहे हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। महर्षि लिखते हैं पुण्य का अर्थ जिसका स्वरूप वेद विद्या शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना, उसको पुण्य कहते हैं। पुनः यहाँ पर श्रोताओं, जिसका स्वरूप वेद विद्या शुभ गुणों का दान, हम दान पुण्य करते हैं तो कि हमने अच्छा काम किया, हमने पुण्य का काम किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वेद विद्या शुभ गुणों का दान, हमारा मनु महाराज जी अपने मनुस्मृति में

दर्शाए हैं, लिखते हैं कि सब दानों में महादान क्या है, सर्वेशामेव दानानाम विद्यादानम विशिष्यते। सब दानों में वेद विद्या अर्थात विद्या का दान महान स्थान रखता है, आज भी जो है इसकी आवश्यकता है। अभी हमने पीछे सत्यार्थ प्रकाश मार्क्स मिसमन में बहुत बल दिए हमने कि जो है वर्तमान परिस्थिति को हम देखते हैं, आज हमारे युवाओं को क्या चाहिए, हमारे युवाओं को चाहिए वेदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान चाहिए। मैंने निवेदन किया था पिछली बार कि मैंने युवाओं को सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास को बहुत विचार पूर्वक पढ़ना चाहिए, वहाँ पर दर्शाए गए हैं कि किस प्रकार से युवाओं का जो है कर्तव्य समाज के प्रति। तो श्रोताओं, आज हमने यह प्रयास किया वैदिक नाथ के माध्यम से आप तक महाशिदान के विचारों को, उन्होंने जो इतने वर्ष पहले दर्शाए अपनी पुस्तक में, आज हमने प्रयास किया आप तक पहुंचाने के लिए। आपने ध्यान से इन वादों को ध्यान से होकर के आपने श्रवण किया, आपके ध्यान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूर्ण आशा विश्वास के साथ हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, जिसे ध्यान से आपने सुना वैसे अपने जीवन में उसको महान स्थान दें। और एक बार ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता।
2: सुबह के 6:19 हो रही और आप जुड़े हुए AM2 रेडियो मॉरिशस के साथ। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। वाकवा वीरूबी रोड और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 3:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सैयद हुसैन रोड, फिनिक्स, सैयद हुसैन रोड, मौसलमो, गबर्दन, फ्लैट सनासी और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 4:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फिर प्लेंदी पापाई मुस्के पचिसरी जायपाल रोड और आसपास के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 3:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कोई गाजी बुआ पियोले तेरूज बुआ मौशों ममजेलो भोरत लेन लाकवाजे मोतालोंग मौसलमो बसावन मौसलमो तारास सितेदुल बातिस लेन मौसलमो शेख दाऊद मौसाबरी और मौसलमो रिचवुड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 4:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फिर NHDC ग्लेन पार्क नंबर 3 के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 11:30 से दिन के 12:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और ग्लेन पार्क, मीरन लेन और खामचन लेन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 11:00 से दोपहर बाद के 2:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और ग्लेन पार्क, मौसलमो एडू नंबर 1, मौसलमो एडू नंबर 2 के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से दोपहर बाद के 2:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रिविया जी रॉम्पर, रोट रॉयल, कोकिनबर्ग, विनर्स, फोकियाबक्स और MCB के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 4:00 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में पुत्र दो हमलेट, लेस्पेरेंस पिटों के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 3:00 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी।

और जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और जब भी आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो प्रभु का नाम लीजिए। भगवान का नाम लेने से, परमपिता परमेश्वर का नाम लेने से सब कार्य सफल होता है। जितनी मुश्किलें हैं वो मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं।

हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। इसी महामंत्र का जाप करते रहिए और प्रभु का आशीर्वाद पाते रहिए। इसी गीत के साथ ही, इसी भक्ति गान के साथ यह जो म्यूजिकल कार्यक्रम है यहीं पर समाप्त होता है। याद है ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल, मैगजीन दे लोम्प्लॉ, और हमारी आपकी मुलाकात होगी 7:05 पर विद द मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना। सुनते रहिए प्यार के साथ MBC रेडियो मॉरिशस। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:30 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बजट 2026-2027 के परचेसिंग पावर शेल के तहत सब्सिडी लागू होने के बाद सुपरमार्केट में खरीदारी बढ़ी है। कुछ जरूरी सामान सस्ते हुए हैं, लेकिन अन्य उत्पादों के दाम बढ़ने से कुल असर मिला जुला है। सोशल मीडिया से कमाई बढ़ने पर सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नया टैक्स लागू करने की तैयारी कर रही है। फाइनेंस बिल को फाइनलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जिसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। विदेश में ड्रग्स तस्करी गिरोह अब एयरलाइन क्रू मेंबर्स को निशाना बना रही है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें फंसाकर कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रही है। और अब समाचार विस्तार से। ज़रूरी चीज़ों पर नई छूट लागू होने के 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शेल के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, लंचन मीट, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीज़ें इस छूट में शामिल है। सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चूना मछली के सेक्शन में, जो नई सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। ग्राहक अब पहले की तुलना में अधिक मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। जहाँ पहले एक यूनिट ली जाती थी, अब 2 ली जा रही है। हालांकि सर मिला जुला है, कुछ उत्पाद सस्ते हुए हैं, लेकिन जो सब्सिडी में शामिल नहीं है, उनके दाम बढ़ने से कुल मिलाकर कीमतों में बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। इसी बीच खरीदारी में जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, वो अस्थायी भी हो सकती है या आगे चलकर स्थिर भी हो सकती है। सुपरमार्केट में चंद ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
2: C'est une demande première qui me félicite sa gouvernement pour prendre une décision pareille. Surtout quand nous connaissons une devise très dépréciée vis-à-vis de foreign currency. Et qui se continue pareil et pas les autres détractés par certaines bonnes personnes.
3: Pour moi, franchement, il y a une banque qui est 1014 roupies par tout le monde qui servit sa banque.
4: Un prix l'an prochain. Et il varier de supermarché à supermarché. Donc, il y a encore beaucoup à faire.
5: Du 1917 roupies. Dire nous quoi nous pouvons vivre nous-mêmes. Qui dit BBC et BBC pour ici, pour y commander par l'autre côté. Maurice, on n'est pas mangé au bâton, boîte sardine. Nous comptons un bout de la viande, poule, nous faisons des fois aussi. Mais c'est un peu pour tout le monde qui tue.
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामग्राम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने ट्रियोली स्थित रविन्द्रनाथ गाबागन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन का आधिकारिक शुभारंभ किया। स्टेडियम के दोबारा खुलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। इस बार उन्होंने 2015 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि यही व्यवस्था जारी रहती तो 2050 तक पेंशन पर होने वाला खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 8% हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार IMF का ये अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरिशस में पेंशन पर होने वाला खर्च आज ही GDP के 8% के आंकड़े को पार कर चुका है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
6: Vous savez, quand vous amenez un dictionnaire, mon temps qui veut dire insoutenable. Vous connaissez qui a IMF dire en 2015, il y a ça. Hein? Il dit qu'en 2050, si continue comme ça, nous vous payez 8% du PIB, juste nos pensions. Il dit en 2050, vous faites autre connaît, en 2025, l'infini dépasse 8%, 8.1%. Mais qui m'a payé ça? Vous connaissez en 2010, pension, tu peux coûter nous 5,97 milliards. Aujourd'hui, vous connaissez combien? 55 milliards roupies. Et projection, si en 2035, nous ne pouvons pas faire un an, il peut coûter nous 100 milliards.
1: प्रधानमंत्री ने मध्यपुर में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़ रहे असर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के चलते आयातित वस्तुएं महंगी हो गई है। उनके अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन SCC जो पेट्रोल, रसोई गैस, चावल और आटे का आयात करती है, इस युद्ध के कारण 3.2 बिलियन रुपये के कर्ज में पहुंच गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों ने मॉरिशस की आर्थिक स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश में बदलाव लाने और मॉरिशस को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वैसे मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मॉरिशस और सेशल्स के बीच मौसम परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दोनों देशों में हाई कमीशन न खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अजीत डोवल से मुलाकात की। उन्होंने भारत की तरफ से विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, डिजिटल सरकारी सेवाएं, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह विकास और हिंद महासागर इलाके में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी कि गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए एक अलग संस्थान बनाया जाएगा। ये संस्थान रहने की सुविधा और शिक्षा दोनों देगा और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ स्वतंत्र रूप से काम करेगा। और मंत्रिपरिषद ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन की गठन का भी जायजा लिया। इस आयोग के चेयरपर्सन विनोद बुलेल होंगे और वाइस चेयरपर्सन अफुन च्वी यू चोंग होंगी। यह आयोग विशेषज्ञों के तहत संविधान में संभावित सुधारों और बदलावों का अध्ययन करेगा। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकती है। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है।

0: डांस, खाना पकाना, फैशन या हास्य, सोशल मीडिया आज कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक वास्तविक मंच बन चुका है। कुछ लोगों के लिए ये आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने जुनून को दुनिया के साथ साझा करने का माध्यम है, वहीं दूसरों के लिए ये एक नए पेशेवर अवसर का रास्ता खोलता है। वंदना किनू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में टिकटॉक ने उन्हें तनाव से उबरने और अपना आत्मविश्वास वापस पाने में मदद की। आज यही जुनून उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने तक ले आया है। एक और उदाहरण है स्वीट एंड सॉल्टी डिलाइट्स का। टिकटॉक की बदौलत इस व्यवसाय को अच्छी पहचान मिली। प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए वीडियो ने इसके उत्पादों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, नए ग्राहक दिलाए और कारोबार का विस्तार करने में मदद की। आज ये कंपनी कई लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS से जुड़ी नई बजटीय व्यवस्था को लेकर इसके संचालक के मन में कई सवाल हैं। ये कर कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब उपलब्ध नहीं हैं।
1: Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes et des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux de nos jours. Vu qu'on est dans le 20e siècle, il y a beaucoup de monde qui sont actifs là-dessus et qui vendent des choses. Et puis, je voulais partager mes produits.
0: Digital अवसरों और नई कर संबंधी जिम्मेदारियों के बीच सोशल मीडिया की दुनिया आर्थिक परिदृश्य को लगातार बदल रही है। ये एक तेजी से विकसित होता क्षेत्र है, जिसे अब डिजिटल ठेकेदारों के लिए ज्यादा स्पष्ट नियमों और बेहतर नियामक ढांचे की आवश्यकता है।
2: मॉरिशस प्रिजन सर्विस ने जेलों के अंदर सिगरेट और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। जेल कमिश्नर राशिद अली बीकन ने कहा कि अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे अपने कर्मों का जवाब देना होगा। उन्होंने जेलों में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार तलाशी और नियंत्रण अभियान जारी रखने की बात दोहराई। ये बात उन्होंने 3 जुलाई को कही जब जेलों में जब्त किए गए 1000 से अधिक मोबाइल फोन, 2084 सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, सिगरेट, देसी हथियार और अन्य प्रतिबंधित सामान को नष्ट किया गया। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
3: पेय पदार्थ का एक कान जो खासकर मीठा ही है और काफी लोकप्रिय भी, गाड़ी की चाबी, मोबाइल फोन, इन्हें छिपा कर रखा गया था। ये उन कई सामानों में शामिल जिन्हें 7 वर्षों तक जमा किया गया। कैदखानों से इन्हें हटाने का इरादा रखते हैं। प्रिजन्स कमिश्नर राशिद अली बीकन ने कहा,
4: Il y a certaines prisons qui se tiennent à une certaine proximité avec bonne habitation. Il y a une communication qui est établie entre bonne détenue à l'intérieur avec bonne énergumène à l'extérieur. Alors, qui moment, qui lieu, qui se travaille, bonne ce qu'on appelle bonne objet. Nous t'aimons ça, nous appelons ça pelting. Par exemple, quand un détenu il perd la cour pour son caisse, le temps de prévenir le riman, le temps de passer dans le scanner, beaucoup de fois nous trouvons qu'ils ont un bon objet, un bon relative qui des fois essaye d'amener un bon objet.
3: कैदखानों में प्रतिबंधित वस्तुओं को ढूंढ निकालने का काम काफी जटिल भी है। कैदियों से पहले कदम जो उठाना है, वे किसी न किसी तरह से अपनी जरूरतों के सामान मंगवाते हैं, यहाँ तक कि ड्रोन से भी।
4: Très peu de gardes-chambre qui corrompus. Et pas plus tard qu'hier, nous fouillons une gardes-chambre, ok, le matin, avec la peau de là-dessous. Ok, nous avons plusieurs items, qui, nous avons la drogue avec lui, nous avons des cigarettes. Nous faisons un exercice du diamant, nous fouillons même un véhicule de la police, okay, ce qu'on appelle un Black Maria comme un véhicule. Et à l'intérieur, nous saisissons une cigarette. Le mot d'ordre pour moi, c'est que tout véhicule qui peut rentrer, principalement un véhicule qui peut sauter la cour, avant qu'il détenu la rentre là-dedans, nous fouillons le et dans une cellule qui donne l'information. Et si déjà, c'est moi, empower eux de ceux qui donnent nous l'information. Si il y a une rentrée, si il y a une transaction qui peut dérouler, si il y a une affaire qui peut passer.
3: बचाव मैकेनिज्म चालू कर दिया गया है। सूचना चैनलों के माध्यम से सुरक्षा और अनुशासन बढ़ाई जा रही है। प्रिजन्स कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि सामानों को नष्ट करने की ये प्रक्रिया पारदर्शिता दर्शाती है। पर्यावरण मानकों के मुताबिक प्रक्रिया चलाई जाती है। जो लोहे से बने औजार हैं, उन्हें पेशेवरों के यहाँ पिघला दिया जाएगा।

0: जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक जेल अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है जब उस पर आरोप लगा कि उसने गुरुवार सुबह तर्की जेल के अंदर कैनाबिस रोलिंग पेपर और सिगरेट ले जाने की कोशिश की। यह अधिकारी बोबासन जेल से जुड़ा हुआ था और इंटेलिजेंस यूनिट की जानकारी के आधार पर उस पर निगरानी रखी जा रही थी। शुरुआत में वो तलाशी के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में बॉडी स्कैनर से गुजरने पर उसके शरीर के अंदर छुपाए गए अवैध सामान का पता चला। मामले को पुलिस को सौंप दिया गया है और अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अमेरिका आज अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। ये 4 जुलाई 1776 का दिन था, यानी आज से ठीक 250 साल पहले, जब अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा को 13 अमरीकी उपनिवेशकों द्वारा अपनाया गया था। यह अवसर वाशिंगटन और पोर्टवी के बीच संबंधों पर नज़र डालने का भी है। ये एक साझा इतिहास है जो कई लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक पुराना है, और आज ये महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा हुआ है, साथ ही एक बड़े विवाद का भी कारण है, यानी शागस का मामला।
1: मॉरिशस और अमेरिका के बीच संबंधों का इतिहास 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। उस समय अमेरिकी व्यापारिक जहाज पहले ही हिंद महासागर के समुद्री मार्गों पर आवाजाही कर रहे थे और उसी दौर का इल डे फ्रांस उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन चुका था। 1794 में अमेरिका ने मॉरिशस में अपना पहला वाणिज्य दूतावास भी स्थापित किया था, जो 1911 तक संचालित रहा। आज दोनों देशों के संबंध अधिक संस्थागत और मजबूत हो चुके हैं। ये कूटनीतिक साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रही है, क्योंकि अमेरिका बगातल में अपने नए दूतावास के निर्माण की फाइनेंसिंग कर रहा है। इस बड़ी परियोजना की लागत का अनुमान 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग है। अमेरिका मॉरिशस के लोकतांत्रिक मॉडल और खुले बाजार की नीति को मान्यता देता है। मॉरिशस आगवा का प्रमुख लाभार्थी है, जबकि देश में 200 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियां या अमेरिकी उत्पाद मौजूद हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में पोर्ट लुइस समुद्री डकैती के खिलाफ अभियान में वाशिंगटन का एक अहम साझेदार है। अमेरिकी सहयोग के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। हालांकि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर शागस द्वीप समूह अब भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिगोगाशा में अपने सैन्य हितों के कारण अमेरिका ने राष्ट्रसंघ में मॉरिशस के पक्ष में पेश किए गए प्रस्तावों का विरोध किया है और ब्रिटेन द्वारा शागस द्वीप समूह मॉरिशस को वापस सौंपने के फैसले का भी विरोध करता है।
0: विदेश में दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर बढ़ती सख्ती के बीच माफिया ने नया रास्ता तलाश लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य क्रू सदस्यों को अपने नेटवर्क में फंसाकर उन्हें तस्करी के लिए कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रही है। थाईलैंड में एक एयरलाइन क्रू सदस्य की गिरफ्तारी के बाद इस माफिया क्रू का खुलासा हुआ है। जाँच एजेंसियों के मुताबिक माफिया फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट के जरिए क्रू सदस्यों से संपर्क करता है। पहले दोस्ती बढ़ाई जाती है, फिर मोटी रकम का लालच देकर उन्हें दूसरे देशों तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की एवं सामान्य हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात के समय भी आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 6:46 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 5:42 पर होगा। मौसम संबंधी जानकारियों के बारे में आज की

खबरों को दोहराते हैं। बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शेल के तहत सब्सिडी लागू होने के बाद सुपरमार्केट में खरीदारी बढ़ी है। कुछ जरूरी सामान सस्ते हुए हैं, लेकिन अन्य उत्पादों के दाम बढ़ने से कुल असर मिला जुला है। सोशल मीडिया से कमाई बढ़ने पर सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नया टैक्स लागू करने की तैयारी कर रही है। फाइनेंस बिल को फाइनलाइज करने के लिए

0: सर को निशाना बना रही है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें फंसा कर कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें कादर और कपिल का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: डिस्पेंसरी रोड विच मिल्ट्रियोले में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री तुलसीनाथ जयमंगल, जो विनेश ताइवान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो TBS के पूर्व बस कंडक्टर थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती कुमारी सौभागितावती देवी जयमंगल के घर डिस्पेंसरी रोड विचिया मिल ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ऐसे सॉलिन ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। ज्यूरे रोड नोत्र दाम में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रमती दर्शन जो तारामती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थे आज सुबह तीन बजे उनके घर जिखे रोड नोत्र दाम से उठाकर दफनाने के लिए व मौशों की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। Funeral today at 3 PM. Campo Road, Nouvelle-France, 77 साल के 78 years old के श्री भगवत दनहावू जो सन क्वाफ़र नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा दनहावू के घर कॉम्पो रोड नोवेल फॉर्म से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगे जाने रोज पहले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड लिस्कालिये में 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पापा माँ कान्या पैदाशी नाम नरसिमुलू और जो मामा पापन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री सेनापति कान्या के घर रॉयल रोड लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन के लिए 8 PM। मामजर जान गुडलैंड्स में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भानुमती सीतल पैदाशी नाम निरंजन और जो शिवरानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री रविनंदन सिंह सीतल के घर मामजर जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। La Croisée Montagne Longue Terre Rouge में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कलावती सी बालक जो कलावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर ला क्वाज़ी मोंटाइन लोंग टेर रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। ग्रेस लेन रोशनुआ में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रदत्त मोहित जो प्रेम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज इनके दो बजे उनके बेटे श्री विशाल मोहित के घर ग्रेस लेन होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए होशनुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मोंसेलमेंट पेटिट कैंप फीनिक्स में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री देव कनाया जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती आशनी कनाया के घर मुसलमान पची गांव फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फसल फेरिनों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रमशः टुडे एट नून

0: श्री शंभुनाथ शिवाला रोड कोंफू कोमी श्री शंभुनाथ शिवाला रोड कोंफू कोमी 96 साल की 96 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कीमिया जान की श्रीमती कीमिया जान की पैदाइशी नाम इताबन और जो दानो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे उनके घर श्री शंभुनाथ शिवाला रोड कोंफू खो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गजियाबाद रोड कोंफू खो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। मोंसलमों रामफल बुआमोंग प्लेंडी पापा एमी 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद जो आनंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के 10 बजे उनके घर मोंसलमों रामफल बुआमोंग प्लेंडी पापा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोंग कंदी बाबा की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमरू एट 10 AM। मिलान दे कोंफू क्रोमे 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री सादेव गुराय जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुराय के घर मिलान दे कोंफू क्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। नंबर 17 SSR रोड जुभॉय में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती नारायणी नानकू पैदाइशी नाम बलोराम की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री भाई ननकू के घर नंबर 17 SSR रोड जो भाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रमशन टुडे 8:01 PM। कालीमाई रोड रिवियर जो रामपा में 19 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री आजागेन रंगासोमी जो अविसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी उनके पिता श्री सिवेन रंगासोमी के घर कालीमाई रोड रिवियर जो रामपा से बाद में उठाई जाएगी। मारीजानी रोजबेल में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी प्रसाद सुनातन जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके भतीजे श्री दनेश्वर मंताया के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सिबालक लेन वाकुआ में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री रोहित बहादुर जो राधे मौसम पमदुतिया नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमिला बहादुर के घर सिबालक लेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरू एट 10:30 AM। कश्मीर रोड लिस्पिहांस रिबुशेमी 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सीता महादेव बोयरब पैदाइशी नामाल कोरी और जो विद्या नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर कश्मीर रोड डिस्पिहांस रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशन टुडे एट 3 PM। सिमेथिया रोड प्लान मान्यों में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के श्री वितीश बुदन जो इशले नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी उनकी माँ श्रीमती संध्या रापू जी के घर सिमेथिया रोड प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ली जाएगी। वैसे समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। रेजिडेंस बोसेजो रोजल में 35 साल के 35 ईयर्स ओल्ड के श्री विशेष महादेव कालिया जो मिकी नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके पिता श्री सुनील कालिया के घर रेजिडेंस बोसेजो रोजल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भ्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रमशन टुडे एट 10 AM। विलेज हॉल लेन प्लैंडी रोशमी 57 साल की 57 years old की श्रीमती राजवंती रामसन, श्रीमती राजवंती रामसन पैदाइश नाम गोबिन और जो राजवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके 12 बजे उनकी उनके पति श्री ईश्वर रामसन के घर विलेज होल लेन प्लेंडे हॉर्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए L'aventure qui s'achève pour les jaïjaïs qui me chantent les afternoon, Kalimai Road, petit raffermi, Kalimai Road, petit raffermi, Chapansal qui 56 years old qui, je me dis Muneshwari Karan, je me dis Muneshwari Karan, जो करुणा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर कालीमाई रोड पीछे हाफ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11 AM अल्बिया रोड कालबास में 42 साल की 42 years और की श्रीमती पुष्पा कुमारी दुकी पैदाइशी नाम दुर्गाचन और जो लीना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके 10 बजे उनके पति श्री दुकी योगेश दुकी के घर मुलसनकर सिंह दुकी के घर अल्बिया रोड कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए बामाशाओं की श्मशान भूमि ली जाएगी फ्यूनरल टुडे एट 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: शनिवार 4 जुलाई को शाम 3 से शाम 5 बजे तक रिपाई आर्य समाज मंदिर में आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में रिपाई आर्य समाज मोका आर्य जिला परिषद के सहयोग से अपने नए मंदिर के उद्घाटन समारोह के संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
1: सुबह के ठीक 7 बजे है। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वालों को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 के लास्ट 32 राउंड का आखिरी मैच इसी समय खेला जा रहा है। कोलंबिया 1-0 से आगे है। गाना के विरुद्ध खेल का ये 66वां मिनट है और मैच अभी जारी है। सो इससे पहले मोहम्मद सलाह का पानेनका अर्जेंटीना का दर्द में क्वालिफाइड होना और वोजीनिया का हीरोइक गोलकीपिंग, फिर भी वर्ल्ड कप का सबसे छोटा फुटबॉल राष्ट्र केप वर्दे विश्व कप से बाहर, किंतु खुशी खुशी वर्ल्ड कप 2026 की कहानी में दर्द भी है, खुशी भी और आंसू भी। फुटबॉल के इस महाकुंभ का दूसरा पड़ाव समाप्त होने को है और असली जंग यानी लास्ट 16 राउंड आज रात से शुरू। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस समय जो मैच खेला जा रहा है उसमें कोलंबिया 1-0 से आगे हैं। खेल का ये 66वां मिनट चल रहा है, लेकिन इससे पहले 14वें मिनट पर आर्यास का एक गोल, आर्यास ने कोलंबिया को आगे किया और लुइस डियाज के दो गोल अस्वीकार कर दिए गए। फिर भी इस समय कोलंबिया 1-0 से आगे हैं। कोई गाना गा नहीं पा रहा है। सो कोलंबिया अभी जीत रहा है 1-0 से। खेल का ये 68वां मिनट चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो दो मैच खेले गए आज सुबह और कल रात, उसमें अर्जेंटीना और केप वर्द के बीच महा मुकाबला जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, आज एकदम तड़के 2 बजे मैच शुरू हुआ, लेकिन 2 से अधिक गोल भी बने। अंततः अर्जेंटीना ये पड़ाव 3-2 से जीत गया। अर्जेंटीना 3 केप वर्दे 2। मैच को एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा। खेल के 29वें मिनट पर लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप का अपना सातवां गोल स्कोर किया

और वो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की कगार पे है। मेसी का ये सातवां गोल, यानी अर्जेंटीना 1-0 से आगे। फिर सेकंड हाफ में डेरोय ड्यूआर्टे का एक गोल, 59वें मिनट पर मैच ड्रॉ पर जा रहा था। 90 मिनट के बाद 1-1। एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे मिनट पर लिसांड्रो मार्टिनेज का एक गोल, जहां लगने लगा था कि अर्जेंटीना ये पड़ाव जीत जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। केप वर्दे के लिंजे कब्राल ने 130वें मिनट पर 103rd मिनट पर एक कमाल का स्टनिंग गोल स्कोर किया, जो वर्ल्ड कप का सबसे सुंदर गोल माना भी जा सकता है। सो यहां पर भी मैच ड्रॉ 2-2। और कुछ मिनट बाद 111वें मिनट पर एक ओन गोल, जिसने बोजेज की ओर से एक ओन गोल, और अंततः ये एक विनिंग गोल रहा। अर्जेंटीना 3-2 से जीत गया एक साहसी केप वर्दे के सामने। गोलकीपर वोजिनिया ने 8 महत्वपूर्ण सेव किए, और हार के बावजूद वो फिर बना मैन ऑफ द मैच। बाय बाय अलविदा केप वर्दे, दिल खुश कर दिया। फिर मिलेंगे संभवतः 4 साल बाद। अर्जेंटीना 3-2। अब लास्ट 16 राउंड में मेसी का अर्जेंटीना खेलेगा मोहम्मद सलाह के इजिप्ट के विरुद्ध, क्योंकि कल इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच ड्रॉ किया और पेनाल्टी शूटआउट सत्र में जाकर इजिप्ट की जीत हुई 4-2 से। सो इजिप्ट 1-1। खेल के 13वें मिनट पर ही अशूर का एक गोल, यानी टूर्नामेंट का ये दूसरा गोल रहा अशूर के लिए, ईमान अशूर की ओर से। और सेकंड हाफ के 52वें मिनट पर एक ओन गोल मोहम्मद हैनी ने किया। ऑस्ट्रेलिया 1-1। 90 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम के बाद कोई भी गोल न बन पाया, तो पेनाल्टी शूटआउट सत्र में जाकर 4-2 से इजिप्ट ये पड़ाव जीत गया। इसमें मोहम्मद सलाह का एक ओडेशियस फैनन का रहा। मैच के बाद उसने कहा कि ये वो सबसे सीनियर खिलाड़ी है और उसको ये करना ही पड़ा सब में भरोसा लाने के लिए। सो मोहम्मद सलाह ने फिर जीत दिलाई और वो बना मैन ऑफ द मैच। हालांकि मैच के दौरान कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया 1-1, और शूटआउट के बाद 4-2 से इजिप्ट की जीत हुई। यानी अगला पड़ाव लास्ट 16 राउंड में अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। इस समय लास्ट 32 राउंड का लास्ट मैच, आखिरी मैच खेला जा रहा है। अभी भी खेल का ये 72वां मिनट है। कोलंबिया 1-0। सो आज रात, अब आज लास्ट 32 राउंड के आखिरी दो मैच समाप्त होने जा रहे हैं, बल्कि आखिरी मैच समाप्त होने जा रहा है। अब आज रात से लास्ट 16 राउंड शुरू, यानी इस रात की कोई सुबह नहीं। आज रात 9 बजे कनाडा वर्सेस मोरक्को, कमाल का मुकाबला। कनाडा यदि सह मेज़बान देश, को होस्ट कंट्री है, और अपनी जनता के सामने अपने घर में यदि बाघ भी शेर होता है, तो मोरक्को इज़ ऑन फायर। अशरफ हकीमी और साथी आग लगा देंगे आज रात ह्यूस्टन टेक्सास के NRG स्टेडियम में। कनाडा इतिहास रचने के इरादे से मैदान पे उतरेगा, तो मोरक्को अपनी अजय इनविंसिबल लय और मजबूत डिफेंस का टैग लेकर वर्ल्ड कप जीतने का एक प्रबल दावेदार बन गया है। मोरक्को वर्सेस कनाडा आज रात 9 बजे टेक्सास के NRG स्टेडियम में। दूसरा मैच भी अपने आप में एकदम अद्भुत है। कल सुबह 1 बजे, यानी आज रात 12 बजे के बाद 1 बजे, फ्रांस वर्सेस पराग्वे। अब तक वर्तमान वर्ल्ड कप की बेहतरीन टीम फ्रांस ने अपने आक्रामक एग्रेसिव फुटबॉल से प्रभावित किया है। पराग्वे ने जर्मनी को लुढ़काया था, क्या फिर से वो रिपीट कर सकता है? देखते रहिए और सुनते रहिए कल सुबह तड़के 1 बजे, फ्रांस वर्सेस पराग्वे। सो इतना सब कुछ फुटबॉल को लेकर। कोलंबिया 1-0। मैच का ये 75वां मिनट चल रहा है अभी, 75th मिनट। टेनिस में चैंपियन बूढ़े नहीं होते, वे और महान बनते जाते हैं। 39 वर्षीय 39-year-old क्लासी नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के आर्चियर रिंडनेक को 4 सेटों से के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 7-5, 6-4, 1-6 और 7-6 से हराकर विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में जगह बना ली है। और इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेदेरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगला पड़ाव रशियन खिलाड़ी रोमान साफ्यूलिन, बता दें कि इसी में डिफेंडिंग चैंपियन यानी सीनियर

0: की भी जीत हुई। तो लड़कियों में विश्व नंबर एक वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका ने येलेना ओस्टापेंको को 6-4, 6-4 से हराकर अगले राउंड में कदम रखा है। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला होगा मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्राफोर्ड स्टेडियम में। दूसरा मैच मंगलवार को ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगहम में खेला जाएगा। और फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की ब्रिटिश ग्रैंड प्री रेस के लिए फेरारी का लेविस हैमिल्टन स्प्रिंट रेस में आगे निकल आया। किमी एंटोनेली ने दूसरा स्थान लिया। आज शाम पोल पोजिशन के लिए जमकर रेस लगेगी। एक बार फिर बता दें कि आज इस समय कोलंबिया 1-0 से आगे हैं गाना के विरुद्ध। मैच अभी भी जारी है, खेल का ये 75वां मिनट चल रहा है। और इससे पहले कल रात इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया ने मैच ड्रॉ किया, फिर इजिप्ट की जीत हुई 3-4 से। और अर्जेंटीना ने 3-2 से केप वर्दे को हराया, लेकिन दर्द में ही सही जीत तो हुई अर्जेंटीना की, लियोनेल मेसी का 7वां गोल। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: नुथावाई नुलावेनियत हरखातिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा। सेक्टर एग्रीकल्चर रवीन नितेश उजाहिब कंपनी लिमिटेड जिन बिले अखिवियत सेश में है खोजा 53-50 गुमेल एग्रीकल्चरल लेबर एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 7-7-2-9-7 पर। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2026। सेक्टर लैंडस्केप एंड मेंटेनेंस लोगों स्टीव एंटरप्राइज लिमिटेड जुन रिजर्वॉयर रोड गुडलैंड्स में है खोजा 53-8 गो गार्डनर जिसे पे उन्हें पहड़ ले बा और एक बार इसके एक्सपेयस बा। एप्लीकेशन का तीन फोन करिया 7-8-23-41-92 पर। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 18 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग तंजी स्वीट्स लिमिटेड जुन रॉयल रोड लालमाटी में है खोजा 53-5 गो मेल फूड प्रोसेसिंग ऑपरेटर जिनका एक बार इसके एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 7-2-5-33-69 पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 23 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मुटा इंजीनियरिंग लिमिटेड जुन कॉन्फुखो कास्तिल में है खोजता आर्क वेल्डर जिनका 5 पर इसके एक्सपीरियंस है। टिग एंड मिग वेल्डर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा। मशीन ऑपरेटर जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस है। स्टोक कीपर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। सेल्समैन जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। ड्राइवर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। और रोड्समैन जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस है। एप्लीकेशन का तरह सीवी विदा करिए बाई मेल info@multan.mu पर। अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड गौरी मार्केटिंग लिमिटेड जुन लासूस सेंट्रल प्लाक में है खोजता 2 स्टोर अटेंडेंट या हेल्पर जिससे पेली पहड़ लेबा। एगो फीमेल सेल्स पर्सन जिफोम कातले पहड़ लेबा। साथ में चाहना 2 मेल पैकिंग ऑपरेटर और इनकरा चाहना 2 पर इसके लिए एक्सपीरियंस रहेगी। एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 7-2-5-9-62 पर या तो फिर आप सकबर जाइए गौरी मार्केटिंग लिमिटेड लासूस सेंट्रल फ्लैग। अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2026। पब्लिक सेक्टर में जो तोहर खातिन काम रखल गल बा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजा था EEG टेक्नीशियन और एक काम खातिन द्वारा चाहला जाके ई वेबसाइट चिके करे के https://psc.gov.mu.org/ और अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 29 जून 2026। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस खोजता बायोमेडिकल इंजीनियर या सीनियर बायोमेडिकल हेल्थ इंजीनियर आपकी भी चाहला ई वेबसाइट पे जाए के अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 30 जून 2026। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट खोजता मैनेजर XBRL और https://psc.gov.mu.org/ पर जाके आप लोग सक बजा अपन एप्लीकेशन विदा करे। अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जून और हुए पे पुलिस डिपार्टमेंट खोजता केटरिंग सुपरवाइजर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2026। रोड्रिग्स रीजनल असेंबली हेल्थ खोजता केटरिंग सुपरवाइजर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026। तो याद रखे वेबसाइट पे जरूर जाइए। प्राइवेट हाउस होल्ड वैकेंसी केयर खातिन रेजियो जुनबा फ्लोरियाल एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए।

0: IC Vakwa 6946031 यानी कि 69 64 03 N या 69 76 45 8 पर तो ई रहल तोहर खातिर नू ट्रावाई नू लावेनिया जोन तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस पर सभी लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुबह के 7:20 हो रहे, अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ। जी हाँ, और क्योपेप, ओकुले, कास्टेल, अंग्रे मार्शियल, लापेरूज, कांगुया, स्टियलिंग, सिमानंदा एवेन्यू, लोटस, गुलामसेन, वोम्ड, मॉडर्न, हैरी, रोवर, रामदीन, मिलब्रेव, चमन, गारों, अपाया, गोफ्रे, बागीरथी, हजारी सिंह, एदू, अकबर, गनाशो, तूफानी, बाउंडेरी, एम्पास कारोल और मार्सेल मार्कंटिन, साथ में गोबिन और सुशों के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर लाग्रेमेंट, सिमेट्री रोड, सिया कॉन्स्टेंस, एनएचडीसी विन्योल, एमएसए, सिया कॉन्स्टेंस विलेज, निकोलियर रोड, मोसेलमेंट, फ्रांगीपान, रेजिडेंस सेंट कैथरीन, टेम्पल लेन और रेजिडेंस लाग्रेमेंट के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 3:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कोयराती, बोआ पियोले, टिया रूज, बोआ मार्शां, मामजेल्लो, भरत लेन, ला क्रोजे मोंटाइलोंग, मोर्सेलमेंट बसावन, मोर्सेलमेंट तारा, सिटे डुल, बाटिस लेन, मोर्सेलमेंट शेख दाऊद, मोर्सेलमेंट चावरी, मोर्सेलमेंट रिचवुड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 4:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रोजेल,

0: जी हाँ, रोजिल और अविनी बाउंड्री रेजिडेंस बोसेजो अक्वारेल के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रोजेल पॉट्सी अवेन्यू बाउंड्री अवेन्यू फोकवा के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। पेटी वर्जे सैन पियर बॉशेरी रोड ले पूस रिवियर बैटिस्ट स्कूल लेन लेग्लीज सैन पियर के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुशों बुशों साथ में रूट रॉयल मोसलमान वीओएस और सीबी के आसपास में रहने वाले लोगों को साथ में कोविल में आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर जी हाँ, फिर बेलमा शिबानी फाइनेंस एडेन विला डाम्बेया एवेन्यू और कोस्टल रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 9:45 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में रोजिल रूट इग्ने स फिर से सुने जी अभिव्यक्ति रोजिल रूट इग्ने स सेलिको एंटेल्म और आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर बोबासिन एपास डॉक्टर लेजूर एसओएस विलेज फ्लैट से लुसिया एम आई टी डी स खेर जगत सिंह कॉलेज जॉन कैनेडी और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और बोबासिन डॉक्टर लेजूर एवेन्यू कोडाबकस एवेन्यू फिलिप राहुल एवेन्यू मोदाई ड्रीम प्राइस बोबासिन रेजिडेंस विलमे एनएचडीसी विलमे डॉक्टर रेड महादेव बिल्टू जुपेरे शातोनेफ और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच और दोपहर बाद के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और कोरोमंडल चैपमैन व्यू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सेबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और इधर हमारा रब का साथ चल रहा है और AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पे, ये MBC रेडियो मॉरिशस मीडिया में बात 19 किलोहर्ट्ज पर, और आप हमें देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस की टिकटॉक पेज पर भी। इस

0: सभी व्यूअर्स और सभी श्रोताओं को हमारा करजोर नमन स्वीकार हो. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मॉरिशस. और बेशक इस नए दिन का आगाज कीजिए हमारे साथ इन द सेकंड आवर. वेलकम टू द मस्त मॉर्निंग शो. सुबह का नजराना, सुबह का नजराना अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक. और आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हमारा साथ दे रहे हैं. और बेशक यहाँ पर हमें आप लोगों का साथ देने के लिए. कल जो था वो एक बीता हुआ सपना था, आज जो है आपका वर्तमान है. और अपने भविष्य के बारे में सोचिए. जो इंसान अपने वर्तमान में जीता है और भविष्य के आगे और भविष्य के बारे में सोचता है, सो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ पाता है और हमेशा वो इंसान जो है सफलता पाता है. हम जानते हैं कि ठंड का मौसम है, नींद से जागने का मन तो नहीं कर रहा है. मन करता है कि बस पलंग पर लेटे रहे और कंबल के नीचे जो है आराम से सोए रहे. पर क्या कर सकते हैं, नींद से जागना तो होगा क्योंकि सुबह हो चुकी है. सुबह हो चुकी मामू, हाँ मामू, हाँ मामू. जी हाँ, सुबह हो गई है. सुबह बहुत ही प्यारी है. और हम जानते हैं कि आज बहुत सा काम करना है. जो काम आप सप्ताह में नहीं कर पाए, उस काम को पूरा करना है वीकेंड को, है कि नहीं? सो कम ऑन, गेट अप, वेक अप, इट्स मॉर्निंग टाइम. और बेशक हमें यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे गीतों के साथ, लवली म्यूज़िक के साथ, एंड शुरू करते हैं इस मस्त मॉर्निंग शो को आज के चिंतन के साथ. ये चिंतन आप सुनेंगे डॉक्टर झमन जी द्वारा.
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति. आइए सुनते हैं आज का चिंतन.
2: समाज के प्रचलित विधि विधानों के उल्लंघन का दुख सिर्फ चरित्र बल और विवेक बुद्धि के बल पर सहन किया जा सकता है.

कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी चार दिन की है, फिर काहे का टेंशन। न टेंशन लेने का, न टेंशन देने का। झूमो, नाचो, गाओ, खूब मस्ती करो, क्योंकि पल जो पल का साथ है, कौन सा पल यहाँ पर अंतिम पल आ जाए किसी का कोई नहीं जान सकता। इसीलिए कहते हैं नाचो, गाओ, झूमो।

कितना प्यारा गाना था, कितना अच्छा गाना था, हैप्पी पैपी सॉन्ग। यस, और बेशक सुबह के 7:35 हो रही है, जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं टिकटॉक पर और जहाँ से भी सुन रहे हैं, सबको बता दें कि यह है MBC का म्यूजिकल एंटरटेनिंग चैनल AM2 MBC रेडियो मॉरिशस, और मीडियम वेव पर हमारा प्रसारण चल रहा है 819 किलोहर्ट्ज़ पर। एक ही फ्रिक्वेंसी है मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़, सो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, एक ही फ्रिक्वेंसी है 819 किलोहर्ट्ज़। या फिर आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करें लिसन MBC रेडियो मॉरिशस। सुबह का वक्त है और मन करें थोड़ा सा नाचे झूमे आप लोगों के साथ, क्योंकि सप्ताह के दिनों में तो आपसे उतना मुलाकात नहीं होती। और हाँ, सेंट्रल प्लाटो में जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है, सॉरी। और बेशक जैसे हम बता रहे थे कि सप्ताह

के दिनों में कुछ लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग सप्ताह में रेडियो नहीं सुनते हैं, वो लोग सुनते हैं रेडियो सैटरडे एंड संडे को। सो हमारे जो सैटरडे के ऑडियंस हैं, जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं बहुत प्यार के साथ तो हो जाइए अगला गाना, तिरछे टोपी वाले ओ हो बाबू भोले भाले ओ हो तू याद आने लगा है। आपको पता चल गया कौन सा गाना है? यस, इट्स अ वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म त्रिदेव, देवों के देव त्रिदेव। और ये गाना आप सुनेंगे अमित कुमार सपना मुखर्जी की आवाज़ में। चलिए इस गीत को सुनते हैं बहुत प्यार के साथ।

एक से एक बेहतरीन नगमे मेस्मराइजिंग सॉन्ग्स केवल आप लोगों के लिए। हम जानते हैं कि सैटरडे मॉर्निंग को आप नींद से जागते हैं तो आपका मन करता है कि कुछ प्यारे प्यारे गीत लवली म्यूजिक सुने, सम आ जाते हैं आपकी नींद को चुराने के लिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजी लेखक ने क्या खूब कहा है कि जब जल्दी सुबह हम जागते हैं और तो स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है। कम ऑन जागिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिए, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अगर कोई दोस्त नहीं जाता है तो अपने साथ अपने टुट्टू को लेकर जाइए। अगर आपके पास एक पालतू जानवर है, आई एम श्योर योर डॉग विल अकॉम्पनी बिकॉज ए मैंस बेस्ट फ्रेंड इज हिज डॉग। हाँ, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता होता है। क्या बात है, कुत्ता से वफादार जानवर दुनिया में है ही नहीं। और चलिए सुनते और एक लवली सा गाना, फिल्म का नाम है अनमोल, बताओ तुम कौन हो। फिल्म अनमोल के इसी प्यारे से गीत के साथ यो मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना पार्ट वन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ क्षणों में 7:45 आप सुनेंगे विश्वानंद जी के साथ ज्ञान सर्वर कार्यक्रम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से 8 का भोजपुर में समाचार, शोक समाचार भी, और हम आपसे मिलेंगे 8:05 पर। सुनते रहिए रेडियो मॉरिशस और देखते रहिए रेडियो मॉरिशस टिकटॉक पेज पर।

0: प्रिय श्रोताओं, जान सरोवर नामक साप्ताहिक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर पूजा सभरवाल हमसे जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूजा, आपका हार्दिक अभिवादन है और MBC स्टूडियो में आपका हृदय से स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार विश्वानंद जी, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
0: नमस्ते आपको भी। श्रोताओं, चरक संहिता में कहा गया है, तदैव युक्तम भैषज्य यद आरोग्याय कल्पते स चैव भीषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमोचयेत। अर्थात वही औषधि सही है जो आरोग्य प्रदान करती है, तथा वही चिकित्सक श्रेष्ठ है जो रोगों से मुक्ति प्रदान करता है। रोग मुक्त जीवन जीने के लिए शुद्ध भोजन तथा उचित व्यायाम करना अति आवश्यक है। यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि योग या योगासनों से भी हम कई बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। श्रोताओं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भव्य रूप से मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्यतः योग और आयुर्वेद विषय पर डॉक्टर पूजा जी से विचार विमर्श करेंगे।

संप्रति डॉक्टर पूजा आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में मॉरिशस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद चेयर के पद पर कार्यरत है। भारत के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। समन्वित ऑन्कोलॉजी, एपिजेनेटिक्स तथा साक्ष्य आधारित आयुर्वेद

0: प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में 50 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं जो प्रकाशित भी हुए हैं। आयुर्वेद से संबंधित उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। डॉक्टर पूजा सभरवाल को राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार तथा आयुर्वेद एक्सेलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पूजा जी, इन विशेष पुरस्कारों के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: धन्यवाद
0: पूजा जी। 21 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आप हमें यह बताइए कि योग दिवस मनाना क्यों आवश्यक है?
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य केवल रोगों का अभाव नहीं है
0: जी,
1: बल्कि शरीर मन और आत्मा का संतुलन है। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में योग एक सरल, सुरक्षित और वैज्ञानिक पद्धति है जो हमें स्वस्थ, सक्रिय और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का जन आंदोलन है, इसलिए योग दिवस मनाना बेहद आवश्यक है।
0: एकदम सही कहा आपने। डॉक्टर पूजा, योग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: जी, योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम एवं ध्यान तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में सहायक होते हैं
0: जी।
1: इससे मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। वैज्ञानिक शोधों की अगर मैं बात करूं तो उनमें भी ये सिद्ध हुआ है कि योग तनाव हार्मोन जो होते हैं उनको कम करता है और मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों और बुजुर्गों सभी के लिए योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रभावी माध्यम है।
0: एकदम सही कहा आपने। देखिए, भगवद गीता में भी कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है और कुशलता प्राप्त करने के लिए कोई भी अच्छा काम अगर आप मन से करें तो उसी को बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम।
1: बिल्कुल सही बात,
0: मतलब स्किलफुलनेस इन
1: जी
0: वर्क
1: जी जी,
0: ये जब आपको प्राप्त हो जाएगा वही योग कहलाता है।
1: तो
0: ये
1: इसके लिए योग एक बहुत ही अच्छा एक माध्यम है जिसको हम डेली अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके इस यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं।
0: एकदम पूजा जी, आपने आयुर्वेद क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की है, कृपया हमारे श्रोताओं के लिए आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए।
1: जी जी, तो जो आपने आयुर्वेद के बारे में मुझसे पूछा, तो आयुर्वेद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात ज्ञान या विज्ञान।
0: अच्छा।
1: सो इसलिए आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान
0: जी।
1: तो आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोगों के उपचार दोनों पर समान रूप से बल देता है। इसका जो आयुर्वेद का उद्देश्य है वो व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बनाए रखना है। तो ये जो इसका आपने शाब्दिक अर्थ मुझसे पूछा, तो आयुर्वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आयुर्वेद, मतलब कि आयु का वेद,
0: मतलब साइंस ऑफ लाइफ।
1: यस जी जी।
0: और यह आयुर्वेद कहाँ से आया है, इसका स्रोत कहाँ है?
1: आयुर्वेद जो है वो एक वेद है, बहुत जो प्राचीन जो हमारी परंपरा है आयुर्वेद के ऊपर, बहुत क्लासिकल जो है वो टेक्स्ट लिखी गई हैं भारत में, तो उसका जो मूल है ओरिजिन अथर्ववेद है
0: जी,
1: अथर्ववेद है, उसका जो है उपवेद जो है वो आयुर्वेद। अच्छा। है तो इसलिए
0: पूजा जी, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए किन दैनिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है, इस पर थोड़ा प्रकाश
1: जी। आयुर्वेद, जैसा मैंने बताया कि आयु जो है वो आयुर्वेद जो है वो आयु का वेद है, तो और इसका जो ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है वो प्रिवेंशन पे दिया जाता है, रोगों की रोकथाम के लिए दिया जाता है। इलाज का तो उसमें है ही है स्कोप, पर इसका जो मेन जो है वो ये टारगेट रहता है कि प्रिवेंशन, जो स्वस्थ आदमी है उसका स्वास्थ्य कैसे बरकरार रहे, कैसे बना रहे, तो उसके लिए कुछ जो दिनचर्या का एक विशेष महत्व बताया गया है आयुर्वेद में। इसमें प्रातःकाल जैसे जल्दी उठना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट ये बताई गई हैं दिनचर्या में, प्रातःकाल जल्दी उठना, दांत एवं जीभ की सफाई करना, टंग क्लीनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नियमित व्यायाम और योग, संतुलित

0: एवं ताजा भोजन, पर्याप्त जल का सेवन, समय पर भोजन और पर्याप्त नींद लेने की सलाह दी गई है। तो ये एक दिनचर्या आयुर्वेद में जो बताई गई है, और इसके साथ साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको पॉजिटिव रखने के लिए, ध्यान और तनाव से बचने के लिए विशेष बल दिया गया है। और यदि हम इन सरल नियमों का नियमित पालन करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, क्योंकि मॉरिशस में मैंने देखा है कि क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये बहुत प्रेविलेंट हैं। तो अगर इस जीवन शैली को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनसे हम बचाव कर सकते हैं।
1: एकदम सही डॉक्टर पूजा जी। मेरा अगला प्रश्न यह है कि आयुर्वेद में पंचकर्म क्या है, संक्षिप्त रूप में इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
0: हाँ जी, जो पंचकर्म एक विशेष पद्धति है आयुर्वेद में, पंचकर्म आयुर्वेद का एक विशिष्ट शोधन चिकित्सा है। अच्छा। जिसका उद्देश्य शरीर के संचित दोषों को बाहर निकालकर शरीर की प्राकृतिक संतुलन क्षमता को पुनः स्थापित करना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो डिटॉक्सिफिकेशन।
1: अच्छा।
0: बॉडी में जो हमारे टॉक्सिन अकमोलेशन होता है फिजिकल बॉडी में, जैसे कि मेंटल अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसके लिए ध्यान प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो एक शारीरिक भी हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें डाइट के माध्यम से, और तो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स अकमुलेट होते हैं
1: जी, जी।
0: तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म जो है वो एक विशेष पद्धति बताई गई है, जो 5 प्रमुख उसके उपचार हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नसें और रक्तमोक्षण। पंचकर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता है, इसे केवल योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की ही सलाह के साथ करना चाहिए, निगरानी में करना चाहिए। रोग एवं रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, मींस जो डॉक्टर है वो अच्छे से कंसंटेशन करता है पेशेंट की, उसके बाद ही उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसको किस प्रकार का जो है वो प्रोटोकॉल उसमें जो पेशेंट को पंचकर्म जो है वो करवाना चाहिए।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, सूत्र के लिए। पूजा जी, मॉरिशस में आजकल उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज आदि रोगों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कृपया हमारे प्रिय श्रोताओं को यह बताइए कि आयुर्वेद में ऐसे रोगों से बचने के लिए कौन से प्रभावी उपचार या उपाय बताए गए हैं?
0: जी जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मॉरिशस में मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जैसा आपने भी बताया कि उच्च रक्तचाप और मधुमेह ऐसी क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो काफ़ी हो रही हैं। तो जो आयुर्वेद का सिद्धांत है कि रोग होने से पहले उसकी रोकथाम करना, तो अगर हम एक अच्छी जीवन शैली जो कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर इनकॉर्पोरेट की जाती है, उचित जीवन शैली जनित रोगों की रोकथाम के लिए अगर संतुलित एवं व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में एक प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जो एक विशेष यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वात पित्त और कफ तीनों दोषों का जो है वो के बेस पे एक प्रकृति निर्धारित होती है, और वो एक एक्सपर्ट जो आयुर्वेद का होता है वो उसके बाद ही वो बताता है कि आपकी प्रकृति क्या है। तो अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी जीवन शैली रखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से
1: जी,
0: तो उसके लिए जो है वो कई रोगों की जो है वो रोकथाम की जा सकती है, होने से पहले ही उनको रोका जा सकता है। तो आवश्यकता पड़ने पर योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से औषधियों और पंचकर्म जैसी उपचार पद्धतियों भी अपनाई जा सकती हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे रोगों में आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ इंटीग्रेटिव रूप में, ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट रोकथाम भी की जा सकती है, अगर जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ इंटीग्रेटिव मॉडल के फॉर्म में आयुर्वेद एक अच्छा काम करता है। किसी भी रोगी की अपनी नियमित दवाइयां बिना चिकित्सा सलाह के बंद नहीं करनी चाहिए, ये भी एक बात है, और सही जीवन शैली और नियमित जांच और चिकित्सीय परामर्श के साथ आयुर्वेद स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: चरक संहिता में मैंने पढ़ा है एक सिद्धांत है
0: जी,
1: हित भुक, मित भुक और ऋत भुक।
0: जी जी,
1: यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा एक अपना इसमें दिया है, जो ऋत भुक मतलब सीजन के अकॉर्डिंगली, मित मतलब मात्रा, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, और हित भुक आपके लिए जो हितकारी है, वो ये आपने एक बहुत ही अच्छा जो है वो चीज इसमें बताया है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल और जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनसे बचाव किया जा सकता है।
1: जी जी जी, पूजा जी आपके अमूल्य विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: प्रिय श्रोताओं, यदि आप आयुर्वेद संबंधी विषयों में रुचि रखते हैं तो आप डिप्लोमा इन पंचकर्म, आयुर्वेदिक डायटेटिक्स और आयुर्वेदिक क्विजीन जैसे कोर्सों से लाभान्वित हो सकते हैं जो महात्मा गांधी संस्थान के इंडोलॉजी विभाग की ओर से चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ मॉरिशस विश्वविद्यालय की ओर से भी आयुर्वेद से संबंधित ऑनलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं, इससे कृपया आप लोग लाभान्वित होइए। श्रोताओं, कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, जैसा अन्न वैसा मन। आयुर्वेद के ज्ञान रूपी अमृत का पान कीजिए और रोग मुक्त तथा सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और डॉक्टर पूजा सबरवाल को आजा दीजिए अगले सप्ताह पुनः जान सरोवर नामक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम से जुड़ने की कृपा करें। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। नमस्कार और शुभ दिन।
2: KHz, यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: इबखत फिर की आवाज बजल बाटे। नमस्ते, भोजपुरी में समाचार सुनाजा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम ग्राम का सांज के अपन चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद रहलन, जहाँ पर ही त्रियोले के रविंद्रनाथ गावाहन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन डॉक्टर नवीन राम ग्राम करलन जा। स्टेडियम के दोबारा खोले के मौका पर एक गाला मार्च भी आयोजित हो रहा, जेकर में कई गो युवा खिलाड़ी हिस्सा लेलन जा। अपन संबोधन में डॉक्टर नवीन राम ग्राम पेंशन सुधार के मुद्दा पर विस्तार से बात करलन जा। उबलन के लंबा समय लिए मॉरिशस में लागू पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं बाटे। इबार ओ 2015 में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लन जा। रिपोर्ट में बोला रहा कि यदि ये व्यवस्था जारी रही तो 2050 ले पेंशन पर होल खर्चा देश के GDP के 8% हो जाए। किंतु प्रधानमंत्री बोलन के IMF के अनुमान गलत रह, कहे कि मॉरिशस में पेंशन पर होल खर्च आज ही GDP के 8% के पार कर ले बाते। एकर बावजूद वो आश्वासन दिलन कि उनकर सरकार देश में बदलाव लावे और वो मॉरिशस के आगे बढ़ावे खातिर हर संभव कोशिश करे। ज़रूरी चीज पर नवा छूट लागू हुए के 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शील्ड के तहत देवल गलबाती कर शुरुआती असर सामने आल बाते। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बेबी सामान जैसन चीज ई छूट में शामिल बाते। सुपरमार्केट में सामान्य से जस्ती भीड़ देखल जाता, खास करके डिब्बाबंद चुना मछली के सेक्शन में, जो नवा सब्सिडी उपाय से प्रभावित बातें। ग्राहक अब पहले की तुलना में जस्ती मात्रा में खरीदारी करत हवन, जहां पहले एगो यूनिट लेवल जात रहल, अब दूगो लेवल जाता। किंतु जो न सब्सिडी में शामिल नए बातें, उनकर दाम बढ़ने से कुल मिला के कीमत में बड़का बदलाव महसूस नहीं हुआ। मंत्रिपरिषद ई नोट करलन के फाइनेंस बिल की अंतिम रूप देवे खातिर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एगो विशेष समिति बनावल जाए। एकर पहल का बैठक 8 जुलाई 2026 खातिर निर्धारित बाते। और मंत्रिपरिषद कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के गठन की भी मंजूरी देलन। आयोग के चेयरपर्सन विनोद बुलेल रहियन और वाइस चेयरपर्सन अफुन श्री यू चंग रहियन। आयोग में विशेषज्ञ लोग संविधान में संभावित सुधार और बदलाव के अध्ययन करियन जा। साधारण वीडियो अब बड़का कमाई की जरिया बन गल बाते। सोशल मीडिया आज कई गो कंटेंट क्रिएटर्स खातिर एगो इनकम के जरिया बन गल बाटे। तेजी से बढ़ रही ट्रेंड के देख के सरकारी डिजिटल अर्थव्यवस्था के बेहतर तरीका से नियंत्रित करे खातिर नवा टैक्स संबंधी व्यवस्था लागू करी। विदेश में, दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर

0: बढ़त सख्ती के बीच माफियाई को नवा रास्ता खोज ली हवंजा। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और दूसरगो क्रू सदस्य की अपन नेटवर्क में फंसा के उनकरा तस्करी खातिन कुरियर नियन इस्तेमाल करत हवन। थाईलैंड में गो एयरलाइन क्रू सदस्य की गिरफ्तारी के बाद ई माफिया क्रू की खुलासा होल बाते। तेरी रह भोजपुरी में समाचार आप लोग के ध्यान खातिन धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा कौन पो रोड न्यूवेल फ्रांस मु कौन पो रोड न्यूवेल फ्रांस में 78 बरिस की 78 ans के श्री भगत धनहावू जुन सुन क्वाफे नाम से जानत रहलंजा गुजर गल हवन। उनकर माती आज दिन के 3 बजे उनकर पत्नी श्रीमती प्रभा धनहावू के घरे कॉम्पोर रोड नोवेल फ्रांस से उठा के अंतिम संस्कार खातिन पैनमानियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमशन टुडे एट 3 PM अल्बिया रोड कालबास में 42 बरीस की 42 ओं की श्रीमती पुष्पा कुमारी जो की श्रीमती पुष्पा कुमारी जो की जिनकरा लोग लीना नाम से जानत रहन जाओ। पैदाशी नाम दुर्गाचन की मृत्यु हो गल हवन। उनकर माती आज दिन के दस बजे उनकर पति श्री दुखी योगेश के घरे मूलकर सिंह दुखी के घरे अलबिया रोड कालबास से उठा के दफनावे खातिन व मौसम की शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन फ्यूनरल टुडे एट 10 AM कालीमाई रोड पे चिराफ्रेमी 56 बरिस की 56 ओं के श्रीमती मुनेश्वरी करण जिनकरा लोग करुणा नाम से जाने रहन जागो सरकर होनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर घरे कालीमाई रोड पे चिराफ्रे से उठा के अंतिम संस्कार का दिन राहुल जी के शमशान भूमि जावल जाए। क्रमशन टुडे एट 11 AM विलेज होल लेन प्लेंडी होश में 57 बरिस की 56 ओं के श्रीमती राजवंती रामसन पैदाशी नाम गोविंद जिनकरा लोग राजवंती नाम से जाने रहन जागो सरकर होनकर माती आज दिन के 12 बजे उनकर पति श्री ईश्वर रामसन के घरे विलेज होल लेन प्लेंडी होश से उठा के अंतिम संस्कार का दिन लावंचिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमशन टुडे एट नून रेजिडेंस बोसे जोर रोजेल में 35 बरिस की 35 ओं के श्री विशेष महादेव कालिया जिनकर लोग मिकी नाम से जाना रंजा गुजर गल होनकर माती आज दिन के 10 बजे उनकर पिता श्री सुनील कालिया के घरे रेजिडेंस बोसे जो रोजेल से उठा के अंतिम संस्कार का दिन आली भैया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमशन टुडे एट 10 AM सीमेचिया रोड प्लान मान्यों में 36 बरिस के 36 ओं के श्री वितिश बुदन जिनकरा लोग इछले नाम से जाना रंजा गुजर कर हवन। उनकर माँ श्रीमती सांध्या रापू जी के घरे सीमती रोड पैनमानियों से उठा के अंतिम संस्कार का तीन पैनमानियों के शमशान भूमि जावल जाए और समय के बारे में आप लोग की बाद में सूचित कर जाए। कश्मीर रोड प्लेसपीरस त्रिबुशे में श्रीमती सीता महादेव बैरव पैदाश नाम अलकोरी जिनकरा लोग विद्या नाम से रंजा गुजर कर होनकर माती आज दिन के तीन बजे उनकर घरे कश्मीर रोड प्लेसपीरस त्रिबुशे से उठा के अंतिम संस्कार का दिन पितरों के शमशान भूमि जावल जाए। क्रमशन टुडे एट 3 PM सिबालक लेन वाकुआ में 70 बरिस की 70 ओं के श्री रोहित बहादुर जिनकरा लोग राधे मौसम पमजोतिया नाम से जनत रंजा गुजर कर होनकर माती काला दिमाग के दिन के दस बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती प्रेमिला बहादुर के घरे सिबालक लेन वाकुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिन त्वामा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमशन टुमोरो एट 10:30 AM मारी जानी रोजवेल में 81 बरिस के 81 ओं के श्री लक्ष्मी प्रसाद सनातन जिनका लोग अनिरुद्ध नाम से जाना रंजा गुजर कर होनकर माती आज दिन के तीन बजे उनकर भतीजे श्री दनेश्वर मानताया के घरे महाजानी रोजवेल से उठा के अंतिम संस्कार का दिन महाजानी रोजवेल के शमशान भूमि जावल जाए। क्रमशन टुडे एट 3 PM कालीमाई रोड रिवियर जोरम्पोर में 19 बरिस के 19 ओं के श्री अजागेन रंगासोमी जिनकरा लोग अविसन नाम से

0: ये श्रीमती चंद्रमती दर्शन, श्रीमती चंद्रमती दर्शन जिनका आलोक तारामती नाम से चंद्र रंजा गुजर कर हवन करमा दिया। आज दिन के 3 बजे, आज दिन के 3 बजे उनकर घरे जो खरे रोज नथोदाम से उठा के अंतिम संस्कार का दिन बामौसम के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 3 PM। डिस्पेंसरी रोड विच एम मिल्ट्री ओले में, डिस्पेंसरी रोड विच एम मिल्ट्री ओले में 70 बरिस के 70 ans के श्री तुलसीनाथ जय मंगल, श्री तुलसीनाथ जय मंगल जिनका लोग विनेश ताइवान नाम से जाना रंजा और जुन ट्रेली बस सर्विस के गोपूर्व बस कंडक्टर रहलंजा गुजरगल होन करवाती आज दिन के 3 बजे, आज दिन के 3 बजे उनकर पत्नी श्रीमती कुमारी सौभागीतावती देवी जयमंगल के घरे डिस्पेंसरी रोड विच एम ट्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार का दिन एस एस ऑल इन ट्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवार संगे हमने की सहानुभूति बातें।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस पर आपका हम स्वागत करते हैं। वेलकम इन द पार्ट टू ऑफ सुबह का नजराना, मस्त मॉर्निंग शो। सुबह 11:21 और अब लीजिए सुनिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक ज़रूरी विज्ञप्ति। कोहो मॉडल, चापमान व्यू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 4 जुलाई को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सभी सब सुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।
0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: AM2 रेडियो मॉरिशस, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पर हमारी मुलाकात हो रही है रेडियो की लहरों पे। और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू जी। और अभी सुबह के 8:22 हो रहे हैं और कुछ गीत है हमारी प्लेलिस्ट में, और अपनों के नाम जोड़ना चाहते हैं देन बेशक आप जोड़ सकते हैं उनके नाम। किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी है, शादी की सालगिरह है, या कोई भी खास मौका है, यू कैन SMS मी ऑन दिस टिकटॉक पेज, या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 4028085 पर। राइट, लाइन खुली हुई है। ये पहला गाना, यस, ये तेरी आँखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये गीत हम चलाएंगे खासम खास मैडी के नाम, रक्षिका के नाम, और यही गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए। वीना, मारी शो, कतुना, एंजल, मिस्टर राकेश, शैलेंद्र, और यही गाना माया कुनाई के नाम, सुरैया राम जान, केशव, सिफोहा, धर्मराज सु

Guru, Arvind Bisoni, Bhavish, Jeremy Jean, Astaman Amrita, Ajay Kudini, Kanti, Julia, Nish, Fer Zai Paruti, Ashabi, Manisha, Anita, Roshni, Devan Nadiwala. Hello, Ji. Namaste, welcome, Divesh Sahab hai. Fer Hira, Gita Kalichan, Kautik Subita, Kamla Taju, राना मगर और रक्षिका जी हाँ ये प्यारा सा गीत आपके नाम ये तेरी आंखें झुकी झुकी फिल्म का नाम आपको याद है फिल्म का नाम है फरेब काफ़ी अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे अपने ज़माने में सो चलिए भी सुनते हैं ये गाना और ये गाना हम चलाएंगे रेडियो मॉरिशस के सभी सुनने वालों के नाम और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ये गीत आपके नाम भी

भाई किसकी आंखें झुकी झुकी है, किसका चेहरा खिला खिला है, क्या बात है। और अगला गाना पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। फिल्म का नाम है अव्वल नंबर, प्रश्न गीत आपके नाम और आपके भाई रोशन, आपकी ब्यूटीफुल उषा जी के नाम भी है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता कालू गीत आपके नाम भी, गीता कालीचरण।

0: करी चरने गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ हम चलाएंगे। सामंता यह गीत आपके नाम हम चलाएंगे और अभी एक दोस्त हैं लाइन पर, उनसे मिलेंगे, निराश नहीं करेंगे। हेलो
1: हेलो, कैसे हो बेटा?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं गीता भाई?
1: मैं भी ठीक हूँ। ये कैसा बेटा हुआ, मैंने अगले सैटरडे को आपको फोन लगाया था, मेरे मेरी बच्ची की सालगिरह थी, वो छह साल की हो गई।
0: क्या नाम है उनका?
1: ले जाओ,
0: क्या नाम है?
1: दियाबाई।
0: या बाई, तो या बाई को कहेंगे हैप्पी बर्थडे, ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद।
1: ओके
0: ओके, अगला गाना उसके नाम?
1: हाँ, उसके पापा है शिवाजी, उसकी माँ है श्वेता बाई, उसकी पुप्पू है सुजा बाई, उसकी बहन है बड़ी बहन बीसवी बाई, और छोटा उसका है मलहार, और मैं की दादी गीता बाई।
0: ओके गीता बाई, सो चला देंगे प्यारा सा गाना। ऑलराइट,
1: शुक्रिया
0: जी। हाँ, हैव अ नाइस डे, और बेशक शोभा जी में फॉलो करिए। हेलो शोभा जी, हाय वंस, वंस वंस कहाँ से है आपने लिखा? अंजू हेलो, एंड ये गाना हम चलाएंगे आरव के नाम। हाय आरव, यस, एंड यही गीत कृष्ण के नाम भी हम चला रहे हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। हेलो नूरजहां, सलाम अलैकुम, आपका स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पे, और बेशक अगला गीत आपके नाम कहेंगे और यही गाना हम चलाएंगे संजय किरसन की पत्नी सुरेखा, सब बिहारी परिवार के नाम, यही गीत चाचू साइलेंट की ओर से, उनके नेफ्यू माधव के नाम और पूरे परिवार के लिए, यही गीत टीना की ओर से, उनके पति कवि, उनकी सासू माँ माला और उनकी ननद रीना, सब भैरव परिवार के नाम। यही गीत हम चला रहे हैं मिस्टर साजू के नाम, हमारे खास दोस्त हैं, अक्सर हमारे साथ देते रहते हैं, और प्रताप की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड हरीश नारायण के नाम भी यह गीत हम चलाएंगे। शोभा, यह गीत हम चलाएंगे आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, आपको भी हम कहते हैं शुभ दिन। निर्मला जी, यह गीत आपके नाम। दर्शनी इतवार, हाय मनी, सब कैसे हैं आप? हम तो ठीक ठाक है, और जितने भी लोग हमें टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं, यह गीत आपके नाम। उदार फॉरगेटिंग चांद, प्रीतम जी एंड दर्शनी इतवार जी, तो चलिए एक साथ सुनते ही प्यारा सा गाना।

पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है, और ठंड का मौसम और गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो क्या बात है। यस ओके, समीर साहब है सेटोबेसेसे एंड ही इज इन ग्रेड 13। समीर साहब वेलकम टू माय शो। सो अभी आप म्यूजिक क्लास में जा रहे 30 मिनट्स में, सो जरूर जाइएगा और गाइएगा पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। समीर इज़ ए वेरी गुड बॉय है, वेरी गुड बॉय, और बेशक समीर जो है बहुत अच्छा लड़का है और अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। आई एम श्योर आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। वर्क हार्ड एंड यू विल गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स, आई एम श्योर। यस समीर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाची भी हमें देख रही है, हेलो चाची कुमाऊँ, हेलो नमस्ते। और यही अगला गाना हम चला रहे हैं, माला के नाम। यस गाना बोल भी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गणेश वरुण, ये गीत आपके तीन बच्चों के नाम, आपकी पत्नी और सब गणेश वरुण परिवार के लिए। और आज गणेश रहेंगे रोजबेल में, क्या बात है, क्रिस्पी क्रिस्पी मुर्गियाँ। और ये गीत चलाएंगे मगर जी के नाम, हेलो दीना जी, स्वीट एंड लवली तीना दीना जी, हाँ जो बहुत प्यार से हमें देख रही है। हेलो वृंदा, नमस्ते जी, सुस्वागतम। एंड और यही गाना हम चलाएंगे रीता के नाम, रीता सीतालू के नाम, ये गीत हम चलाएंगे उनके सभी बच्चों के सब परिवार के लिए। रीता जी गेट वेल सून। और रीता जी, इमली का जो केक था बहुत अच्छा था ना, इट वॉज सो टेस्टी। कहा मैंने इमली का केक खाया, बहुत बड़ा मज़ा आया। हमारे जब कहते हैं कि जब आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है और आपको स्वाद मतलब अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, तो आप वो जो होता है पैकेट में बिकता है तमागा, जिसमें शक्कर और नमक होता है, खा लेना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। हेलो हिलारी के

0: Tani, next gana for you. Hi Vanita. और जितने भी लोग बीमार हैं, खांसी सर्दी जुकाम है आप लोगों को, सो अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। दवा और दुआ दोनों काम आता है। सकुनलाल, यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। और हीरोलाल दिनू, ये गीत आपके नाम, वंदना गुमानी एंड चंपा और देविका रामगतिया भी हमारा साथ दे रही है। राधा जी, राधा शिवालक मातावा से, उनके बेटी प्रशांत, बहु बेटी बेटी है शिल्पा, दामाद और सब उनके परिवार के लिए। यस, फिर उमा जगन्नायक लुलिस्कारी से है, आपकी बेटी दृष्टि, आपके दामाद और पूरे परिवार के लिए। और यहाँ पर कोई कुछ दोस्त है, उनसे मिलेंगे। आई ट्राई टू लिसन टू देम। हेलो,
1: हेलो,
0: हेलो जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी,
0: आपका नाम?
1: श्रीमती
0: सुयाक से।
1: सुयाक से,
0: हाँ, सब ठीक ठाक?
1: सब ठीक है, आप ठीक है?
0: ठीक है, बोला अगला गीत क्या करते?
1: दामाद के जन्मदिन है।
0: हाँ,
1: दामाद के नाम मदालवे रहेला, दामाद के नाम है संजय, और उनकर पत्नी के नाम है रेशमा,
0: ओके,
1: विकेश, बेटी वंशिका, और सब चंद्रा मुनि परिवार की तरफ से डाल दिया गीत।
0: ओके, क्या सा गीत हम चलेंगे? ट्राई टू बी शोर एंड स्वीट, क्योंकि बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। हेलो,
2: हेलो प्रताप जी।
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: ये प्यारी सी आवाज, ये प्यारी सी आवाज के कर है, इसन जोली आवाज।
2: हाँ, तो ता आवाज हम नहीं बा तोरा फेसबुक पे देख ली दिनवा था, हम बेटा बतावा था, हम बोले अभी तो बहुत जवान हो।
0: बोले अभी तो मैं जवान
2: तो वजह जैसा बच्चा ला जैसा अच्छा से जाता, हम बोली तनी सा उम्र में हम, लेकिन तब देखे
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी हम अभी लिए जिने से हैं, हम अभी लिए जिने से
2: हैं, इतना बच्चा लन, इतना जैन हवान, बहुत खुशी हो गई ली।
0: ये सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है।
2: हाँ प्रताप जी, भगवान थोड़ा शक्ति दे, ऐसे ही बात कर ले, हम लोग के आशा रहे ला।
0: हाँ, सामदी के हम जैसा ढेर कोई सब आतान करें से कब प्रताप जी और अच्छा अच्छा
2: हम उठे लाइन नहीं मिली था।
0: हाँ, ज्यादा
2: नहीं खुश है, बेटा के कल जन्मदिन था।
0: ओके,
2: कौन? कविराज गंगा।
0: हाँ, हैप्पी बर्थडे बोला था।
2: बहुत धन्यवाद। उनकी पत्नी है पल्लवी, उसकी छोटी बेटी है सिया, और उनकी सासुमा है पल्लवी, उनकी सासुमा है सुनीता, उनकी बहन है राति, जीजाजी है अरुण, वो लोग फ्लाक रहते हैं, और मिहान, और मेरी उनकी छोटी बहन है रीना। अब सब गंगा परिवार के लिए, अब जो बात तू बचा दो।
0: हाँ, तो हम बोलते हैं ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, जितना कोई के नाम बोला, सब कोई के बोला, सब लोग के लासौते अच्छा रही, परिवार में प्यार आशा, हम तो रोज के पूजा सब कोई खाती, जब हम पूजा करी रहा था, हम सब कोई खाती, तो लोग सब कोई खाती पूजा करी रहा, जब मित्र गोरा तो अच्छा से रही, तब प्रोग्राम में भाग ली। बहुत बहुत
2: धन्यवाद,
0: शुभ दिन आपको भी। और एक नानी है अभी, उन्हें सिंगे। नानी जी नमस्ते, कैसे
3: नाम आपको,
0: कैसे समाचार नानी?
3: समाचार एकदम ठीक,
0: एकदम चकाचक
3: में है।
0: हाँ,
3: आज शाम जी है प्रताप सिंह के, ओकर आवाज आवे ला ना,
0: क्या बात,
3: सब कोई खातिर पूजा
0: करे ला ना। और आज के दिन कैसे बीते नानी, बोला था आज के दिन कैसे बीती?
3: आज के दिन आज के दिन काम सब रमा दिली, काश
0: रहा
3: सब काम रमा दिला, आज
0: ओके ओके,
3: बड़ा भाई बाबू ने भी सबको रुपात टेंशन का जाला बिजी थों दे करे के।
0: हाँ, अच्छा बात,
3: हमारे को घर बा जाला टेंशन को से बचा ले जबाई।
0: ओके, और अगला गीत किसके लिए? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
3: हाँ,
0: ये गीत आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ऑलराइट, और चलिए अब हम सुनते हैं ये गाना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बातचीत और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब गीत चले तो फ़ोन मत कीजिए, गीत समाप्त होने वाला हो तब फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि गीत को हम काट नहीं सकते बीच में, क्योंकि लोग गीत को एंजॉय कर

दिस लेट देम एंजॉय द गाना. जब गाना समाप्त होने वाला हो तो आप फोन कीजिएगा. समीर साहब फ्रॉम सेंटर बेसिस ऑफ ग्रेड 13. थैंक यू समीर फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर वॉचिंग मी ऑन टिकटॉक पेज.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

इंसान बहुत कुछ चाहता है ज़िंदगी में, पर सब कुछ नहीं पाता। कुछ पाता है, कुछ खोता है। इसी खोने पाने का नाम तो ज़िंदगी है। और अगर सब कुछ पा लें तो मज़ा ही क्या रह जाएगा ज़िंदगी में। इसीलिए ज़िंदगी में कभी कभी सरप्राइज़ आते हैं, कभी कभी अच्छे सरप्राइज़ भी आते हैं, कभी कभी बुरे सरप्राइज़। पर अच्छे सरप्राइज़ को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग गुड इन लाइफ, यू नो। कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होता है। इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि आप लोग कहें कि सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, कुछ तो ठीक है। जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप काम पे जा रहे हैं, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी ठीक है, ये तो दैट्स समथिंग पॉजिटिव। या आप काम पे है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, ओवर टाइम कर रहे हैं, आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए गए, आप पास हो गए, तो ये तो समथिंग पॉजिटिव है। आपने खाना बनाया, खाना अच्छा बना, सभी लोगों ने टेस्टी यमी यमी खाना खाया और बोला वाह वाह वाह क्या बात है, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, जो जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो डू सम कॉम्प्लीमेंट समय समय पर। पत्नी ने अच्छा खाना बनाया तो पत्नी की तारीफ कीजिएगा कि वाह भाई आज आपने क्या खाना बनाया। या पति ने अगर किचन को साफ़ कर दिया तो पत्नी कह सकती है हे सो स्वीट ऑफ यू, आपने किचन कितने खूबसूरती से साफ़ किया। अब ये नहीं कि बात बात में आप ताना देते हैं। हाँ, अगला गाना, दूर है तो क्या बहारों में तेरा। पद्मिनी कोल्हापुर पर फिल्माया गाना, हम इंतज़ार करेंगे दिस गाना फॉर विजय शाही। लवना पिक्चर बैग भी हमारा साथ दे रही है और दीपा तिवारी दुखित है कनाडा से, उनके पति केविन, उनके बेटे और सब दुखित परिवार के नाम। रंभा जी स्विट्जरलैंड से हैं, हेलो रंभा जी, आपकी बेटियों के नाम और जानकी परिवार ऑफ गुडलैंड्स। और यही गाना संजय हरिचंद की ओर से, उनकी पत्नी, उनकी बेटी हविष्का और सब हरिचंद परिवार के लिए, आप पितों से है। फिर ऑस्ट्रेलिया से है अजय एंड पूनम चिंताराम, उनके बेटे बाल गोपाल। मॉरिशस में उनकी माँ है इंदिरा चिंताराम, बेटा चंदन, बहू प्रिया, बेटी सलोनी एंड माता जी चिंताराम को हमारा सादर प्रणाम है, नमन है। डरलामी, दिस गाना फॉर यू डरलामी जी, डरलामी थीठो एंड लवना। तो चलिए साथ सुनते ही प्यारा सा गाना। बेशक आप डांस करना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं इस गीत पर, तो झूम सकते हैं, जरूर झूमिएगा, हम भी झूमते हैं आप लोगों के साथ।

गीत एकदम ज़बरदस्त, एकदम प्यारा है, इंतज़ार हम करेंगे। यस, इस गीत के बाद हम आपको छोड़े जाएंगे तोहफा मोहब्बत का के गीत के साथ, और वो प्रोग्राम वो गाना में लेके जाए 9 बजे के फ्लैश न्यूज़ की ओर, और 9 बजे का संक्षिप्त समाचार, उसके बाद आप सुनेंगे आज की चर्चा पीक टाइम मैगजीन। यस ऑलराइट, और हमारी आपकी मुलाकात अब होगी आज शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। प्रोग्राम होगा पुराने नग में नई सोच और दिलों की आवाज़। सो आई कैच यू दिस इवनिंग एंड टुनाइट फ्रॉम 5 PM टू 9 PM ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के शुक्रिया। अनिल मंगरू जी वेलकम, सुस्वागतम, हाई प्रिंसेस आरती। यस, सो यह गाना अमेरिका जाएगा और एक गीत की ओर, प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं। That will be the last song of this program. मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजारा। सो सुबह के 6 बजे तक हमारा साथ देने के लिए, हमें SMS करने के लिए, फ़ोन करने के लिए शुक्रिया, करम मेहरबानी, बाय बाय। और जय प्रताप सिंह की ओर से आप लोगों को ढेर सारा प्यार, शुभ दिन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है टीना, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते टीना।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रियोली स्थित रविन्द्रनाथ गावाघन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन का आधिकारिक शुभारंभ किया। स्टेडियम के दोबारा खोलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी, और प्रधानमंत्री ने मध्यपूर्व में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़े असर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष के चलते आयातित वस्तुएं महंगी हो गई हैं। उनके अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जो पेट्रोलियम, रसोई गैस, चावल और आटे का आयात करती है, इस युद्ध के कारण 3.2 बिलियन रुपये के कर्ज में पहुंच गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों ने मॉरिशस की आर्थिक स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया है। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार देश में बदलाव लाने और मॉरिशस को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ज़रूरी चीज़ों पर नई छूट लागू होने के 3 दिन बाद, जो कि बजट 2026-2027 के परचेसिंग पावर शिल्ड के तहत दी गई है, इसके शुरुआती असर दिखने लगे हैं। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीज़ें इस छूट में शामिल हैं। सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चूना मछली के सेक्शन में, जो नए सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। हालांकि असर मिला जुला है, कुछ उत्पाद सस्ते हुए हैं, लेकिन जो सब्सिडी में शामिल नहीं है उनके दाम बढ़ने से कुल मिलाकर कीमतों में बड़ा बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी, और मंत्रिपरिषद ने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन के गठन की भी मंजूरी दी। इस आयोग के चेयरपर्सन विनोद बुलेल होंगे और वाइस चेयरपर्सन अफुन च्वी युंग युचोंग होंगी, और यह आयोग विशेषज्ञों के तहत संविधान में संभावित सुधारों और बदलावों का अध्ययन करेगा। विदेश में यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है कि यदि उसने ईरानी नागरिक विमानों की सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आवाजाही में बाधा डालना जारी रखा तो उसके हवाई अड्डों और अन्य रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई, हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सभी श्रोताओं का और MBC3 पर हमारे सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। 4 जुलाई शनिवार का दिन और आज की चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। 1 घंटे का ये सफ़र रहेगा और बिल्कुल आज के इस सफ़र में कुछ ऐसी बातें जानेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, वो किस तरह से प्रभावित हुई है और इस प्रभाव के कारण हमारा सेहत, हमारी जो सेहत है, इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ये आए दिन हम हर एक दिन हम ये ऐसी बातों पर चर्चा करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो जीवन शैली है, ये हमारे जीवन को ही नहीं पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ये प्रभावित करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं आयुर्वेद डॉक्टर और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर दिया बाबू, आर्ट ऑफ लिविंग के ओर से यहाँ पर वे उपस्थित हुई हैं और उनका ये मॉरिशस का जो दौरा है, मॉरिशस का जो सफ़र है, बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको इस मंच पर आमंत्रित करने का। डॉक्टर दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आज के इस कार्यक्रम में हम जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात करेंगे। तो मैम, पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जीवन शैली की जो समस्याएं हैं, ये किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
1: तो हमेशा हम यही चाहते हैं, हम लोग बैलेंस रहें, हमें एनर्जी होना है सब काम करने के लिए, तो सब एज ग्रुप के लिए वही चाहिए, बच्चे हैं या वर्किंग पीपल है, कोई भी। तो ये बैलेंस कैसे लाना है और कहाँ कहाँ होना है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो हमेशा हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस, बॉडी को स्वस्थ रखना है, इसके लिए हम खान पान का देखभाल रखते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि हमारा मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, माइंड भी बैलेंस रखना है, तो इसके लिए मेडिटेशन, योगा, ये सब प्रैक्टिसेस हमें साथ साथ रखना है डेली रूटीन में। और जीवन शैली ये होता है कि एक प्लान्ड रूटीन, जो अगर हम वो आयुर्वेदा के तौर से देखते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, तो हम ये जीवन शैली से ही हमारा जो भी स्वास्थ्य है वो मेंटेन रख सकते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदा सिर्फ हमारे जो
0: दवाई है, दवाई है, हेल्थ की ओर ही, बट उसके साथ साथ हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस पर भी हम काबू रख सकते हैं। तो डॉक्टर जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम जब बात करते हैं जीवन शैली, तो अच्छी जीवन शैली और बुरी जीवन शैली, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है?
1: तो जीवन शैली में ये होता है कि हम एक दिन कैसे बिताते हैं।
0: अच्छा।
1: तो सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे हम सोने के लिए जाते हैं, कितना घंटा सोते हैं और कब खाना खाते हैं, तो काफ़ी ये टाइम ये होता है बिजी लाइफस्टाइल के कारण ना, लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या लेट सोते हैं सुबह और लेट उठते हैं, तो इसी से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो एफिशिएंसी है, वो धीरे धीरे कम होते आता है। अगर हमने सही टाइम पे हमारे बॉडी के लिए रेस्ट, एक्सरसाइज या खाना सब दे रहा है, तो उसी से हमारा बॉडी बैलेंस रख सकते हैं।
0: यानी समय, सही समय पर सारा कुछ होना चाहिए। अगर आज आपने, ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम देर से सोएंगे तो स्वाभाविक है कि देर से उठेंगे, और जो खाने का टाइम है वो भी शिफ्ट होता जाएगा, एक्सरसाइज का टाइम है वो भी, कई बार होता है कि एक्सरसाइज ही नहीं करने को, हम हमेशा ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी जीवन शैली बनाती है। तो डॉक्टर जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि समय परिवर्तन, अभी जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज के साथ हमारे जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आए हैं, पर जैसे हम कह रहे हैं ना कि पहले के समय में लोग घर का काम खुद किया करते थे, कपड़े धोने नदी जाया करते थे, पानी भरते थे, ये सारी चीज़ें पहले होती थी, आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, टाइम चेंज हो चुका है, तो ये बदलते टाइम के साथ ये हमारे शरीर को भी अफेक्ट कर रहा है। हालांकि आज मॉडर्निटी हो चुकी है, मॉडर्नाइजेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके?
1: ये अच्छा है कि हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें फास्ट चल रहा है।
0: सही।
1: पहले जब हम, अभी तो ग्राइंडर है या मिक्सी है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारा
0: गैजेट्स बढ़ गए हैं।
1: तो इससे काफ़ी सारे चीज़ें हम ना टाइम

0: ज़्यादा नहीं लगते हैं करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ है, और पहले जो भी काम होता था ज़्यादातर बॉडी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता था, लेकिन ज़्यादातर अभी एक कैबिन में बैठ के या स्क्रीन के आगे बैठ के वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आने लगा है लोगों को। तो हमें कॉन्शियसली इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा
1: जी,
0: थोड़ा वॉकिंग के लिए। अगर ऐसा काम है 8 घंटा एक साथ बैठना है तो हम बीच में पानी के लिए या कुछ ना थोड़ा डेस्कटॉप स्ट्रेचेस ये सब करके थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। और ये भी है कि हमारा जो इंद्रिया है सेंसेस, ये सेंसेस का भी थोड़ा बैलेंस हमें रखना है। हमें तो पता है ज़्यादा टाइम हम अगर हम ईयरफोन लगा के बैठते हैं तो कानों के लिए अच्छा नहीं है।
1: सही बात।
0: इसी तरह हमारा आंखों का भी हम एक्स्ट्रा ओवर यूज हो रहा है अभी आजकल। तो और ये आंखें और ब्रेन कनेक्टेड है, वो ऑप्टिक नर्व वगैरह है ना, तो इसलिए जो भी तनाव हमारे आंखों में आ रहा है वो उसका असर तो हमारे माइंड और ब्रेन पे भी आ रहा है। तो इसलिए रोज हमें थोड़ा सा रूटीन में ना थोड़ा बैलेंसिंग लाना है। तो इसमें एक तो चीज है थोड़ा ऑयल मसाजेस आंखों के लिए, थोड़ा पानी से हमें धोना है, और एक्स्ट्रा हम केयर दे सकते हैं बीच बीच में थोड़ा रेस्ट आंखों को देना है। इससे जो एंड ऑफ द डे आपको महसूस होना वाला है जो भी थकावट वगैरह वो कम होता है।
1: तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो भी हम कर रहे हैं हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ को गिव अप कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे। तो आपने जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपने बताया ईयरफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आँखों का यूज़ डेफिनेटली, हम स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि हम अपनी आँखों को रेस्ट देना भूल गए हैं, और जिसका तनाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है, और हमारे कह सकते हैं कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। हेल्दी स्लीप जो बोलते हैं वो बहुत रेयर लोगों को आजकल अनुभव होती है। तो ये सारी चीजें हमारे हेल्थ को असर कर रही है। डॉक्टर जी मैं पूछना चाहूंगी, अगर नींद पूरी ना हो, अगर हम जितनी नींद हमें चाहिए उतनी हम हेल्दी स्लीप जो बोलते हैं डीप स्लीप जो बोलते हैं वो ना लें, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम इससे खराब हो सकता है?
0: तो ये दिनचर्या हमें क्यों पालन करना है, एग्जैक्ट टाइम जैसे हम बोलते हैं सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा एक टाइम है ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 आवर्स सूर्योदय से पहले जो टाइम है।
1: हाँ।
0: तो उस टाइम पे अगर हमने कभी एक्सपीरियंस किया है तो पता होगा उस टाइम पे उठने से हमारा अलर्टनेस ज़्यादा रहता है।
1: अच्छा।
0: इसलिए बोलते हैं सुबह उठ के थोड़ा टाइम मनन करना है, अपने लिए थोड़ा मी टाइम लेना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी तेज चलता है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, ग्रास्पिंग भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हमारा आदत ऐसा हो गया कि लेट सोते और लेट उठते तो थोड़ा हमारा जो एफिशिएंसी, शार्पनेस, फोकस वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते आ रहा है। तो ये हम कर सकते हैं हमारे रूटीन में थोड़ा, और हर एक टाइम पे हमारा बॉडी का हर एक जो भी है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कुछ ना कुछ तो एक्टिव रहता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम बोलते हैं कि लंच टाइम पे थोड़ा इट इज़ एट द पीक, सन जो है सूर्य का जो बल है वो ज़्यादा
1: रहता है।
0: इसलिए उसी तरह हमारे अंदर भी अग्नि भी अच्छा रहता है। इसलिए हमें ना मेन मील ऑफ द डे अच्छा खाना क्वांटिटी वाइज भी
1: न्यूट्रिशन वाइज क्वांटिटी
0: में लेना है। तो इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि कब कितना खाना है, कैसे खाना है, इससे हमारा नरिशमेंट भी अच्छा होता है। और दिन में पूरा काम करते रहता है तो रात को तो रेस्ट चाहिए होगा। और जब हम गहरी नींद में हैं तो हमारा बॉडी का काफ़ी सारा रिपेयरिंग वर्क होता है, जैसे कि हमारा मेन ऑर्गन्स इंटरनली लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स का जो भी वो दिन का जो भी वेस्ट है वो निकालने का वो काम उसी टाइम पे चलता है।
1: टाइम होता है
0: अगर हम गहरी नींद में नहीं है और अगर खाना लेट खा के अभी भी डाइजेशन चल रहा है तो वो डिटॉक्स ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगों को आजकल फैटी लीवर का इश्यू है, वो केवल सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण ही नहीं, ये जो गलत टाइम पे खाने से भी होता है।
1: तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई सारी जगहों पर मैं समझती हूँ हमारे जो खासकर यहाँ का जो कल्चर है, ईटिंग कल्चर है, कैसे होता है कि दोपहर के टाइम में हम उतना हैवी भोजन नहीं ले पाते क्योंकि हम काम करते हैं, और काम करने के टाइम पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें खाना खाना पड़ रहा है, और ऐसा माना जाता है कि भाई शाम के टाइम आराम से

0: ताकि अच्छा डिनर बनाएंगे, भरपूर पेट भर के हम लोग फैमिली के साथ बैठकर खाते हैं। और देर रात को, मतलब यूजुअली यहाँ पर 8-9 बजे खाना खाया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि तुरंत, कुछ लोगों को आदत है कि खाना खा के तुरंत जाके सो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत ही गलत आदत है जो हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। और डेफिनेटली जैसे हम बात करते हैं आजकल इंसोम्निया यानी नींद ना आना, माइग्रेन यानी लगातार सर दर्द रहना, एसिडिटी जैसी इश्यूज जो है ये भी हमारे जीवन शैली के कारण बढ़ते जा रही है। तो डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी बीमारियों को इन सारी चीज़ों के साथ हम कम कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि खाना सही टाइम पर खाना है, नींद सही टाइम पर लेना है, तो ये सारी समस्याएं भी क्या इससे ठीक हो सकती हैं?
1: ये समझने के लिए हमें थोड़ा हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं ना, हाँ, हमारे शरीर 5 तत्व से बनता है
0: जी।
1: तो जब हमारा अंदर जो अग्नि तत्व है, इसी से डाइजेशन रिलेटेड है
0: जी।
1: अगर मैं आज 8 बजे खाना खाया और कल 8 बजे में स्किप करके,
0: हाँ,
1: थोड़ा 10 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हो, तो इसमें क्या होता है, वो 8 बजे बॉडी रेडी होता है,
0: हाँ,
1: थोड़ा डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह ना रेडी होता है, लेकिन खाना नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ता है। तो एसिडिटी बढ़ने से वो अग्नि हीट वो बढ़ता है, और इसी की वजह से कुछ लोगों को वो माइग्रेन वगैरह होता है। एक दिन दो दिन में प्रॉब्लम्स नहीं होता है, लेकिन
0: कंटिन्यूस
1: रॉन्ग टाइम पे खाना, इससे एसिडिटी डेफिनेटली होता है। और काफ़ी ऐसा भी देखा है कि लोगों को ज़्यादा वर्क, स्पेशली डेडलाइन लेके काम करते हैं, वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं उस टाइम पे, कभी खाना भी नहीं खाते, नींद भी ठीक से नहीं होता है। इसी से भी हम, इससे रिलेटेड भी हमारा जो गर्मी है बॉडी का, हीट, ओवर हीटर, जैसे जो भी मशीन ज़्यादा टाइम काम करता है तो वो गर्म हो जाता है।
0: सही बात, सही बात।
1: इसी तरह हमारा बॉडी भी ओवर हीट होता है, इसकी वजह से भी हमारा जो हीट है,
0: हाँ,
1: ज्यादा होता है और माइग्रेन ट्रिगर होता है। एंड ऑफ कोर्स माइंड, इमोशंस हमारे बॉडी के ऊपर जो भी प्रभाव है लाते हैं, इससे भी ये सब एसिडिटी भी होता है। इसलिए जिन लोगों को कांस्टेंट प्रेशर में काम करना पड़ता है ना, उनका एसिडिटी का इश्यू हो सकता है,
0: मतलब उनका जैसे क्रॉनिक होने शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ, जैसे आप बता रहे हो कि वो ऑन एंड ऑफ उसको ट्रिगर करता है, उसको बढ़ाता है। तो क्या एसिडिटी ऐसे ऑन एंड ऑफ बढ़ते रहने से, क्रॉनिक होने से, क्या और हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं डॉक्टर जी?
1: हाँ, इससे हमारा माइंड भी ट्रिगर हो सकता है।
0: अच्छा।
1: इरिटेबिलिटी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, छोटे से बात को लेके वो बहुत
0: गुस्सा हो जाए,
1: गुस्सा, और कभी कभी ना काम पे फोकस नहीं हो पाता है। एक्चुअली ये डेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, ये सब इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हमें एक साथ थोड़ा सा बैलेंस के लिए योगा, मेडिटेशन, ये भी प्रैक्टिस करने से जो भी तनाव आ रहा है वो थोड़ा हैंडल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: खाने का तो हमें पता है क्या अच्छा है क्या नहीं है,
0: सही।
1: लेकिन कभी कभी हम फॉलो नहीं करते हैं, वही है प्रॉब्लम। वो अवेयरनेस है सबको, लेकिन थोड़ा सा वो उसके लिए थोड़ा
0: लेजी हो रहे हैं, थोड़ा कहीं बार हम लोग लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, जो हमारे हेल्थ को असर करता है। सही बात कहा, जैसे डॉक्टर दिया ने हमें समझाया कि कई बार हम सब जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, पर हम उस बातों पर ध्यान नहीं देते। ध्यान तब देते हैं जब हमारी सेहत पूरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाती है। पर देखा जाए तो अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, इन्हें आदत बनाएं, तो आप देखेंगे कि आप लंबे समय तक बीमार भी नहीं होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा। एंड डेफिनेटली ये हर एक की जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति अगर पूरे घर की जिम्मेदारी ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे। हम सारी दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं पर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली को बिगाड़ रहा है। बिल्कुल, आज की चर्चा का कार्यक्रम, और आज हम बात कर रहे हैं जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल से उत्पन्न होने वाले कई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ जो हम जानते हैं पर नज़रअंदाज करते हैं। आज रेडियो मॉरिशस पर इसका कार्यक्रम सीधा प्रसारित अभी आप सुन पा रहे हैं, और MBC के तीसरे चैनल पर इसे आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं कादिया, और साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा एक गीत के बाद।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और NBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन हमारे साथ जुड़ चुकी है। और बेशक आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो मेहमान, हमारी जो अतिथि हैं, वो है आर्ट ऑफ लिविंग से आई हुई डॉक्टर दिया बाबू। भारत से वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। वे एक आयुर्वेदा डॉक्टर है और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य ये है कि हम जान पा रहे हैं कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी इन जानकारियों को अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन शैली को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। और चलिए, यहाँ पर आजकल हम कहते हैं ना कि डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी डिक्शनरी में ऐड होते जा रहे हैं, और उनमें से एक शब्द है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से। जी हाँ डॉक्टर जी, आज फोमो या स्क्रोलिंग करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन करना, सोशल मीडिया पर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे भीतर एंजाइटी का कारण बनती जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी, ऐसा क्यों हो रहा है?
2: तो पहले हमें घर में अगर कुछ फ्री टाइम मिल रहा था तो हम कुछ करते थे,
1: प्रोडक्टिव थे।
2: यस एग्जैक्टली, और इंटरेक्शन काफ़ी होते थे एक दूसरे के साथ या नेबर के साथ, कुछ भी, बच्चे भी है ऐसे घर से निकलते हैं बच्चों के साथ मिलते हैं।
1: हाँ,
2: लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सबका अलग अलग एक डिफरेंट स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड्स दुनिया बन रहा है। एक ही कमरे में बैठते हैं लेकिन अलग अलग दुनिया,
1: कोई किसी से बात नहीं कर रहा।
2: हाँ, वो इंटरेक्शन कम हुआ है। और एक मोबाइल लेके बैठते हैं तो ब्रदर भी लेके बैठे हैं, अलग दुनिया में बैठे हैं, फादर मदर
1: हाँ,
2: सब लोग
1: हाँ।
2: तो ये जो इंटरेक्शन की कमी हुई है, इसी की वजह से सब इनसिक्योरिटीज़ भी हुआ है। पहले ऐसा होता था कि जब घर लौटते तो सब पूछते हैं कैसा रहा दिन, क्या क्या हुआ। तो अभी तो फास्ट लाइफ चल रहा है, मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, तो इट्स मिसिंग आउट। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर फैमिलीज भी है।
1: हाँ, तो पहले दादा दादी हुआ करते थे तो कुछ ना कुछ दादा दादी भी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, टाइम स्पेंड होता था।
2: तो इससे क्या होता है कि जो बाहर की दुनिया को देख के हम जो महसूस करते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा ही ऐसा ही हो रहा है। तो वो अकेलापन का ये हो रहा है क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है। इसलिए क्वालिटी टाइम निकालना है, एटलीस्ट एक फैमिली में सब लोग बैठ के 15 मिनट्स, 10 मिनट्स जो भी है, साथ साथ में डिनर खाने का जो वक्त, वो सिर्फ हमारे लिए रखना है। वो मी टाइम निकालने से ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसलिए हम हर एक जो एज ग्रुप है, इन लोगों के लिए जो भी इन वर्कशॉप्स लेके आते हैं, जो योगा मेडिटेशन एज रिलेटेड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़
1: है,
2: क्योंकि टीनेजर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है वो हार्मोन्स की वजह से और चैलेंजेस की वजह से, तो उनको थोड़ा उनका पर्सनालिटी को वो मॉडिफाई करें, क्योंकि उनका भी अलग अलग इश्यूज रहता है, फ्रेंडशिप रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड,
1: पढ़ाई को लेकर, बिल्कुल
2: सब। तो उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस करने के लिए उनको पहले उनका सही रास्ता दिखाना है,
1: गाइडेंस बहुत जरूरी है।
2: और हम हमेशा ये बोलते हैं, हम जब पॉजिटिव रहते हैं तो सब अच्छा होता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी अंदर कैसे लाना है?
1: सही बात।
2: तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं, वो एंथुसियाज्म रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हम वो कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम उदास बैठते हैं, एनर्जी लो रहते हैं, ऐसे फील होता है कि हम अकेले हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर। हमारे अंदर अगर हम बैलेंस लेके आ रहा है तो वो हम सभी जो प्रॉब्लम्स होता है वो फेस कर सकते हैं। तो वो कैसे लाना है, इसलिए मेडिटेशन, प्राणायाम प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। से हमारा प्राणा बढ़ता है। प्राणायाम क्या होता है, प्राण को बढ़ाने वाला टेक्निक। तो वो करने से हमारा पॉजिटिविटी है, ऊर्जा, एंथुसियाज्म सब अच्छे से बनाए रखते हैं। इसलिए सब एज ग्रुप के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है,
1: बहुत ज़रूरी है। यानी डॉक्टर दिया का यही कहना है, यही मानना है कि हर एक

0: एक ग्रुप को योगा मेडिटेशन। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, हम कई बार इन्हीं सारी चीज़ों से डर कर बस पीछे कदम ले लेते हैं कि हमसे योगा नहीं होगा। पर देखा जाए तो योगा हर एक ग्रुप के लिए बना है, कैसे करना है टेक्निक सिखाई जाती है हर सेंटर्स में, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स में कई सारे ऐसे ट्रेंड टीचर्स हैं जो आपको सही गाइडेंस देते हैं। दिया जी, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसे आप हमें बता रही हैं कि ये जो सारी गलत आदतें हैं, मोबाइल टाइम में हम इतना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो क्या इसका संबंध हमारे, इसका जो प्रभाव है हमारे इमोशंस पर भी पड़ता है? क्योंकि आज जैसे आप बता रहे थे कि बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मैं समझती हूँ 100 साल पहले एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी कोई समस्या हमने कभी नहीं सुनी थी, पर आज के समय में ये तो आए दिन छोटे बच्चों में भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या है। तो क्या इसको भी हम जोड़ सकते हैं कि हमारी जीवन शैली के कारण ही ये हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है?
1: डेफिनेटली ये जीवन शैली की वजह से है। आजकल बच्चे लोग स्क्रीन लेके वो सोते हैं, सुबह उठते फर्स्ट स्क्रीन ही देखते हैं,
0: स्क्रोलिंग।
1: हाँ, स्क्रोलिंग की वजह से क्या होता है, अटेंशन स्पैन कम हुआ है, और जो काम टाइम पे होना है उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, और या सही टाइम पे या सही मात्रा में वो कर नहीं पा रहा है। तो इससे क्या होता है, टेंशन बढ़ता है, तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, टाइम पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं है, जो बाहर की दुनिया में चल रहा है वो अवेयर भी नहीं होता है।
0: सही बात।
1: तो वो प्रेजेंट मोमेंट में माइंड को लाना बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी अपने पास जो भी बैठा है उनका क्या चल रहा है वो भी नहीं पता चलता है।
0: जी, जी।
1: तो एक इंटरेक्शन भी कम होता है, इसकी वजह से एंग्जायटी डिप्रेशन सब होता है। कभी कभी हमने तो सुना होगा ना, जो भी सुइसाइड करते हैं,
0: तो आजकल तो सुसाइड केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं।
1: उनको क्या हुआ होगा कि उस मोमेंट में उसे लगा होगा मुझे कोई नहीं है, वो जो स्ट्रेस है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे,
0: शेयर नहीं कर पा रहे।
1: एग्जैक्टली। तो और वो मोमेंट में उन्हें लगा कि मुझे ये सब खत्म करना है, तो इट्स जस्ट ए मोमेंटरी थॉट। तो वो मोमेंट में ठीक से नहीं लगा और उनको सही डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए वो गलत रास्ते पे गया। तो कभी कभी हमें हमारा जो प्राण शक्ति के ऊपर ना हमें खुद काम करना पड़ता है, इसलिए मी टाइम लेना है, थोड़ा प्राणायाम ध्यान का प्रैक्टिस करना है। ये मुझे क्या लग रहा है, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना है, इसलिए हम नो योर चाइल्ड बोल के एक प्रोग्राम भी रखा है जो पेरेंट्स के लिए रहता है।
0: अच्छा।
1: 1-2 घंटे का प्रोग्राम है, वो भी नो योर चाइल्ड नो योर टीन अलग अलग प्रोग्राम्स है, क्योंकि उनको डील करने के लिए एक तरीका ना वो पेरेंट्स को भी आना है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर दिया, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि बच्चे उन्हें नहीं समझते, और बच्चे ऐसा समझते हैं कि पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है, हम ज़्यादा जानते हैं और हमें हमारे जो इमोशंस से हम डील करते हैं। मैं समझती हूँ हर एक पेरेंट का आज के समय में यही एक्सपीरियंस रहा होगा, बच्चे बार बार ये कहते हैं कि आप मुझे नहीं समझोगे, आपसे नहीं होगा। तो ये सारी जो जनरेशन गैप वाली जो फीलिंग है, वो प्राणायाम योगा द्वारा वो कैसे मिटाया जा सकता है, या फिर जो भी आप बता रहे हैं सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, आप थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट या कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके थ्रू बच्चों में और पेरेंट्स में वो कोऑपरेशन बना रहे, वो बॉन्डिंग बनी रहे?
1: वो एक तो है क्वालिटी टाइम जो मैंने पहले बताया था, वो एक ऐसा फ्री टाइम रखना है जहाँ पे हम खुल के बात कर सकते हैं
0: जी।
1: तो एक तो है हम क्वालिटी टाइम पे जो भी बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड जैसा बैठ के बात करने का, उनको सुनने के लिए पेरेंट्स रेडी रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स जो बोलते हैं वो फॉलो करना है बस।
0: हाँ।
1: वो जो बोलते हैं वो सुनने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम शुरू होता है। तो पहले उनके जो लेवल पे जाके सुनना है, तो उससे काफ़ी सारा वो ओपन अप हो जाता है, और वो रिलेशन भी ज़्यादा ना वो अच्छा बनता है फादर मदर के साथ।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो एक चीज़ है। दूसरा है, अपना खुद का तनाव लेके घर आ जाता है सब लोग, इट कैन बी वो बच्चे का भी तनाव होता है या पेरेंट्स का भी,
0: मतलब किसी और का गुस्सा कहीं और निकल रहा है।
1: हाँ, तो इसकी वजह से भी बिगड़ जाता है प्रॉब्लम्स, वो सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं ना। तो इसलिए प्राणायाम मेडिटेशन से हम फिर से एक नया स्लेट जैसा, हम काफी सारे लिखते हैं लेकिन फिर से फ्रेश होके सब सुन सकते कर सकते हैं।
0: तो यानी ये एक होना चाहिए कि एक जो लिसनिंग एटीट्यूड है, लर्निंग एटीट्यूड है, कई बार हम पेरेंट्स

0: हो जाने के बाद हमारा भी एक एटीट्यूड ये रहता है कि मैं बच्चों से नहीं सीख सकती, या बच्चों का ये एटीट्यूड होता है कि हम सब जानते हैं, पेरेंट्स को कुछ नहीं आता. तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग जो बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती जा रही है. और ये जो नॉट्स है वो हम खोलने के बजाय उसे और उलझाते जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी जीवन की जो समस्याएं हैं वो सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है. डॉक्टर जी, मैं यहाँ पर बड़े बुज़ुर्गों के बारे में भी पूछना चाहूँगी. जैसे हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, और ख़ासकर मॉरिशस में ऐसे कई सारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, अकेलेपन का सामना करते हैं, और अकेलेपन, अकेलापन एक ऐसी, हम बीमारी तो नहीं कहेंगे, पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलना मुश्किल है, और इसके कारण उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होती है, माइंड की इश्यूज, इमोशंस की इश्यूज, इनसिक्योरिटी डेवलप होना, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिनके कारण वो उससे फाइट नहीं कर पा रहे. तो क्या आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा उनको भी कोई ऐसी सिचुएशन से निकलने की सीख या गाइडेंस दी जाती है?
1: तो सबका यही प्रॉब्लम होता है कि एक टाइम होने के बाद ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर पा रहा है.
0: बिल्कुल, जैसे उनको लगता है कि वर्थलेस है, उनका कोई मायना ही नहीं है, अब समाज में उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है.
1: तो ऐसा है कि उनका दुनिया ऐसा चलता था कि काम और घर, काम और घर, और बच्चे बड़े होने के बाद उनको काम ही नहीं है ज्यादा. तो इसकी वजह से उनको ना वो उनका सोच विचार में वो कुछ भी नहीं है काम और घर के अलावा.
0: बिल्कुल.
1: तो ऐसा है कि हम जो एक्सपीरियंस से कुछ सीखे होंगे अपने ज़िंदगी में, वो किसी और को देने से या शेयर करने से वो काफ़ी तनाव दूर हो जाता है. तो इसलिए थोड़ा सेवा एक्टिविटीज़, कुछ ग्रुप्स बना के कुछ कंबाइंड एक्टिविटीज़ ला सकते हैं. मैंने देखा है कि यही है सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट. काफ़ी सारे लोग ना उनका खुद का ग्रुप रहता है, उसमें काफ़ी जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक
0: होता है,
1: इंटरेस्टिंग टॉपिक, किसी किसी को कुछ श्लोक पढ़ने का ये है, कुछ पुराने एंशियंट जो भी है टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड ना, चैंटिंग्स क्लासेस रहते हैं, भगवद गीता सुनना, ऐसा ना ग्रुप्स रहता है, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं एक्चुअली.
0: बिल्कुल.
1: तो अगर हमारे साथ भी कोई नहीं है तो वो ग्रुप में हम जुड़े रहते हैं. तो इट्स गुड टू मेक यूज ऑफ द कम्युनिटी,
0: मतलब अपने आप को बिजी रखना है किसी ना किसी तरीके से. मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, माफ़ करना मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रही, पर कंप्लेनिंग वाला जो नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हर एक चीज़ में हम एक चीज़ ढूंढते रहते हैं जिसको हम हमेशा कोसते रहते हैं. तो क्या ये भी कोई एक वजह हो सकती है, एक कारण हो सकता है जो हमारे जीवन शैली को नुकसान पहुँचाए, हमारे आस पास के लोगों को नुकसान पहुँचाए? क्या ऐसा भी हो सकता है?
1: तो अगेन कमिंग बैक टू स्क्रीन टाइम, आजकल तो बूढ़े लोग भी देखते हैं स्क्रीन, और एल्डरली, और सब लोग,
0: सब एज ग्रुप.
1: तो जीवन शैली में मैंने बताया कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, और प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज, सब बैलेंस रखना है. और उन लोगों को भी वो थोड़ा देखभाल रखना है, क्योंकि हमारा अगर रेस्ट पीरियड ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं होता है, तो ज़्यादातर ना उनका इम्यूनिटी भी कम होता है. एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हमने देखे होंगे काफ़ी सारे हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह होता है, स्पेशली फीमेल्स में मेनोपॉज रिलेटेड इश्यूज़. इस टाइम पे हमें ज़्यादा केयरिंग बॉडी को देना है. तो जैसे हम पहले बिना एक्सरसाइज के बैलेंस रखते थे, वो नहीं होगा. 50 के बाद हमें थोड़ा योगा, स्ट्रेचेस रेगुलर रखना है, थोड़ा ऑयल मसाजेस वगैरह, क्योंकि स्टिफनेस बढ़ता है बॉडी में.
0: बिल्कुल.
1: और हमारा जो बॉडी का ड्राइनेस, डिस्टर्बेंसेस, और नींद का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम होते आता है. जितना हम जैसे 7-8 घंटा सोते थे, लेकिन जब एज बढ़ता है ना, वो 6 घंटा हो जाता है.
0: कई सारे लोग हमारे प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो हमें ये कहते हैं कि रात को 2 बजे नींद टूट गई, अब नींद ही नहीं आ रही थी, 3-4 बजे तक वो लोग ऐसे ही जाग रहे थे. तो क्या ये भी उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिजिकल हेल्थ इश्यूज को प्रभावित करता है?
1: डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ की वजह से ये हो रहा है. इसलिए हमें थोड़ा बैलेंसिंग के लिए कुछ चीजें रेगुलर रखना है. एक तो है आयुर्वेदिक की तौर से बोला है कि रोज हमें ऑयल मसाज करना है बॉडी को. थोड़ा सीसे में ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी सरसों का जो भी यहाँ पे मिल रहा है, वो थोड़ा गर्म करके लगाना है. स्पेशली अभी विंटर्स चल रहा है, थोड़ा गर्म ऑयल से मालिश करने से बॉडी रिलैक्स हो जाता है.

0: मैं खुद ही कर सकते हैं?
1: खुद कर सकते हैं डेफिनेटली.
0: अच्छा, अच्छा,
1: खुद थोड़ा गर्म ऑयल लेके मसाज करके 10-15 मिनट रखे नहा सकते हैं.
0: अच्छा,
1: गर्म पानी में. वो इसी तरह हमें हेड मसाज भी करना है. ये जो हेड में है पूरा कंट्रोलिंग पॉइंट हमारा पूरा बॉडी का, हार्मोन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेशन सब इसी से कनेक्टेड है, सब कमांडिंग.
0: कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे सर में से ही मतलब सारा कंट्रोल हो रहा है.
1: और पूरा इंद्रियों का भी ये होता है, क्योंकि एज रिलेटेड इनको ना थोड़ा आंखों की रोशनी कम होता है या सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम्स, वो इरिटेट हो जाता है. तो पहले ही हमने थोड़ा इसके लिए कुछ बैलेंसिंग किया तो अच्छा होता है. एक तो है टाइम पे सोना, ऑयल मसाजेस, ये बहुत सिंपल है. लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग रेगुलरली ऑयल करते हैं, हम क्या सोचते हैं बालों के लिए ऑयल लगाते हैं, लेकिन जो ऑयल करते हैं उनका आंखों का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है.
0: मतलब वो जो आजकल ड्राइनेस की जो इश्यूज हैं या हियरिंग एड इश्यूज है उसको लेकर भी मैं समझती हूँ ऑयल मसाज करने से ये सारी
1: डिजेनरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है एज की वजह से.
0: सही.
1: वो एजिंग प्रोसेस को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं.
0: तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई. और मन भी मैं समझती हूँ हमारा जो दिमाग है वो भी थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा शांत रहता है और थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं. तो डॉक्टर जी, आजकल जो है भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सुबह उठते ही शुरू हो जाती है हमारी ट्रेन, तो ऐसे में ब्रेक कैसे ले? बिकॉज मैं समझती हूँ खासकर जो वर्किंग लेडीज हैं, जो वर्किंग पुरुष हैं, उनके लिए ये हम कहेंगे कि भाई ब्रेक लो, लेकिन उनके लिए ब्रेक लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे में वे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अपने जीवन में लाइक जो डेली रूटीन है उसमें आप कोई अगर हमें एक्सपेरिमेंट करके बताएं या किस तरह से वो एटलीस्ट एक मिनट या दो मिनट का ब्रेक ले सकते हैं जो उनके हेल्थ को भी कंट्रोल रख सके.
1: द बेस्ट वे टू टेक ए ब्रेक वो क्या है कि हम थोड़ा अपने सांस की ओर ध्यान लेके आए और एक दो प्राणायाम, ब्रीदिंग पैटर्न्स है ना, हम एक दो मिनट में हमारा फोकस, अटेंशन, रेस्ट वो वापस ला सकते हैं.
0: अच्छा,
1: इसलिए थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करने से और थोड़ा टाइम 15 मिनट्स मेडिटेशन करने से, इसलिए सुबह थोड़ा टाइम मी टाइम अपने लिए रखना है.
0: अच्छा,
1: ऐसा नहीं कि सुबह अलार्म बजा और सब भाग दौड़ में हम लगे.
0: कई बार अलार्म को हम स्नूज करके 10 मिनट और ले लेते हैं, कहां 10 मिनट के बाद आँख खुलती है तो लगता है एक घंटा हो गया, फिर यहाँ पर ही सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है.
1: अब सुबह थोड़ा 15-20 मिनट्स भी थोड़ा योगा और ध्यान से शुरू किया तो काफ़ी सारा तनाव को हम हैंडल कर सकते हैं. एक तो ये है, दूसरा चीज़ ये है अपना पूरा फैमिली के लिए थोड़ा सा एक रूटीन रखना. ये ब्रेकफास्ट टाइम है, ये डिनर टाइम है, अगर फ़ोन यूज़ करना है तो चलो हम खाना खाते टाइम नहीं यूज़ करने वाला है.
0: मतलब कुछ ऐसे हम सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को ना लें, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चे जो हैं वो बड़ों के ही रेप्लिकेट होते हैं, यानी जो बड़े करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं. तो अगर हम मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, हम अपना मोबाइल पकड़ के रखेंगे तो बेशक उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है. तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है. और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इमोशंस की बात आती है, और जहाँ पर इमोशंस की बात आती है मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर दिया जी से कि आज के समय में हम कॉम्प्लीमेंट कम करते हैं, कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, तो क्या ऐसा नेचर पालने से भी ये हमारे इमोशंस को हिला सकता है, हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है?
1: हाँ, वो अवेयरनेस से हो जाता है. कभी कभी क्या होता है कंप्लेन मोड में जब हम रहते हैं तो हमें वो गुस्से की वजह से या किसी से कुछ नफरत चल रहा है इसकी वजह से हम बातें करते रहते हैं.
0: सही बात.
1: लेकिन अगर हम थोड़ा वो ध्यान डाला तो हमें पता चलता है कि ये कंप्लेन करने से कुछ बदलते नहीं है. कुछ बदलने के लिए हमें एक साथ काम करना पड़ेगा या कुछ बातचीत करना पड़ेगा. हम ऐसे कंप्लेन करते बैठेंगे तो कुछ फर्क नहीं दिखेगा.
0: सही बात है. सही बात है. और जैसे हम कॉम्प्लीमेंट, अगर हम मान लीजिए हमारा काम का माहौल या हमारे घर का माहौल ऐसा है, तो ऐसे माहौल में हम कॉम्प्लीमेंट कैसे करें? क्योंकि चलिए ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे जो फेलो कलीग्स हैं, हमारे जो बॉस है, हमारे जो आसपास के लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके साथ मर्ज होकर उनके साथ रहकर हमें काम करना, तो ऐसे में हम कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर कैसे डेवलप करें?
1: तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए पहले हम खुश, हमें खुद खुश रखना है. हम
0: सही बात.
1: तो व्हेन वी आर कंटेंट, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, देन आई कैन गिव अ कॉम्प्लीमेंट. तो यूजुअली हमारा जो पूरा जो दुनिया हम देखते हैं उसी में हम लगे रहते हैं, ये हम भूल जाते हैं और हमारा जो तनाव है वो रिलीज नहीं होता, इसकी वजह से हम सही टाइम पे जो भी करना है सोचना है वो भूल जाता है. इसलिए वो हमारा जो मी टाइम है अपने नेचर पे थोड़ा टाइम हमें बैठना है, उसी में मेडिटेशन बहुत काम आता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डीप सर्विसिंग भी चाहिए, डीप क्लीनिंग, इसलिए हम ना एडवांस प्रोग्राम्स भी देते हैं.
0: अच्छा.
1: जैसे हम बोलते हैं सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, डेली प्रैक्टिसेस, इसके अलावा

0: एक बार या दो बार करने से पूरा क्लीन हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं आयुर्वेदा में पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स है, तो हमें टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए हमने काफी सारे चीजें नहीं देखा, लेकिन साल में एक बार मैं पूरा क्लेंसिंग कर रहा हूँ बॉडी का.
1: सही बात.
0: तो ऐसा कुछ ईयरली भी हम प्लान कर सकते हैं या मंथली कुछ डिटॉक्सिंग.
1: बिल्कुल. और जब डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर एक वर्ड के अक्रॉस में आई, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन. तो डॉक्टर जी, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है?
0: मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो नींद से कनेक्टेड है स्क्रीन टाइम.
1: अच्छा.
0: इसलिए जो सोने से पहले जो टाइम है,
1: हाँ,
0: आधा घंटा या एक घंटा, वो स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है. वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेलाटोनिन जो भी हॉर्मोन्स है हमारे अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है इमीडिएट नींद से पहले. जो भी वो ब्लू लाइट एक्सपोजर्स है ना, वो गहरी नींद में प्रॉब्लम आ जाता है. वो अगर हमें वो डीप रेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो रिपेयरिंग में प्रॉब्लम होता है, और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हॉर्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. मैंने काफ़ी टाइम ये देखा है कि जब भी एग्जाम्स चलता है उस टाइम पे फीमेल्स का ना थोड़ा हॉर्मोन्स भी बिगड़ जाता है, क्योंकि सब लोग एक बजे दो बजे तक बैठते हैं रात को, उसकी वजह से वो पूरा साइकिल्स खराब होता है. तो नेक्स्ट टाइम आते हैं हमसे मिलने के लिए तो बोलते हैं कि ये ठीक से नहीं हो रहा है.
1: तो मतलब ये डिस्टर्ब हुआ, और ये एक दो दिन का नहीं होता है, कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक ये चलता है, और इसी कारण आपके हेल्थ को ये असर करता है.
0: हाँ, तो कभी कभी क्या होता है वो एक टाइम पीरियड में ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ टीनेजर्स का ऐसा ही आदत है रात को देर तक बैठ के, एक घंटे तक बैठ के कुछ करके या स्क्रॉल करके फिर सोने का.
1: बिल्कुल.
0: इसलिए वो
1: अनवांटेड, जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं, और जो ज़रूरी नहीं है हमारे सेहत के लिए. कई बार ऐसा भी होगा, मैं समझती हूँ हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, सुबह उठते ही पहला होता है कि मोबाइल पर देखना किसने क्या मैसेज भेजा. तो डॉक्टर जी, इससे कैसे पीछा छुड़ा सके, क्योंकि ये एक ऐसी आदत बन चुकी है बहुत सारे लोगों की कि किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या रिएक्ट किया, या सोशल मीडिया पर किसने हमारे लिए क्या बताया, इन सारी चीजों से कैसे पीछा छुड़ाएं?
0: फॉलो दिनचर्या. दिना मींस डे, चर्या मींस रूटीन. तो दिनचर्या में हमारा जो मॉर्निंग टाइम जो है वो हमारे लिए रखना है, 15 मिनट्स या आधा घंटा, जैसे मैंने बोला.
1: किसी से मतलब कोई बात नहीं करनी थोड़ी देर के लिए, और बिल्कुल जैसे ये नहीं देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है.
0: थोड़ा मेडिटेशन या कुछ योगा एक्सरसाइजेस इसके बाद देखना है, एक तो है. और सिमिलरली वो रात को सोने से पहले वो कट ऑफ करना है डिटॉक्सिंग में.
1: बिल्कुल.
0: दूसरा है अपने लिए खुद थोड़ा एक टाइम लिमिट रखना है. आज मैं एक घंटा स्क्रॉल करने वाले या आधा घंटा, वो ठीक है. और कभी कभी क्या होता है ना, लोग अब ज़्यादातर रील्स ही देखते हैं.
1: हाँ.
0: हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि ये रील्स में क्या होता है, 10 सेकंड्स रील्स, 20 सेकंड्स. पहले होता था 1 मिनट का, अभी तो 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स, उससे ज़्यादा तो टिकता ही नहीं है लोगों का
1: बिल्कुल
0: अटेंशन. तो मुझे क्या लग रहा है, एक टाइम फिक्स करके एक मूवी देखा या कुछ देखा, तो उसमें थोड़ा डिसिप्लिन हमारे फैमिली से ही शुरू करना है.
1: बिल्कुल.
0: सब लोग, जैसे आपने बोला कि अगर मम्मी पापा फोन देख के बैठ रहे हैं तो बच्चा भी वही करने
1: करेगा. सही बात है.
0: सो दैट डिसिप्लिन विल कम फ्रॉम होम.
1: बिल्कुल बिल्कुल. जो बड़े करते हैं वो फॉलो करना है, और उसी से हमारा जो फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो हम ठीक कर सकते हैं. डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है मेंटल हेल्थ इज रियल हेल्थ, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड स्ट्रांग है तो जो भी बॉडी में हो रहा है वो हम टॉलरेट कर पा रहा है. अब कभी कुछ बीमारी आ गया, जैसे कि लोगों को कभी कभी कैंसर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो पहले जो फीलिंग इमोशन उनके अंदर होता है वो फियर, भाई.
1: हाँ.
0: तब वो पूरा जो एनर्जी था वो पूरा हो जाता
1: है. हाँ,
0: तो जब भी हमारा माइंड स्ट्रांग रहता है, बैलेंस रहता है, तब हम सब हैंडल कर सकते हैं. इसलिए हमें हमारा मन का जो हाइजीन है, जैसे मैंने बोला मेंटल हाइजीन, वो ठीक से रखने के लिए डेली थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस रखना है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो ये करने से मतलब हमारा मन स्ट्रांग बनेगा, फोकस्ड रहेगा, हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये समझने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ेगी. और डेफिनेटली डॉक्टर जी, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन होगा कि हमारे जो श्रोता हैं जो हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स चलाए जाते हैं। मैं ज़रूर

0: आपसे निवेदन करूंगी, ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कहाँ कहाँ पर चलाए जाते हैं और उसका जो टाइम लिमिट ड्यूरेशंस जो हैं वगैरह, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
1: हाँ, तो जैसे मैंने बताया सब एज ग्रुप को ये चाहिए।
0: हाँ,
1: इसलिए हमने 5 साल से लेके सबको अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन करके रखा है।
0: हाँ जी।
1: तो बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा और टीनएजर्स के लिए मेधा योगा प्रोग्राम, उनके लिए थोड़ा पर्सनालिटी रिलेटेड नो इवेंट्स एक्टिविटीज सब रहता है टीनएजर्स के
0: जी।
1: लिए। और हमने बच्चों के लिए एक अलग सा एक प्रोग्राम इंट्यूशन प्रोग्राम भी रखा है।
0: अच्छा।
1: जहाँ पे ना बच्चों का इंट्यूटिव एबिलिटी द सिक्स्थ सेंस वो एक्टिवेट करके रखने के लिए टेक्निक सिखाते हैं। बहुत बच्चों ने इसका काफी सारा फायदा उठाया क्योंकि उनको सही टाइम पे क्या गलत है क्या सही
0: ये
1: है,
0: समझना
1: ये समझ में आता है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: और वो प्रेडिक्ट भी करते हैं काफी सारे चीजें।
0: हाँ, हाँ।
1: सो दे विल गेट अ क्लैरिटी विजन अबाउट लाइफ, एक तो ये है। और दूसरा है सबको 18 प्लस जो भी है उनके लिए सुदर्शन क्रिया प्राणायाम वगैरह सिखाने वाले बेसिक प्रोग्राम, हैप्पीनेस प्रोग्राम भी है और एडवांस लेवल प्रोग्राम्स, और एक यूनिक मेडिटेशन टेक्निक भी हम सिखाते हैं, सहज समाधि मेडिटेशन। कहीं पे भी हम बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: बहुत सरल टेक्निक होता है वो भी है। और ये सब हमारा मेन जो सेंटर्स है वोटन और गुडलैंड्स में, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस रहता है। और वहाँ और हमारा बहुत सारा सब सेंटर्स भी है पूरे मॉरिशियस में,
0: और वहाँ पर टीचर्स जैसे टीचर्स द्वारा ऐसे गाइडेंस दी जाती है।
1: हाँ। और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड भी लोगों को अवेयरनेस चाहिए, इसलिए हम आयुर्वेदा रिलेटेड हीलिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देते हैं। जैसे कि हमारा वाइटल पॉइंट्स को लेके, मर्मा पॉइंट्स को लेके सेल्फ हीलिंग कैसे करना है और आयुर्वेदा को डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करना है, और कभी कभी कुछ स्मॉल मुद्रास जो हेडेक है उस टाइम पे हम क्या
0: उसको
1: कर सकते
0: अवेयरनेस
1: हैं,
0: मतलब वो सिखाया जाता है।
1: हाँ।
0: जिससे कि उनकी जो छोटी छोटी इश्यूज हैं वो
1: हाँ।
0: ठीक हो सके।
1: आयुर्वेदा रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देते हैं, आयुर जागृति
0: जी। तो आज हमारे साथ है, जी हाँ, आयुर्वेदा डॉक्टर दिया बाबू आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहीं, जो कि खुद एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट भी हैं और बेशक आर्ट ऑफ लिविंग ये एक ऐसा सेंटर है जो आज लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स, बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है। और ये केवल मॉरिशस नहीं, ये पूरी दुनिया में हर कोने में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को गाइडेंस दे रहा है कि किस तरह से आप जीवन शैली को बदल सकते हैं अपने ही हाथों से और एक छोटी सी गाइडेंस के द्वारा। तो जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है। आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस नोबल कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी टीम की ओर से। और ख़ासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर दिया बाबू का जो आज के इस शो में वे उपस्थित हुई, और बिल्कुल हमारी टेक्निकल टीम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी रही, इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में उनका सहयोग मिला। हमारे साथ तकनीक पर बने रहे काद्या, साथ ही साथ उरुसा बानू, और हमारे साथ बनी रही हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर उपस्थित होंगे एक ऐसे ही टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने त्रिवेणी स्थित रविन्द्रनाथ गौबाहन स्टेडियम के पुनः उद्घाटन का आधिकारिक शुभारंभ किया। स्टेडियम के दोबारा खोलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन समारोह के दौरान सबसे अधिक ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर गया जो खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा है। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। इस बार उन्होंने 2015 में IMF की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि यही व्यवस्था जारी रहती तो 2050 तक पेंशन पर होने वाला खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 8% हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार IMF का ये अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरिशस में पेंशन पर होने वाला खर्च आज ही GDP के 8% के आंकड़े को पार कर चुका है। मंत्रिपरिषद ने नोट किया कि फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसकी पहली बैठक 8 जुलाई 2026 को होगी। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ती ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है। अमेरिका आज अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। ये 4 जुलाई 1776 का दिन था, यानी आज से ठीक 250 साल पहले, जब अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा को 13 अमरीकी उपनिवेशों द्वारा अपनाया गया था। यह अवसर वाशिंगटन और पोर्टवी के बीच संबंधों पर नज़र डालने का भी है। एक साझा इतिहास है जो कई लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक पुराना है, और आज ये महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों से जुड़ा हुआ है। साथ ही एक बड़े विवाद का कारण भी है, वो है शागस का मामला। विदेश में अमरीकी इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के व्यापक अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई है। खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम 1 सप्ताह तक चलेगा। और वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने केप वेर्द के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पोर्चुगल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ, जहां पेनाल्टी शूटआउट में इजिप्ट ने बाजी मार ली। कोलंबिया और गाना के बीच रोमांचक मुकाबला आज सुबह हुआ, जहाँ कोलंबिया ने 1-0 से जीत हासिल की। और आज रात फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के 2 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पराग्वे की टक्कर फ्रांस से होगी। दोनों ही मुकाबले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद अहम होंगे, और फुटबॉल फैंस को रोमांच से भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। मिलान दू कंफुक्रोमी 76 साल के 76 years old के श्री सादेव गुहाई जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुहाई के घर मिलान दो कंफुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3 PM बंगाली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 years old की श्रीमती बिदवंती मितन जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी कल रविवार को दिन के दो बजे उनके घर बंगाली रोड बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज सैम्पिया बाम्बू की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी।

0: क्रिमिशन टुमारो अच्छू पी एम शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

माओ के पेट में जिसे चाहे एक मुकर्रर मियाद तक, यानी विलादत के वक्त तक। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफलन, फिर तुम्हें निकालते हैं बच्चा। सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर इसलिए कि तुम अपनी जवानी को पहुंचो, यानी तुम्हें उम्र देते हैं, तुम्हारी अकल और कुव्वत कामिल करते हैं कि तुम जवानी को पहुंच जाते हो तो तुम्हारी अकल और कुव्वत कामिल हो जाती है। वमिनकुम मन युतवफ्फा, और तुम में कोई पहले ही मर जाता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरी, और कोई सब में निकम्मी उम्र तक डाला जाता है और उसको इतना बुढ़ापा आ जाता है कि अक्ल व हवास दुरुस्त नहीं रहते, और वो ऐसा हो जाता है। लिकैला यालमा मिन बाद इल्मिन शैआ, के जानने के बाद कुछ न जाने, और जो जानता हो वो भूल जाए। यानी उम्र जब बहुत ज्यादा हो जाती है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो बस औकात इंसान इस उम्र को पहुंच जाता है कि फिर वो सारी चीजें भूल जाता है, और जानने के बाद भी ऐसा हो जाता है गोया कि वो कोई चीज नहीं जानता। हजरत इकरिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो कुरान की मुदावमत रखेगा, यानी कुरान पाक हमेशा पढ़ेगा, गौर व फिक्र करेगा, तो वो इस हालत को ना पहुंचेगा, यानी बुढ़ापे में भी उसके आजा इस हालत को ना पहुंचेंगे, वो जो जानता है उसके इल्म में मजीद इजाफा होगा और इस कैफियत तक वो ना पहुंचेगा। इसके बाद अल्लाह ताला बास यानी मरने के बाद उठने पर दूसरी दलील इशाद फरमाता है। वतरल अर्द हामिदा, और तू जमीन को देखे मुरझाई हुई, खुश्क बेगिया, यानी वो खुश्क होती है जमीन, उस पर कोई सरसब्जी और शादाबी नहीं होती। फैदा अनजलना अलैहल मा अहतज्जत, फिर जब हमने उस पर पानी उतारा तरोताजा हुई। व रबत, और उभर आई। व अंबतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और हर रौनकदार जोड़ा उगा लाई, हर किस्म का खुशनुमा सब्जा उगा। ये दलीलें बयान फरमाने के बाद अब नतीजा बयान फरमाया जाता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाहा हुवल हक, ये इसलिए है कि अल्लाह ही हक है। और ये जो कुछ जिक्र किया गया, आदमी की पैदाइश और खुश्क बेगिया जमीन को सरसब शादाब कर देना, इसके वजूद की दलीलें हैं, इसकी हिकमत की दलीलें हैं, इससे अल्लाह का वजूद भी साबित होता है। वो अन्नहु युहयिल मौता, और ये कि वो मुर्दे जिंदा फरमाएगा। वो अन्नहु अला कुल्ल शैइन क़दीर, और ये कि वो सब कुछ कर सकता है। वो अन्न साअत आतियतुल ला रैब फीहा, और इसलिए कि कयामत आने वाली है इसमें कुछ शक नहीं। وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم ہے, وَلَا هُدًى, نہ کوئی دلیل ہے, وَلَا كِتَابٍ منیر, اور نہ کوئی روشن نوشتہ کوئی کتاب۔ یعنی کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے, بغیر دلیل کے, بغیر روشن کتاب کے۔ شان نزول کی آیت ابو جہل وغیرہ ایک جماعت کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالی کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے, اور اس کی طرف ایسے اوصاف کی نسبت کرتے تھے جو اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ آدمی کو کوئی بات بغیر علم کے, بغیر سند و دلیل کے نہیں کہنی چاہیے, خاص کر جب اللہ تعالی کی شان کے بارے میں بات ہو

0: महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात हो तो इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए, और जो इस तरह बगैर दलील के बगैर इल्म की बात करता है वो अक्सर कुफर बक देता है, और जो बात इल्म वाले के खिलाफ बेइल्मी से कही जाएगी वो बातिल होगी। फिर इस पर ये अंदाज के बंदा बगैर इल्म के जहालत के साथ बात करे और फिर इस पर इसरार भी करे और तकब्बुर भी करे, और इसरार करते हुए तकब्बुर करते हुए हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए भी हो, तो कितना बदनसीब है कि इस कदर गुरूर है कि अपनी गलती को भी सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं। सानिया इत्फीही लियुदिल अन सबीलिल्लाह, हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि अल्लाह की राह से बहका दे और लोगों को अल्लाह के दीन से मुनहरिफ कर दे, दूर कर दे। लहू फिद दुनिया खिज्युन, इसके लिए दुनिया में रुस्वाई है। लहू फिद दुनिया खिज्युन व नुज़ीकुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक, इसके लिए दुनिया में रुस्वाई है और क़यामत के दिन हम उसे आग का अज़ाब चखाएंगे। चुनाचे अबू जहल ग़ज़वा बदर के मौके पर ज़िल्लत व ख़ारी के साथ कत्ल हुआ और क़यामत में फरमाया कि उसे आग का अज़ाब चखाएंगे, और उससे कहा जाएगा ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, ये उसका बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा, यानी जो तूने दुनिया में किया कुफर झुटलाना ये उसका बदला है। وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता, किसी को बगैर जुर्म के नहीं पकड़ता, सजा नहीं देता, तो काफरों को सजा दी जाएगी इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया, गुनाह किया, जुर्म किया। अगर आखरत की सजा से बचना है सच्ची पक्की तौबा करो, ईमान लाओ और पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। सूरह हज का पहला रुकू मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला इस रुकू के नूर से हमारे कुलूब को रोशन फरमाए।
1: सामीन, इस वक्त हम रेडियो मोर्शिद साहब से मुखातिब हैं। अभी आप सूरह हज की पहले रुकू की तफसीर डॉक्टर आसिफ कादरी दामत बरकत उमालिया की जबानी समात की। आइए प्रोग्राम को जारी रखते हुए पेश खिदमत है ये सबक आमोज कहानी जिसका उन्वान है किस्मत का खेल।
2: जमाना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैर व तफरीह के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बजाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महल्लात

तामीर किए जाएं और उन महल्लात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतिमाद और बेबाकी थी जो किसी आम पागल के बस की बात न लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वो आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, ये खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है, होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद न रखनी चाहिए, लिहाजा बादशाह को कहे कि उसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए, अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिम्मत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। तआक़ब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा जहीन है, चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया, ये होता है ज्यादा जहीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाजा जन्म लेने लगा। दरबारी, जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी और वो भी पागल कहलाने वाला उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले,

साहब, आप पर सलामती हो। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, रियाया ने बात करते हुए कहा। भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब? मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेर कब्जा थी, आगे बढ़ा और मौकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ किया, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। रियाया ने उसकी बेवकूफी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टुकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे ये समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजू, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतिमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया, जो पहले ही उससे हसद में मुबतला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनांचा वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से तप रहे थे मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ ना मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल, जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुराकर बोला, हां बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया, लेकिन यह तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो दो कुर्सियां भी खींच सकता हूं।

याया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगा इम्तियाज देकर अपने फौज का जर्नेल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नेल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दे। रियाया ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचा रियाया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें, अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी, दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की ढूल बजा दी और अपने फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुष्ट पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। क्योंकि वो कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनखवार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाति दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है, ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है, हम जंग नहीं चाहते। हां, जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गर्ज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा, उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहां तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया, एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने न रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे, उसे खत्म करना जरूरी है। सबने एक जबान होकर हां कर दी, लेकिन उनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म, उसने बड़ी कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मकाम

0: हैसियत और सिफत अता की है। और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रजा पर रजा हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है, किस्मत। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारे रियाया ने अपने हसद पर तौबा किया और कुछ वक्त बाद पागल वफात हुआ और रियाया फिर से अपने रुतबू पर फाइज हुए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक फनी कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सच छुपा है जैसे हमें तस्लीम करना होगा, और वो है सच्चाई, किस्मत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फायज है और कामयाब हुआ है, तो वो उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसे सिफात हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी है। कोशिश करे वो सिफात अपनाए, मेहनत करे, सच्चाई इख्तियार करे, शायद वही इज्जत तुम्हें भी मिले। लेकिन हसद ना करे, तारीख इस बात का गवाह है, मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान सच्चे लोगों का ही होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।
1: सामीन, किस्मत की खेल, अभी आप इस उनवान से एक सबक आमोज कहानी समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कहानी से जो दर्स हासिल होता है, उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन, सजदे की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि ज़मीन से की जाने वाली सरगोशी आसमानों पर गूंजती है। यानी जो बात हम सजदे में ज़मीन के ऊपर करते हैं, उसकी गूंज, उसकी सदा आसमानों पर जाती है। दुआ है कि रब करीम आपकी इबादत कबूल फरमाए और अपने सिवा किसी का मोहताज न करे।

समीन फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। दुआ है, ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हम सबको खुशहाल और आबाद रखना। आमीन सुम्मा आमीन।

दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सिद्क दिल यानी सच्चे दिल से आमीन कहें, क्योंकि खुलूस नीयत को जांचने का कोई पैमाना अब तक ईजाद नहीं हुआ। और कोई जब आपसे ये कहे कि दुआ करना मेरे हक़ में, तो दुआ ज़रूर कीजिए। यह रब का एक और इनाम हुआ आप पर, इस एजाज़ को रब की ख़ास अता समझकर और भी शुक्रगुजार।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सबसे पहले कोयराची, बुआपिन्योले और त्याहोश के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुआमोशां, मनमोजेलो, बोगटलेन, लाक्वाजे मोटाइलों, मुसलमान बसावन, मुसलमान तारा, सिटेडुल, बाचिसलेन, मोसलमान शेख दाऊद, मोसलमान शावरी और मोसलमान रिशवुड के निवासियों को सूचित किया जाता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: हेलो,
2: ए हेलो, मौज करवा गुजराती गीतोना प्रोग्राम गीत बहार नी साथे। गीतोनी बहार, गीत बहार, गीत बहार।

जय नमस्कार, सत श्री अकाल, एक प्यारा सा गुड आफ्टरनून आप सभी लिसनर्स को। प्रणाम है आप सबों को और मैं हूं देविना। आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, जहां हर क्षण होती है सुरों से रोशन, हर गीत होता है आपके दिल की आवाज और हर लम्हा होता है खुशियों से भरा। बस आशा करती हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ इस सुहानी सैटरडे आफ्टरनून का आनंद ले रहे होंगे। चाहे आप घर पर होंगे, किचन में होंगे, लंच के बाद अब चाय बनाने वाले हैं, और कुछ लोग ऑफिस ड्यूटी पर हैं, या फिर कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग बाजार में हैं, आप जहां भी हो एंजॉय कीजिए अपना ये वक्त। और हम साथ रहेंगे यहाँ अभी से लेकर 4 बजे तक खूबसूरत गीतों के साथ, आपकी डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशें। ऑफ कोर्स हमारे इस प्रोग्राम में होंगे एवरग्रीन मेलोडीज, जो पुराने गाने हैं, रोमांटिक गाने, थोड़े मस्ती भरे गाने और कुछ दिल को छू लेने वाली बातें। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ। वैसे कहते हैं जिंदगी में खुश रहने का सबसे बड़ा राज क्या है, आपको पता है? जो है उसकी कदर कीजिए, जो नहीं है उसका गम कम कीजिए, और साथ में मुस्कुराते रहिए। और इससे पहले गाने को एंजॉय कीजिए। कुमार सानू साहब साथ में हैं, साथ ना सरगम, और फिल्म है नहीं तो, हाँ जी, एक लड़का एक लड़की फिल्म का गाना है। तो बस इस गाने को आप एंजॉय कीजिए।

जहाँ आपके पसंद प्रोग्राम में आपका फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। दीवीना है आपके संग 4 बजे तक, और आप लोगों की कि जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कुछ हम ले रहे हैं, कुछ हम नहीं ले पा रहे हैं, बस आप इंतज़ार कीजिएगा, आपका भी टाइम आएगा, हम लेंगे। अभी के लिए हम आपको बता देते हैं कि 4028085 पर आप लोग फ़ोन कर रहे हैं, और साथ में मैसेजेस के लिए 5251705527005 बस। अब रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से, हमारी ओर से, जिन जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं, आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका जो जीवन है मधुर संगीत की तरह हमेशा सुरमय रहे, वाह वाह खुशियां आपके आंगन में सदा महकते रहे। हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन। और ऐसे में खास बर्थडे विश हम भेज रहे हैं बुआशेरी की ही हैं, भौजी मानती मनबुद। तो लीला जी का मैसेज आया, फ़ोन आया लीला जी का बुआशेरी से है, और

कह रही है आज मौसम सुहाना है, ऐसे में उनकी जो पड़ोसन है भौजी मानती है, वे अपना बर्थडे मना रही है, तो सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनके बेटे केशव की ओर से है, बहू है श्रिया, बेटी है इटली में जीनिता, और सभी मनबुट परिवार जो हैं और साथ में लोचन परिवार की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे भौजी जी। और बस यही हम कह सकते हैं आपको, फूलों से महके जिंदगी, सितारों सा चमके मुकाम, हर दिन लाए नई खुशियां, जन्मदिन मुबारक हो आपको बार बार। सो ये गाना आपके लिए, एंजॉय योर डे मानती जी।

जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना जो है हाफिज़ जी के लिए, आदाब हाफिज़ जी, और हाल ही में उनके शोहर जो हैं चल बसे, तो उनकी आत्मा को की शांति के लिए हम दुआ करेंगे हाफिज़ जी। बस आप उदास हैं हम जानते हैं, बों को आज आपको, और बस क्या कहेंगे, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। तो पूरे बाबा साहेब परिवार की ओर से और आपकी ओर से ये गाना आपके लेट शोहर के लिए।

जहाँ वैसे कहते हैं जुलाई का महीना जो है मॉरिशस में ठंडी हवाओं का महीना होता है ना, सर्दी का मौसम होता है, और इस मौसम में गर्म चाय हो जाए और आपका फेवरेट गाना तो बस सुनने पे सुहागा हो जाए ना। वैसे कहते हैं मुस्कुराहट एक ऐसी दौलत है जो बांटने से और बढ़ती है, तो बस मुस्कुराहट बांटिए और मुस्कुराहट को बरकरार रखते हैं। वैसे गीता जी हैं प्रोफेसर, हमेशा मुस्कुरा कर आती हैं। दिल से प्यार भरा नमस्कार आपको, चहकती हुई महकती हुई, फिट एंड फाइन आप रहिए। बस ये जो गाना है आप मांग रही हैं, अगला गाना पति रोहित के लिए, तीन बेटों के लिए, तीन बहुओं, और साथ में जो आपके छोटे मुन्ने बच्चे हैं तनीश, आरव, आदित्य, साथ में प्यारी सी परी जो हैं जानवी, और पूरे MBC टीम के लिए ये गाना है इन द वॉइस ऑफ कुमार सानू और साधना सरगम, गुनगुन करता आया भवरा। फिल्म है मुस्कुराहट।

0: आपकी पसंद।
1: जी 2:44, जी हाँ जी, हम आपसे प्यार करते हैं इसलिए तो हम आ जाते हैं आप सबों का साथ देने के लिए और ढेर सारा प्यार बरसाने के लिए, हम पर शुक्रिया दिल से। अब एक और बर्थडे विश की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई इवेंट है, आप शादी में जा रहे हैं, किसी का बर्थडे है, किसी को बस याद कर रहे हैं, तो हम हैं यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर आपका साथ देने के लिए आपकी पसंद प्रोग्राम में। तो हम चलते हैं मोदेजिया की ओर, वहाँ पर हैं ज्ञान जी, ज्ञान चतारू जी, और वे कह रही हैं उनकी जो मिसिज हैं, वाइफ का बर्थडे था, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू फीफी चतारू, और आपके बच्चों की ओर से कीगन, कुनल, लविना, जेना और पूरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। और आप के लिए क्या मांगेंगे, हेल्थ, वेल्थ, और स्वस्थ रहें, खुश रहें परिवार के साथ। और साथ में कल बर्थडे था टू द लवली हैंडसम जो है खुशद माहिपत ऑफ क्यूपिप, सो पूरे परिवार की ओर से, माहिपत परिवार की ओर से, मामा है मीरा, पापा अमित और उनकी जो बहन है, बहन की ओर से भी आहाना, और उनके पूरे परिवार की ओर से आंटी हैं, अंकल्स हैं, गेंदा परिवार, गुरन सिंह परिवार की ओर से ये गाना आपके लिए।

0: झूठे को आराम न आए लेकिन सत्य को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: समाचार सुमेरा के साथ। नमस्कार आदाब।
1: नमस्कार आदाब। मुर्शिद में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। G2 अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बकामयाबी डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मोशन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहले 2 बार पेसमेकर लगाया। इस दफ़ा इस लीडलेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं। पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था। यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शिद को महारत हासिल हुई है। आज सुबह कंपनी गार्डन पोर्टली में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई। इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में। आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डालता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया। विदेश में दक्षिण यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से दक्षिण में कई जगहों पर आग लगी है। खासतौर पर फ्रांस में, पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेश आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कैमिलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट साबल में 84 साल की 84 years old श्रीमती परमा लंगादी पैम्बेन, श्रीमती परमा लंगादीन पैम्बेन जो विनोदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे मुरा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोइले वाले देवघट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सावान रोड नोवेल फ्रांस में 44 साल की 44 years old श्रीमती सोमा देवी बोला। श्रीमती सोमा देवी बोला पैदाइशी नाम तिलक जो सोनिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 12 बजे इनके घर सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: MBC रेडियो, वजह मुस्कुराने की।

0: जो हो चुका है 3:04 और आपका हम फिर से वेलकम करते हैं, स्वागत है हम आपका आपके पसंद प्रोग्राम में रेडियो मॉरिशस पर देविना के संग। इससे पहले सीबी की ओर से एक कम्युनिके सुनिएगा। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि जरूरत मरम्मत कार्य के चलते कल जो है संडे को यानी कि रविवार 5 जुलाई 2026 को सवेरे के 8:30 से लेकर दोपहर के 1:00 तक इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। प्लानवेयर के निवासी जो हैं वहां पर जो हैं रुई मदद उल इस्लाम, एडगाव लोरों, लापे, लेनेब्वे और चाइना के इलाके में। और दूसरी तरफ वहां पर होगा वालीपितो में, वहां पर हैं रुई बुलवा विक्टोरिया, मामलों वेयर, देपिने, इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी कल रविवार 5 जुलाई 2026 को सवेरे से 8:30 से लेकर दोपहर के 1:00 तक। और मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी की जाएगी। ये था कम्युनिके सीबी की ओर से। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। जो शनिवार जो होता है खुशियां का मौका होता है, खुशियां का दिन होता है, क्योंकि सप्ताह भर का जो काम काज है वो लिपट के, और कुछ लोग आज का दिन वो इंतज़ार में है कि कब सैटरडे आए और घर का काम करें। बस आप जो भी कर रहे हैं दोस्तों, चाय का वक्त भी आ गया होगा। हो चुका है 3:12, आज है सैटरडे 4 जुलाई 2026। एक गर्मा गर्म चाय, ठंडी हवा और साथ में रेडियो मॉरिशस, क्या बात, इससे बेहतर सैटरडे आफ्टरनून और क्या हो सकता है, आप ही बोलो। तो फिर से स्वागत करते हैं आपका यहाँ पर, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं आपकी पसंद में। सबसे पहले जो आपको ये कहना है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत के साथ धैर्य और विश्वास भी ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो फरमाइश है मेबर्ग से, हमेशा की तरह कुछ खास कर आते हैं विद्यानंद जी, और नमस्ते विद्यानंद जी। सुहंती के लिए स्वीति, अमित और साथ में है शीतल, राजीव, आशु, कृषिका और विशाल, हरवेश और विद्यानंद जी के खास दोस्त विष्णु का चाधर, साथ में उनकी जो प्यारी बहना है बिंदु कालीचरण के लिए हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में अब हयात फिल्म का गाना है, इसको एंजॉय कीजिए।

जो ये प्यार भरा गाना किशोरदा की आवाज में, और मांग है ये नंद जी और वाकुआ साथ में शनाया के लिए। फिल्म है छुपा रुस्तम।

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: ये बहुत ही रोमांटिक गाना मांग आई है इब्राहिम ऑफ पोर्ट्रीज की ओर से। इब्राहिम जी, आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। और जितने लोग रोमांटिक मूड में हैं अभी, ये गाना लता जी की आवाज़ में साथ में किशोर दा, सबसे बड़ा रुपया मूवी का गाना।

आपकी पसंद। ये गाना जो आपने सुना ये था धनी जी की ओर से, बुआ शकी से है, फिल्म है कर्मयोगी और ये था यश और हेमिश के लिए। अब बढ़ते हैं रोजबेल की ओर। अनीता जी प्रणाम। और वे अपने लेट पति के लिए, उनके एक्चुअली ये अपने लेट पति का जो फेवरेट गाना है वो सुनना चाहती हैं। तो जितने लोग दुनिया छोड़ चले हैं हमारे आस पास नहीं है, अब ये गाना आपके लिए फ्रॉम द मूवी मेरा नाम जोकर।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह उछल कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।
3: जी हाँ, इस गाने में नाम जोड़ते हैं शोभा श्रीपाल जी का। आज का बर्थडे है तो शोभा जी पूरे परिवार की ओर से, श्रीपाल परिवार हैं, गुरन सिंह परिवार हैं, साथ में तिलक परिवार, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड एन्जॉय योर डे।

0: आपकी पसंद।
1: जो अगला गाना जो है फिल्म है जबक, और इसमें आवाज लता जी की है, साथ में मुकेश साहब, बहलों ने छीन लिया बचपना। और इस गाने की मांगी है गाँव गोप से श्यामा रघुनंदन जी ने, और गाना जाएगा भैया जयप्रकाश के लिए। भाभी है नम्रता, युधिश केशव, साथ में उनकी जो सहेलियां हैं विश्वानी दुखी, वीना रामफोल और नंदिनी ओकलू।

जहाँ पे वाला बर्थडे हम विश कर रहे हैं वाकवा की विश्वानी दुमन जी, आज उनका जन्मदिन है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू विश्वानी जी, हमेशा साथ देती हैं और हमेशा साथ देते रहिए, आप हमेशा ठीक रहे, स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे। शुभकामनाएं बच्चों की ओर से, छोटे बच्चे जो हैं बहन इंदिरा, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता गजाधर, सभी परिवार जो हैं राम किशन बिहारी, दुमन, मथुरा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भेज रहे हैं विश्वानी जी। सो विश यू ए ग्रेट हैप्पी बर्थडे।

जय गाना जाएगा कठोबोन की अनिता जी रफ़ी साहब की आवाज़ में। जितने लोग पुराने गीत के शौकीन हैं फ्रॉम द मूवी दिल देखे देखो, तो डेडिकेट करती है अनिता जी आप सबों के नाम।

मेरी जहाँ वाह वाह वाह, अब रफी साहब के बाद अब आएंगे यहाँ पर मोहम्मद अजीज साहब। जैबून की पसंद पर पौंपाने की हैं, दिल है बेताब मूवी का गाना है, तेरा गम अगर ना होता, पति कासम के लिए चार बेटे चार बहुएं, फैजुल्ला हिदायत बिहारी परिवार के लिए, असगर जहनबी यस नगमा और उर्फा साथ में निहाद के लिए, और अफसोस हम सब की जो मांगे हैं पूरी नहीं कर पाएंगे समय की कमी के कारण, सो इसमें नाम जोड़ देंगे। यहाँ पर बंधु परिवार ट्रियोली के हैं, साथ में है रेहाना और फिनिक्स, सुनीता जी और मौलालबिया की अनिता जी, ये गाना आपके लिए।

0: 819 kilohertz. This is
1: Radio Marches. Radio Marches.
2: जहाँ शराब वराब पीना मना है मेरे यार, आज संडे सैटरडे का दिन, एक्चुअली वीकेंड का दिन है, आप कुछ एंजॉय कीजिएगा, जो भी पीना है पीजिए, जो भी खाना है खाइए दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, और हमारा और आपका साथ बस आज ही तक था। रिश्ते वक्त मांगते हैं और प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी होता है। अपनों के साथ वक्त बिताइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। साथ में हमेशा रेडियो मॉरिशस के साथ आप जुड़े रहिए। इसी के साथ आपकी पसंद का आज का सफ़र यही समाप्त होता है मेरे दोस्त। देवीना आपसे लेती हैं इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सैटरडे आफ्टरनून हमारे साथ बिताया। और आप अपने और परिवार का ख्याल रखिए, गर्मा गर्म कपड़े पहनिए, खाना खाइए, सेहत का ध्यान रखिए और ज़िंदगी का हर पल को गीत की तरह जिए। कल हमारी मुलाकात होगी और RM Free रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम 12 बजे से 3 बजे तक। हमारे बाद आएगी वहाँ पर श्रीमती अंजू जी लेकर साहित्य दर्पण, उनका साथ दीजिएगा। ये गाना हरीश जी और बुबास हैं, ये गाना आपके खास के लिए, खास अनु के लिए, साथ में आप सभी लिसनर्स के लिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए।
2: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण, श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।
3: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। अभी हमारा साथ दे रहे हैं आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और सभी श्रोतागण जो जुड़े हैं, आप सब का दिलो जान से स्वागत करते हुए हम साहित्यिक बात करने जा रहे हैं। और कबीर के बिना साहित्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमने 29 जून को, सोमवार को, कबीर जयंती मनाई। महान संत और समाज सुधारक कबीर दास जी की 649th जयंती थी, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कबीरदास जी केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे एक निडर विचारक और मानवता के सच्चे प्रेरक थे। उनकी शिक्षाओं का मूल उद्देश्य जो था, समाज में समानता, प्रेम, भक्ति को फैलाना और अंधविश्वास को हटाना था। तो श्रोताओं, हम जब साहित्यिक बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदी सिनेमा भी इससे प्रेरित होता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने हिंदी पढ़ी हो, कोई ऐसा छात्र नहीं होगा जिसने हिंदी पढ़ी हो और कबीर से ना परिचित हो, क्योंकि हम बचपन से दोहे सुनते आए। जब भी कोई बात होती थी, कोई चर्चा होती थी, तो हमारी माँ, हमारी गुरु बहन, हमारी अध्यापिका स्कूल में, वो कबीर के दोहों को ज़रूर अपनी शिक्षा में सम्मिलित करती थी। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैला ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो ये 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक के विचार थे, क्योंकि उन्होंने जाति, पाखंड और धार्मिक भेदभाव का हमेशा विरोध किया। प्रेम, सत्य और मानवता और ईश्वर की सच्ची भक्ति का संदेश फैलाया। और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, उनके विचारों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है।

सभी इंसान समान हैं और उच्च विचार होने चाहिए, जीवन जितना सादा हो वैसे जिएं, कर्मों को ही अपनी पूजा माने और बाहरी दिखावे से अधिक मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे विचार जब हमें कबीर से मिले तो देखिए हिंदी सिनेमा में भी गायन के विचार दोहावली के रूप में कैसे हमें मिलते हैं। चलिए अभी हमारे लिए वो गीत सजाने लगे हैं जिसमें आप ये दोहे सुन पाएंगे।

तो श्रोताओं, आपने आनंद लिया ऐसी सुंदर दोहावली जो संगीतमय थी, पर इसमें रहीम के, तुलसी के और कबीर के दोहे कितने उपयुक्त हैं हमारे समाज में आज भी। ये सब कालजयी हम पाते हैं, किसी भी काल में कहे गए हैं पर आज भी सटीक हैं। कबीरदास का जीवन कई किंवदंतियों से घिरा हुआ है। उनका पालन पोषण एक जुलाह दंपत्ति ने किया। एक औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी में जो गहराई और सच्चाई थी वे किसी भी विद्वान से कम नहीं थी। उनके दोहे आज भी जनमानस को जीवन की सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीर ने

0: अहंकार, धार्मिक कट्टरता और कर्म कांडों पर तीखा व्यंग किया है। उनकी भाषा सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी हुई थी, जिससे आम लोग भी उनकी बातों को आसानी से समझ पाते थे। श्रोताओं, जब जीवन में एक व्यक्ति आसान भाषा, सरल भाषा का प्रयोग करता है, और उस समय तो कबीरदास ने ये कोई साहित्य नहीं लिखा था, ये तो बाद में उनके जो साथ जुड़े हुए थे लोगों ने उसको लिपिबद्ध किया, पर उस समय कबीर ने समाज में कितनी सतर्कता से, कितनी पैनी दृष्टि से समाज को देखा होगा कि ऐसी सटीक बातें उन्होंने अपने विचारों में कही। और जो साहित्य समाज या जाति के समूह में सामूहिक चेतना के साथ साथ संस्कृति और जीवन शैली के मौखिक रूप में ही, आपसी बातचीत में ही व्यक्त कर जाता है, सोचिए वो कितना बड़ा विचारक होगा। कबीरदास ने अपने समय में फैले जातिवाद, धार्मिक कट्टरता और कर्म कांडों पर खुलकर बात की है। वे हो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रबल समर्थक थे, उन्होंने दोनों ही धर्मों की रूढ़ियों की आलोचना भी की, धार्मिक कट्टरता और कर्म कांडों पर विरोध भी किया, और साथ ही कबीर की शिक्षाओं के आगे बढ़ने के लिए कबीर पंथ सक्रिय है, जो उनके विचारों, सत्य, प्रेम और समानता का समाज में फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे कार्य होते हैं। आज के दौर में जब समाज फिर से भ्रम और विभाजन के का सामना कर रहा है, कबीरदास के विचार हमें सादगी, सत्य और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन और साहित्य ये सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है, ना कि अलग करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भोरी करेगो कब। ऐसे अनेक दोहे हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं आज में जीने के लिए। जो बीत गया उसको भूल जाएं, पर आज में सत्य, प्रेम और समानता के को फैलाने का कार्य करें। श्रोताओं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वे भी क्या कबीर से प्रभावित हैं, क्योंकि भक्तिकाल की निर्गुण शाखा के महानतम कवि रहे हैं वे। और लीजिए, जैसे ही मैंने श्रोताओं का नाम लिया, पहली कॉल आ चुकी है, हम बात करते हैं और सुनते हैं उनके विचारों को कि वे कबीर के बारे में क्या सोचते हैं। हेलो,
1: हाँ, जय श्री कृष्णा माता जी।
0: जय श्री कृष्णा, आपका नाम, शुभ नाम?
1: रमीला जी।
0: रमीला जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नुवा फ्रांस से।
0: जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है
0: जी, कहिए।
1: एक छोटी सी भजन बोलूंगी।
0: अवश्य, स्वागत है।
1: गुरुदेव तू मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, सारा मुझको बुलाती है दुनिया।

0: बहुत सुंदर विचार आपने हमारे साथ साझा किए।
1: कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर,
0: बिल्कुल
1: औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो। जय माता दी। धन्यवाद आपको,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप कार्यक्रम सुन रही हैं। और साथ ही आज का जो हमारा विषय है वे है कबीर दास। कबीर साहब निरक्षर थे, उन्होंने अपने निरक्षर होने के संबंध में स्वयं कबीर बीजक की एक साखी में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो मैं लेखनी हाथ में लिए हूँ, ना कभी कागज और स्याही का स्पर्श किया है। एक फोन कॉल लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हेलो।
2: हेलो। हाँ बेटी।
0: नमस्ते नानी, कैसन हवा?
2: अच्छा है बेटी, कृपा से, भगवान की कृपा से।
0: बिल्कुल, ईश्वर अच्छा। की कृपा है तो सब कुछ है।
2: गर्ल्स गर्ल्स शनिवार को
0: जी
2: हम कबीर के एक भजन गाए
0: जी,
2: आज भी की बोलेंगे
0: अवश्य।
2: जब भी हमने के कबीर जैसे कबीर दास हवन तो उजाला करे वाला हवन
0: जी,
2: लेकिन हमने उनका नहीं पहले है जा।
0: बिल्कुल,
2: इमें कोई नहीं बोले लन जा, कोई छोड़ ले जाता है। लेकिन बहुत निमन अति है, सब शब्द है
0: जी।
2: इस शब्द में एक हम गा देती हूँ
0: जी।
2: कब भजबे सतनाम मोरे मन, कब भजबे सतनाम, बालपन में खेल गवाए, जानी सतावे लकाम, बिरिद भये तनका पन लागे, बिरिद भये तनका पन लागे, लगा न लागे चामे मोरे मन, कब भजबे सतनाम, कब भजबे सतनाम ये मोरे मन, कब भजबे सतनाम, लठिया ठेका ठेका चलता मार्ग में, लठिया ठेका ठेका चलता मार्ग में, सालो न जाला घाम ये मोरे मन, कब भजबे सतनाम, कब भजबे सतनाम ये मोरे मन, कब भजबे सतनाम, खटिया से भैया करी दिहले, छुट गईले सब परिवार, मुंदर मार के प्राण निकाले, नैना से धर चले लोर ये मोरे मन, कब भजबे सतनाम, सब संसार छूट जला।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन भगवान कबीर दास के या भगवान के ही कोई के नाम नहीं लिया
0: जी,
2: कब भजब,
0: समय निकल जाएगा,
2: चल गए,
0: बिल्कुल
2: संसार सब छूट गए, तब कब भजब,
0: बिल्कुल
2: कब ही भजन के हम संवारब
0: जी,
2: कब अपन दिल में आनब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सब याद किया हुआ है ना, कहीं से पढ़ती तो नहीं है, आपको सब ये कंठस्थ है। वो फोन कॉल कट गया है, एक दूसरा फोन कॉल लेते हैं। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद, मैं हूँ धनेश्वर
0: जी जी।
3: हेलो
0: जी, कहिए आप क्या सुनाना चाहेंगे आज?
3: कबीर जी की कुछ लाइन
0: जी। अवश्य, कुछ पंक्तियां कबीर जी की आज हम सुनते हैं।
3: गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाई, यह तन

पड़ पड़ जग मुहा पंडित भयानको ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित।

0: सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होय। धन्यवाद बहन जी,
1: बहुत
0: आपने
1: सुंदर आपने कबीर जी के भजन दोहावली को प्रस्तुत किया। देखिए हमारे साहित्य में ना उनके हाथ में कभी कलम थी, ना उनके हाथ में कोई कागज था, पर कितना सुंदर और कटु सत्य वचन थे उनके दोहावली में कि आप प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने बात की थी कि ना उनके वो निरक्षर थे, ना उनके हाथ में कलम थी, ना उनके हाथ में कागज था, और ना ही स्याही का कभी स्पर्श किया था। चारों युगों की बातें उन्होंने केवल अपने मुंह द्वारा जता दी, और इसके ऊपर मासी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग की महातम मुख ही जानी बात। तो कबीर ऐसे थे कि उनकी कही हुई बातें समाज में क्यों स्वीकृत थी, क्योंकि वे समाज को देखकर अनुभव कर ये सब विचार अपने प्रस्तुत करते थे। हेलो, एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो,
0: हाँ बहन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते बहना, कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ बहन जी, आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक। आपका शुभ नाम?
0: मैं हूँ श्यामा रघुनंदन गोगुप से।
1: श्यामा जी, कैसी हैं?
0: आप लोगों की दुआ से बहन जी मैं अच्छी हूँ।
1: ईश्वर की दुआ है, हम
0: हाँ,
1: कौन होते
0: आप
1: हैं
0: लोगों
1: दुआ
0: की
1: देने।
0: दुआ है और ईश्वर की कृपा है बहन जी। मैं यही कहूँगी ना, हम अपने भरोसे नहीं जीते हैं बहन जी, अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल
0: हम लोगों से कुछ सुनते तो अच्छा लगता है बहन जी अपने बारे में।
1: जी, बहुत अच्छा,
0: हाँ,
1: कहिए।
0: तो मैं कबीरदास जी के बारे में ये कहूँगी बहन जी कि कबीरदास जी ने अपनी उल्टी वाणी से समाज को सुधारा है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, सारा जग को झकझोर दिया है बहन जी।
1: जी,
0: जो उनके पथ अपनाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, इसे जो कहा है ना, जो कल करना है सो आज
1: आज
0: कर ले,
1: कर
0: और जो अब आज करना है वो अब कर
1: अब
0: ले,
1: करें। तो
0: एक
1: उनके दोहे कितने
0: शिक्षाप्रद बात है
1: सटीक
0: बहन
1: थे,
0: जी। हाँ
1: कितने सटीक थे,
0: हाँ
1: जो
0: बहन जी,
1: मतलब एक ऐसी शिक्षा दे गए कि जो भी करना है अभी कर लो, क्योंकि
0: हाँ
1: हमें नहीं पता है, क्षणभंगुर है जीवन, कब
0: हाँ हाँ
1: समाप्त हो जाए। तो
0: हाँ
1: जो हम सोचते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं, वो हमें आज में ही करना
0: आपको पता
1: चाहिए।
0: है बहन जी, जब
1: जी
0: कैसे हम तो हमने तो कबीरदास को नहीं देखा, नहीं उनके दोहे सुने थे, सब सबसे पहले हमने तो अपनी दादी नानी से सुना था कि जो कल करना है अब कर ले,
1: अब कर लो,
0: आज कर
1: बिल्कुल
0: ले, और जो आज अब करना, और जो आज करना है अब कर ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो ये हमारे बड़ों से हमने सीखा है बहन जी, तो
1: जी
0: कितनी सटीक बात है, सच्चाई है इसमें ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, तो मैं कुछ दोहा बोलती हूँ बहन जी।
1: अवश्य स्वागत है।

पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछड़े कब मिले कौन कहाँ मिल जाए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। मात्री कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रो मोय, ऐसा एक दिन आएगा मैं जा रूंगा तो। ऐसी

0: करे आप हूँ शीतल हो, रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो के हो। तो जितनी बात इस दोहे में है बहन जी,
1: जी
0: सब के सब सच है, कोई झूठ नहीं है।
1: यही तो मैंने कहा कटु सत्य समाज का उन्होंने अपने दोहों में प्रस्तुत किया। और हम जब कबीर साहित्य पढ़ते हैं तो वो समाज को देखकर, उनकी पैनी दृष्टि ने समझकर, अनुभव करके ही कुछ ऐसी
0: इस दोहे को रचा है,
1: हाँ,
0: इस दोहे को रचा है और इस दोहे जन जन के हृदय में जाकर चुभ देती है बहन जी और घर कर लेती है। अगर ऐसे सी ऐसे दोहे हम सुनकर नहीं कंठस्थ करेंगे तो क्या कंठस्थ करेंगे।
1: हमारे बच्चों को आवश्यक है ये सब दोहों के अर्थ जानना, क्योंकि उनका जीवन मार्गदर्शन उनका हो सकता है इन दोहों के माध्यम से। जी
0: तो कैसे कहते साईं की नगरिया में जाना है ना, तो भगवान के पास जाना है तो सब कुछ अच्छा करके जाना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: अब कैसे हम माटी को गिंजते हैं, उसे कलश बनाते हैं, पता नहीं चिलम बनाते हैं, क्या क्या बना घड़ा बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो यही तो सच्चाई है। आज हम माटी को रौंदते हैं, कल माटी हमें
1: रौंदेगी।
0: हाँ,
1: बिल्कुल, ये सत्य है जीवन का, हमें स्वीकारने की आवश्यकता है बस। तो हमारे बड़े लोग, बड़े साहित्यकार
0: किया है
1: जी, बड़े साहित्यकार, बड़े लोग जो भी कहते हैं उसमें कितने गहरे राज छुपे होते हैं, ये पहचानने की आवश्यकता है।
0: तो साहित्यकार नहीं होते बहन जी, इतिहासकार नहीं होते तो हम किस खेती मूली होते बहन जी।
1: बिल्कुल, तो हमें उनसे सीखना है, ये सब पढ़कर हमें समझना है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है,
0: और समाज के सामने दर्पण के समान रखना है बहन जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो बहुत धन्यवाद बहन जी आपको भी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम बातचीत को जारी रखते हैं। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक माने जाते हैं। उन्होंने कविताओं प्रतिज्ञा करके नहीं लिखी, ना ही उन्होंने पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कविताएं इतनी प्रबल और उत्कृष्टता से कही हैं कि वे सरलता से महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। एक और फोन कॉल लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, बसंती जी बोल रही हैं।
2: जी जी जी,
1: कैसी
2: तो
1: हैं?
2: शुरू करूंगी
1: जी, क्या सुना रही हैं?
2: एक साखी
1: जी।
2: तेरा साई तुझ में जो पहुनन में वास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढे घास, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाई, सार सार को गही रहे ठोथा देही उड़ाई, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का है कोई। मधुर वचन है औषधि, कटुट वचन है तीर, श्रवण द्वार संचरे साले सकल शरीर, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहते कबीर क्यों पाइए मन की ही परतीत। तो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ,
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: क्योंकि औरों के मौका दिए जाए।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका जी। चर्चा जारी रहेगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सभी कवियों में उनकी कविताएं, उनके दोहे कितने सटीक हैं, और ये संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और संवेदना की भावना सन्निहित है। अलंकारों से सुसज्जित ना होते हुए भी आपके संदेश काव्यमय हैं। तुम जिन जानो गीत है यूं निज ब्रज बिहार, केवल कही समझता आत्म साधन सार रे। कबीर भावनाओं की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन

और संवेदनशील स्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। आप अपनी काव्य कृतियों के द्वारा पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना चाहते थे। हरि जी रहे विचार या साखी कहो कबीर, यों सागर में जीव है जो कोई पाकड़े तीर। तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने अपनी दोहों में, अपनी साखियों में रहस्यमयी बातें कह डाली। कवि के रूप में कबीर जीव के अत्यंत निकट हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सहजता को प्रमुख स्थान दिया। सहजता उनकी रचनाओं में सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। उनके काव्य के का आधार यथार्थ है। उन्होंने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं आँख का देखा हुआ कहता हूँ, मैं आँख का देखा हुआ कहता हूँ, नहीं तो नहीं कहता। मैं कहता हूँ अखियन देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो इतने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए कवि ने। ये काव्य रूप एवं उनकी छोटी छोटी बातें दोहों के माध्यम से हम तक पहुंची, जिसमें कितनी गहराई है। चलिए एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा को जारी रखते हैं।

0: हेलो हेलो, चलिए फोन कॉल
1: हेलो
0: जी। हेलो,
1: हेलो। हाँ दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका स्वागत
1: जी
0: है।
1: मैं हूँ राधा
0: जी
1: मौसी
0: राधा
1: आपसे।
0: जी, कैसी हैं?
1: हाँ जी मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक
1: ठीक। आज आप कबीरदास जी पर बातें कर रहे हैं ना?
0: जी, क्योंकि अभी सोमवार को
1: हाँ
0: उनकी कबीर जयंती जो मनाई हमने, तो इससे उपयुक्त
1: हाँ
0: क्या हो सकता है साहित्य दर्पण में कि हम कबीरदास पर चर्चा करें।
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
0: जी
1: और जब हम पढ़ते थे इस जमाने में, तो हम उस समय उतनी हम समझते नहीं थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं अपनी दोहे में,
0: जी
1: लेकिन आज जब हम सोचते हैं तो वो हमेशा उन्होंने परमात्मा और आत्मा को पुरुष स्त्री का रूप दिया है।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और
1: पुरुष स्त्री का रूप। हाँ
0: समाज
1: आत्मा
0: सुधारक होने
1: परमात्मा
0: के
1: से
0: साथ
1: कैसे,
0: उन्होंने सबको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया।
1: हाँ प्रयास किया है।
0: जी
1: और आत्मा आत्मा जो है वो स्त्री है, परमात्मा जो है पुरुष है। और वैसे हम सब बोलते थे उनकी भाषा खिचड़ी भाषा है, लेकिन
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खिचड़ी
0: क्योंकि वो
1: भाषा
0: समाज की
1: होते
0: थी,
1: हुए,
0: क्योंकि वो समाज की
1: हाँ
0: थी ताकि लोग समझ
1: हाँ
0: पाएं।
1: हाँ दो तीन शब्दों को जोड़कर वो ऐसे बना देते थे अपनी कविता को कि
0: बिल्कुल
1: लोग कहते थे ये क्या। लेकिन उनमें उनकी उस भाषा में वो बहुत गूढ़ बातें छिपी हुई
0: गूढ़
1: थी।
0: बातें, रहस्यमयी बातें, और
1: हाँ जो समझ पाए
0: बिल्कुल
1: और हाँ, और जैसे वो कहते हैं ना अपनी भाषा में, और
0: सरल
1: लेकिन
0: सहज।
1: सत्य, हाँ सहज, किसी कहते हैं ना खोद खाद धरती सहे, कूट काट बनराय, कटुक वचन संत सहे, औरन सहा न जाए।
0: बिल्कुल, तो कितनी बड़ी सच्चाई उन्होंने कितने सरल शब्दों में बता दी आपको।
1: हाँ सरल सर, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं। और
0: बिल्कुल
1: कबीरदास जी वो कुछ अलौकिक ही थे, वो उनकी समझ
0: जी
1: में जैसे कहते हैं ना किंवदंती है, उनकी मृत्यु हुई तो कुछ लोगों ने उसे जलाया, कुछ लोगों ने उन्हें दफनाया,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ऐसी बातें
0: जी,
1: हैं। क्योंकि वो ऐसे नहीं मानते कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं।
0: वो
1: वो खुद को मानव, केवल मानव समझते थे अपने आप
0: और
1: को।
0: अंधविश्वास से दूर करना
1: हाँ
0: चाहते थे
1: बहुत
0: लोगों को,
1: दूर बहुत
0: समाज को
1: दूर।
0: सुधार के विचारक होने के साथ सुधारक भी थे।
1: हाँ
0: जी
1: सुधारक थी। ये बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम मुझे सुनकर, क्योंकि बहुत कम लोग शायद कबीर जी की, मतलब उनकी जो संस्था है उस पर चलते हैं, कबीर पंथी है,
0: जी
1: लेकिन बहुत कम लोग उन्हें समझते हैं।
0: बिल्कुल
1: ये बहुत
0: नहीं,
1: अच्छी बात है
0: हमारे
1: दीदी, आपने
0: साहित्य में
1: बहुत अच्छा विषय चुना।
0: कबीर को हम अलग कर दें तो साहित्य नहीं सोच सकते। एक प्रेमचंद
1: नहीं
0: है,
1: सोच
0: एक
1: सकते,
0: कबीर है,
1: बिल्कुल
0: सूर
1: नहीं।
0: है, तुलसी है, इनको छोड़ के हम साहित्य की कल्पना भी कैसे कर सकते
1: नहीं
0: हैं।
1: कर सकते।
0: बिल्कुल,
1: तुलसीदास जी को हम देखेंगे तो वो राम भक्त
0: वो
1: कवि थे,
0: राम भक्त थे,
1: सूरदास जी को देखते हैं तो
0: वो
1: वो कृष्ण
0: कृष्ण,
1: भक्त, मीरा जी को
0: बिल्कुल
1: देखें हाँ, लेकिन कबीरदास जी वो किसी एक पक्ष के भगवान नहीं थे। मतलब इस
0: बिल्कुल
1: ये उनका देव,
0: बिल्कुल
1: ये उनकी देवी नहीं थी,
0: नहीं,
1: वो
0: उनके
1: किसी
0: लिए पूरा समाज के लिए
1: पूरा
0: संदेश था।
1: समाज,
0: जी,
1: हाँ
0: वो
1: पूरा समाज ही
0: समाज को
1: उनके लिए
0: संदेश थे।
1: ईश्वर था।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: हाँ
0: सूरदास
1: हाँ
0: की जो भक्ति थी, वे कृष्ण जितनी सुंदर उन्होंने बालपन की रचनाएं की हैं, कोई कर ही नहीं
1: हाँ
0: सकता है।
1: कोई
0: बिना
1: नहीं कर
0: अखियन के
1: सकता।
0: ऐसा दृश्य आपके सामने सम्मुख रखना दोहों में,
1: हाँ ये बहुत कठिन है। हाँ
0: बहुत
1: लेकिन ये
0: कठिन
1: अच्छी
0: है।
1: बात है कि लोग सुने,
0: बिल्कुल
1: उनको पढ़ें, उनको समझें,
0: बिल्कुल
1: और समझकर उनकी गूढ़ बातों को समझकर अपने जीवन में उतारे, वो क्या कहना चाहे, क्या संदेश देकर गई है संसार को।
0: जी। अब तुलसी की ही
1: हाँ
0: बात करते हैं, तो तुलसी से अच्छा कहाँ प्रस्तुतिकरण है, कहाँ उन लेखन है जो कि राम को दर्शाए? इससे अच्छा
1: कैसे,
0: तो
1: हाँ वो अलग है, वो
0: बिल्कुल
1: अजीब, वो किसी के अलग साहित्यकार है ये सब।

0: एक तरह से वो लोग संत थे लेकिन वो साहित्यकार
1: तो
0: भी थे।
1: एक लगन थी ना तुलसी की, राम की ओर लगन थी, सूर की कृष्ण की ओर लगन थी, बिल्कुल। और कबीर जो थे वे एक विचारक थे जो समाज के लिए विचार करते थे, जो रहस्यमय बातों में गूढ़ संदेश दे जाते थे,
0: दे जाते थे। जरूर जरूर जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद आपको कि आपने कार्यक्रम में भाग लिया। आपको भी। संत कबीर की रचनाओं में साखियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। कबीर बीजक में साखियां, कबीर ग्रंथावली में साखियां हैं और आदि ग्रंथ में साखियों की संख्या 243 है, जिन्हें श्लोक कहा गया है। प्राचीन धर्म प्रवर्तकों के द्वारा साखी शब्द का प्रयोग किया गया। ये लोग जब अपने गुरुजनों की बात को अपने शिष्यों अथवा साधारण जनमानस तक भी पहुंचाने को कहते थे तो वे उसकी पवित्रता को बताने के लिए साखी शब्द का प्रयोग करते थे। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब को भी देखते हैं उसमें भी शब्द कहते हैं तो वे भी उसमें भी कबीर की के दोहे, कबीर के विचार बहुत से हमें देखने को मिलते हैं। और अमुक पूर्वावृत गुरुजन भी कर चुके हैं। अतः प्राचीन धर्म प्रवर्तक द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और शिष्यों के समक्ष साक्षी रूप में उपस्थित करते समय जिस काव्य रूप का जन्म हुआ वह साखी कहलाया। संत कबीर की साखियां निर्गुण साक्षी और साक्षात्कार के उत्पन्न भावनात्मक उन्माद ज्ञान और आनंद की लहरों का सरोवर है। उनकी साखियां ब्रह्म विद्या, बोधिनी, उपनिषदों और जन संस्करण और लोकानुभव का पिटारा है। साखी आँखी ज्ञान को समझियो देखूं मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे समक्ष कबीर दास ने कितने सुंदर शब्दों में हमारे लिए साझा की हैं। एक फ़ोन कॉल है, लेते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते बहन जी, मैं कोटे से आशा जाने बोल रही हूँ।
1: आशा जी कैसी हैं?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक आशा जी।
2: जी
1: आज आशा क्या जोड़ने वाली है कार्यक्रम में?
2: जी जैसे शुरू से मैं सुन रही हूँ आप कबीर जी पर इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं
1: जी,
2: और श्रोता भी जितने भी श्रोता विभाग वो भी बहुत अच्छे अच्छे बातें जोड़ रहे हैं
1: जी।
2: श्री संत कबीर जी जो थे वो सच वाणी बोलते थे,
1: बिल्कुल
2: उनकी वाणी में सच्चाई थी जो जीवन का दर्पण दर्शाता था
1: जी।
2: अगर इस युग में हम किसी को सच बोलते हैं तो वो हमें ही ठोकर मारते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, पर संत कबीर जी की वाणी में इतनी सच्चाई थी जो लोगों की आंखें तो खोल ही देती थी एवं हमें सच्चाई की राह एवं सतमार्ग को ले जाती थी। बस एक दो दोहे मैं भी जोड़ना चाहती हूँ।
1: अवश्य, स्वागत है।

0: नहाए गया तो क्या हुआ, मैं कभी न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बाफ न जाए।
1: जी
0: जी, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे इसी में कहा है कि इस दोहे में कहा है कि जैसे पत्ता अगर उड़ जाता है तो वो फिर से नहीं जुड़ सकता है, उसी प्रकार जो हम जब हमारे संगे संबंधी हमसे बिछड़ जाते हैं तो वो फिर से लौट कर नहीं आते। इस गहराई को ही अगर हम समझेंगे तो कितनी सच्चाई है इस बात में। इसलिए कहते हैं, जब संत कबीर जी ने कहा है, जब तक हमारी जिंदगी है अपने रिश्तों में मिठास भर कर ही जीना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: जी
1: और
0: जय
1: मीठी
0: बसंत।
1: वाणी बोलते हैं तो सबको आकर्षित कर लेते हैं, चाहे
0: जी
1: वे रिश्ते हों, चाहे वह व्यक्ति हो, यहाँ तक के पशु पक्षी भी। जब
0: जी
1: हम उनसे मीठी अच्छे से बात करते हैं तो पशु भी अपना हो जाता है ना।
0: जी जी बिल्कुल सही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आपने कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए आभार। संत कबीर की बात करें तो 1398 से 1518 हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण शाखा के महानतम संत कवि थे। उनका साहित्य समाज सुधार, एकेश्वरवाद, धार्मिक पाखंडी के विरोध पर केंद्रित रहा। उन्होंने बोलचाल की सहज भाषा सिगुण कड़ी, जो कि अभी एक बहन ने कहा कोई हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया, और ताकि आम जनमानस तक सीधा संदेश पहुंच सके। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से मौखिक हैं, जो कही गई हैं, जिन्हें बाद में उनके शिष्यों ने संकलित किया। साखी, सबद, रमैनी। साखी में कबीर के दोहे शामिल हैं जो नैतिक, दार्शनिक और व्यवहारिक जीवन पर आधारित हैं। शब्द की बात करें, इसमें भक्ति भावना और रहस्यमयवाद की झलक मिलती है। रमैनी में चौपाई और दोहे छंद में रचित हैं, जिसमें उनके दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी दोहों के साथ उन्होंने कितना गूढ़ साहित्य हमारे समक्ष छोड़ा। संत कबीर की कुछ साखियां, राम नाम जिन चीनिया, झीना पोतासु, नैन ना आवे निंद्री, अंग में जाए मासु, बिन देखे वे देश की बात कहे सो कूर, अपियो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। संत कबीर ने अपने अनुभवों, नीतियों और उपदेशों का वर्णन पदों में ही किया। पद या शब्द भी एक काव्य का रूप है, जिसमें प्रमुख दो भागों में बांटा जाता है, जो कि लौकिक भाव प्रधान है या परलौकिक भाव प्रधान है। धार्मिक पाखंडों का खंडन करने वाले पद, उपदेशात्मक और नीतिपरक पद, ये भी उनके बहुत सारे हमें मिलते हैं पदों में। वेद किताबें कहें झूठा, झूठा जो ना विचारे, झांकत बकत रहूं निसुबासर, मति एको नहीं जानी। तो ऐसे ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं कि वे पाखंड के कितनी खिलाफ थे और अपने शब्दों में वे कितनी गूढ़ बातें कह जाते थे। रमैनी भी संत कबीर द्वारा गाया गया काव्य रूप है। इसमें चौपाइयाँ दो छंद का प्रयोग किया गया है। रमैनी कबीर की सैद्धांतिक रचनाएं हैं, परम तत्व, राम भक्ति, जगत और ब्रह्म इत्यादि से विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। संत कबीर राम को भी सभी अवतारों से परे मानते थे। ना दशरथ धरी औतरी आव, ना लंका का राव सतावा, अंत ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ऐसे ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। तो संत कबीर की बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे दोहे, बहुत सारे विचार हमें मिलते हैं। एक गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाएंगे।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत की ओर आ रहे हैं। चौंतीसा नामक काव्य रूप केवल कबीर बीजक में ही प्रयोग किया गया है। एक अंतिम फोन कॉल लेते हैं, फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम संगीता हूँ, मैं मोडालबे से बोल रही हूँ।
0: संगीता जी, स्वागत है आपका।
1: हाँ, आपको मैं एक कबीर के बारे में, आप कहते हैं बहन जी, आप इतनी अच्छी अच्छी आप शिक्षा देती हैं हम सब लोग को, बहुत अच्छी लगती
0: शिक्षा
1: है।
0: शिक्षा कबीर देने वाले हैं हम तो, हाँ, खाली आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं।
1: आप भी एक गुरु माता के
0: जी,
1: है
0: जी नहीं,
1: हर सप्ताह सुनती हूँ आप
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहिए, हाँ, आप कबीर को कैसे सोचती हैं?
1: हाँ, जैसे कबीर, हम तो यही परिवार में शादी करके आए थे, हमारे जो सास ससुर थे कबीर में, हर पूर्णो पूर्णिमा में पूर्णो के दिन पूजा करती हैं, जाती हैं कोको मोड़ने को
0: जी
1: कबीर के, वो तो कमल के पत्ते में जन्म लिए थे ना
0: जी।
1: वो
0: जी
1: बहुत,
0: जी
1: बहुत उसके कीर्तन बहुत अच्छा लगती है, हम जाते हैं पूजा में।
0: बहुत बहुत आभार।
1: यहीं पर हमारे घर के पास ही एक शिवालय है
0: जी,
1: कबीर मंदिर है
0: जी,
1: वो मालालबे में यहीं पर में पार्क में, हम लोग बहुत लोग आते हैं, अच्छी अच्छी कीर्तन तो बहुत अच्छी लगती है सुनने को।
0: चलिए,
1: हम
0: बहुत
1: सुनती
0: अच्छा
1: हूँ। हाँ हाँ, और जाते हैं पूजा का, कोको लेकर मोड़ती हूँ, आरती करती हूँ
0: जी।
1: हाँ, अच्छा है। हाँ हाँ, अब देर हो रही है, एक छोटा सा भजन मैं गा दूँ?
0: अवश्य, दो पंक्तियाँ। हाँ, आपकी ओर से।
1: हाँ,
0: जी
1: अच्छा। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। छोटी दुनिया बड़ी देर सुनला ला।
0: चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, आपने भाग लिया इसमें कार्यक्रम में, आभार आपको। श्रोताओं, आज हमने कबीर पर चर्चा की, हमारे साथ इतने सारे श्रोतागण जुड़े जो कि कबीर के साहित्य में रुचि रखते हैं, और कबीर ऐसे सुधारक थे, समाज सुधारक, और जिनकी दोहावली जो रमैनी या साकी जैसे भी प्रस्तुत की गई, उसमें कितनी गूढ़ बातें, कितने गूढ़ विचार हम तक पहुंचते हैं, उन विचारों से कितने का मार्गदर्शन होता है। चलिए, कबीर पर चर्चा करेंगे तो एक नहीं अनेक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अवि ने हमारा साथ निभाया आप तक कार्यक्रम पहुंचाने में, उनको भी आभार प्रकट करेंगे। श्रोतागण, आप कबीर के साथ साथ किस कवि को सुनना चाहते हैं, किस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं कार्यक्रम में, सोचिएगा, फिर हम उसको भी जोड़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या।

0: वजह मुस्कुराने की।
1: जो चले समय के साथ सफलता आए उन्हीं के हाथ 5:01।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी।
1: नमस्कार और आदाब प्यारे प्यारे देवी और सज्जनों, खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में आप लोगों का हम शानदार स्वागत करते हैं। श्रोताओं, शनिवार की है मनभावन शाम, ऊपर से खेल खिलाड़ी प्रोग्राम हमेशा की तरह बस करना है आप ही लोगों के नाम। जी हाँ, अभी से लेकर 5:30 तक खेल खिलाड़ी का पहला भाग सिनेमा दिल से और दूसरी भाग में रैपिड चैलेंज यानी मेरा सवाल तेरा कमाल स्पेशल वर्ल्ड कप और जनरल नॉलेज पर प्रश्न होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिनेमा दिल से और हम जानते हैं कि आप लोग हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही शौकीन हैं और आज का जो विषय है बड़ा ही आसान सा विषय है और आप लोग इसे बेहद पसंद करेंगे, हमें तो है पता। और आज का जो विषय है वो है जरा कीजिए याद कौन है अपवाद। जरा कीजिए याद कौन है अपवाद। अपवाद का अर्थ है मतलब है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू द रूल। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं कि बहुत चीज बहुत ही कॉमन हो जाते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन हो जाता है। बहुत से फलों के बीच में एक सब्जी, ये एक एक्सेप्शन हो जाता है। तो चलिए, वैसे ही हिंदी फिल्मों में सभी के सभी गाने केवल एक गायक या एक गायिका ने गाया है, ये तो आप जानते ही हैं, पर एक ही ऐसा गाना है उस मूवी में जिसको किसी और गायिका या गायक ने गाया है। यानी सभी जो गायक सभी जो गीत है केवल एक गायक या एक गायिका ने गाया है, केवल एक ऐसा गाना है उस फिल्म में जो अन्य कोई और गायक ने गाया है। तो इसी रूप में हो जाता है अपवाद यानी एक्सेप्शन।

0: जी हाँ, तो चलिए हम पहला गाना चलाएंगे आप लोगों के लिए, फिल्म प्रोफेसर से लिया गया। आपको याद है शमी कपूर साहब नजर आए थे कल्पना जी के साथ, बड़ा ही मजेदार समा था, बड़ी ही लाजवाब फिल्म थी प्रोफेसर, और रिलीज हुई थी 1962 में। तो ये जो गाना है आपको गौर से सुनना है, सभी के सभी गाने शमी कपूर साहब के लिए रफी जी ने गाया है। केवल ऐसा ये गाना है जिस गाने को एक और गायक ने गाया है शमी कपूर साहब के लिए। सभी के सभी गाने रफी साहब ने गाया है, केवल ये गाना एक और गायक ने गाया है। तो आप लोगों को उस गायक का नाम बताना पड़ेगा और उनके साथ दो गायिकाएं हैं, उन लोगों के नाम भी बताने पड़ेंगे आपको। 402-808-5
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: हमारा भी जमाना था।
1: ऐसी लड़ाई क्यों? आपका जमाना था, इसका जमाना है, क्या है? एज इज जस्ट ए नंबर। ये उम्र है क्या रंगीली, आवाज भी कितनी सुरीली, और महफिल भी एकदम निराली। सवाल था कि इस फिल्म में सभी के सभी गाने रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी के लिए गया, केवल एक छोड़कर, यानी ये जो गाना आपने सुना इसको किसने गाया था शम्मी साहब के लिए? और सही जवाब है मन्ना डे साहब ने गाया था शम्मी कपूर साहब के लिए। बिल्कुल मन्ना डे साहब ने ही गाया था। साथ ही साथ आशा जी और उषा जी नजर आई थी, यानी उषा मंगेशकर और आशा भोसले जी ने गाया था साथ मन्ना डे के। और सही जवाब दिया सबसे पहले नोटरडाम की रेहाना जी, और हरीश भाई फ्रॉम बुबासें, शमा जी फ्रॉम विलमे, और क्राबिस सेवास्तोपोल से विजय भाई। बहुत धन्यवाद दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। इतने सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, किस का फोन कॉल हम ले और किसका नहीं, ये तो समय पर निर्भर है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और दूसरा जो गाना हम आपके लिए चलाएंगे, मैंने प्यार किया फिल्म से। जी हाँ, मैंने प्यार किया फिल्म जिसमें सलमान खान और भाग्यश्री नजर आए थे पहली बार के लिए साथ साथ, और इसके बाद भाग्यश्री सलमान साहब के साथ कभी नजर नहीं आई। और सलमान और भाग्यश्री के लिए जिस गायक और गायिका ने आवाज दी थी, बेशक लता जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी। लेकिन एक ऐसा गाना है जो ये दोनों तो गाते हैं, लेकिन साथ साथ उनके एक गाना में केवल पूरे फिल्म का के जो गाने हैं ये बालाजी और लता जी ने गाया है, केवल ये गाना है जो शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर जी ने साथ दिया है। और आपको बताना पड़ेगा कि इस बहुत ही बढ़िया फिल्म का संगीतकार कौन।
2: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: 4028085 पर बताइए कि मैंने प्यार किया फिल्म का संगीतकार है कौन। 4028085

लता जी, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, शैलेंद्र सिंह साहब और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म मैंने प्यार किया का बहुत ही लोकप्रिय सा गाना आप सुन रहे थे। और बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के लिए हमने पूछा था कि संगीतकार कौन, और सही सही जवाब है राम लक्ष्मण। ये एक संगीतकार की जोड़ी है, जैसे आनंद मिलिंद नदीम श्रवण, वैसे ही राम लक्ष्मण, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल शंकर जय किशन किशन, वैसे ही राम लक्ष्मण। और फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया था जैसे पत्थर के फूल, अनमोल, फर्स्ट लव लेटर, इतने सुंदर सुंदर फिल्मों के नाम, सातवां आसमान। और सही जवाब किन लोगों ने दिया? आंटी जी कोंफुको से, इंद्रानी जी लेस्कालिये से, रोजबेल से, उमा जी, स्वस्ति जी फ्रॉम कटबोन, अनिता जी फ्रॉम मौदालबेयर, शोभा जी फ्रॉम बाक्वा और मौदालबेयर से इंदिरा जी। इतने सारे लोग फोन कर रहे हैं और हम आपकी आवाज सुनकर भावुक हो गए हैं, इतनी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं इस प्रोग्राम के प्रति। प्रश्नोत्तर में आप लोग बहुत ही माहिर हैं और आप कहते हैं कि हमेशा ये प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि आप लोगों का दिमागी कसरत हो जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। अगला गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, बहुत ही सुंदर सा गाना है, लिया गया है फिल्म हम हैं राही प्यार के से। और हम हैं राही प्यार के में साधना सरगम जी ने एक ही गाना गाया था, और आमिर खान और जूही चावला के लिए एक गायक और एक गायिका ने बाकी सारे गाने गाए थे इस फिल्म के। वो गायक और गायिका है कौन? 4028085 पर हमें बताइए कि ये जो गाना भी चलेगा ये एक केवल एकमात्र ऐसा गाना है जो साधना सरगम जी ने इस फिल्म के लिए गाया था। बाकी सभी के सभी गाने एक गायिका और एक अन्य गायक ने गाया था, उन लोगों के नाम हमें चाहिए।

0: जब प्यार में दिल तड़पता है तो दिल से यही आह निकलती है, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। साधना सरगम की बहुत ही सुंदर आवाज में आपने ये गाना सुना, फिल्म हम हैं राहे प्यार के से। और हमने आपसे सवाल किया था कि साधना सरगम जी के अलावा कौन ऐसे दो गायक और गायिकाएं हैं, गायक और गायिका हैं जिन्होंने सभी के सभी गाने आमिर खान और जूही चावला के लिए रिस्पेक्टिवली गाया है, और वो है अलका याग्निक जी और कुमार सानू जी। जी हाँ, बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं इस फिल्म में, जैसे घूंघट के आर से दिलबर का, याद आया आपको, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, ऐसे ऐसे सभी जो गाने हैं कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी ने गाया है। तो चलिए हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं दूसरे भाग में, और वहां पर रैपिड चैलेंज होगा जहां पर जनरल नॉलेज और वर्ल्ड कप पर आपसे हम प्रश्न पूछेंगे और आप लोग ऑन एयर जवाब देंगे, बिल्कुल ऑन एयर। अगला गाना आप सुनिए फिल्म आशिकी का, जिसके लिए कुमार सानू जी और अनुराधा पोडवाल ने सभी के सभी गाने गाए थे, सिवाय इस गाने के लिए जो अनुराधा जी ने उदित नारायण जी के साथ गाया था। इसका आप मजा लीजिए, थोड़ी देर में फिर से हम मिलते हैं।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
1: खेल खिलाड़ी खेल खिलाड़ी खिलाड़ी जी हाँ प्यारे प्यारे साथियों खेलकूद प्रेमियों सारे 5 बजे हैं और खेल खिलाड़ी का दूसरा भाग रैपिड चैलेंज मेरा सवाल तेरा कमाल और आप लोग कमाल दिखाएंगे ऑन एयर। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, 1 प्रश्न भी पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे तो तुरंत रैपिड चैलेंज के तौर पर दूसरा प्रश्न ऑन एयर ही हम आपसे पूछेंगे। और बेशक हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप 2026 पराक्रम और परिश्रम का मिक्स। फुटबॉल तो है अनेक अनोखा गेम और वर्ल्ड कप का नेम और फेम। और कल यानी आज सवेरे राउंड ऑफ 32 समाप्त हो गया। सरप्राइज टीम काबो वर्डे, जिसे कब वेद कहते हैं, कब वर्ड आइलैंड, सभी के होठों पर एक ही टीम। क्या गुल खिलाया है इस टीम ने, एक भी मैच इस वर्ल्ड कप के दौरान कबो वर्ड ने हारा नहीं ना ही जीता है, केवल ड्रॉ ही ड्रॉ। और पहली बार के लिए वर्ल्ड कप के इतिहास में उन्होंने कदम रखा था, हालांकि वो अब इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है ये टीम, लेकिन सर ऊंचा करके चला गया है ये टीम। और कल वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना के खिलाफ बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है यही टीम काबो वर्डे। उसका जो सॉलिड डिफेंस, फर्म डिटर्मिनेशन, एकता, टीम स्पिरिट, ये सब कुछ देखने को मिला इस काबो वर्डे टीम में। अफ्रीकी टीम है, सो वी आर प्राउड ऑफ दिस अफ्रीकन टीम। अर्जेंटीना विश्व चैंपियंस को भी एक्स्ट्रा टाइम में जाना पड़ा, तब जाके जीत हो पाई अर्जेंटीना के। और अर्जेंटीना का जो गोल स्कोर किया वो था मेसी और मार्टिनेज ने, और एक ओन गोल काबो वर्डे की ओर से, और उसका सफर वर्ल्ड कप में समाप्त। तो चलिए अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए ज्योग्राफी पर आधारित है, जरा गौर से सुने और 4028085 पर फोन करें। काबो वर्डे यानी कब वेद की जो राजधानी का नाम वो प्राया है, PRAIA। द कैपिटल ऑफ काबो वर्डे इज प्राया। और आपको हमें बताना पड़ेगा कि जैसे ब्रिटेन से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1968 में, वैसे ही इस आइलैंड को, इस द्वीप को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1975 में, यानी 1975 में। किस देश से उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, जरा हमें बताइए 4028085 पर बताइए कि किस देश से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, 4028085।
0: Throw your hands

0: निकलने जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चलिए हम पहले श्रोता का स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते सब सोटालों के।
0: नमस्ते भाई दिला,
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया बा है।
0: बहुत धन्यवाद दिला भाई, हमेशा आप उत्साह बढ़ाते रहते हैं।
1: और हम एगो ऐसे कहते हैं लेकिप के है जो लेकिप जन अथी कर ले बा प्रोग्राम वा हाई सब लेकिप हम बेसे के हम अथी कहते हैं गमी ऐसे करा चाहिए।
0: बहुत धन्यवाद भाई दिला जी,
1: बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आना था जिमोस के सामजी के वर्ल्ड कप के एगो।
0: हाँ बहुत
1: जैसा मोशन लोग अभी पगला हो गल भाई वर्ल्ड कप खातिर ना।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे कहते हैं फुटबॉल के शौकीन
1: हम लोग जोड़ी पास तो होता।
0: आप तो डाई हार्ड फैन है हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। और फुटबॉल किसे पसंद नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी को पसंद है फुटबॉल।
1: सबके एकता आने लाला।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, बढ़िया चीज। तो आपके लिए वो प्रश्न था कि जो काबो वर्डे है, आपने वो मैच देखा कल, वो काबो वर्डे
1: बहुत गर्म था,
0: बहुत गर्म मैच है ना,
1: गर्म। और तनी जे लक्की हुआ छो तो
0: मिल जाता,
1: मिल जाता।
0: हाँ गर्मा गर्म मैच। हाँ बिल्कुल, और ये तो कभी कभार भाग्य की बात है ना, होता है। हाँ
1: कभी होता है,
0: होता है ऐसा। हाँ कभी कभार जो जो भाग्य होता है वो बड़े टीमों के साथ होता है। तो चलिए भाई अपना जवाब दीजिए, किस देश से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, बताइए हमें।
1: ये पोर्चुगल से, पोर्चुगल,
0: पोर्चुगल से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1975 में। क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद, आपने सही जवाब दिया। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है। हाँ आपने कहा काबो वर्डी कब्वियद है, तो उसकी जो पहली मैच थी, पहली मैच है काबो वर्डे के वर्ल्ड कप 2026 में, किस टीम के खिलाफ आपको याद है, किस टीम के खिलाफ काबो वर्डे ने अपना पहला मैच खेला था?
1: स्पेन,
0: स्पेन के खिलाफ। तो आपका जवाब एकदम एकदम सही है। क्या बात है, 0-0 हुआ था वो स्कोर।
1: 0-0 हुआ था,
0: बिल्कुल।
1: तीन ड्रॉ हुआ था ना,
0: तीन ड्रॉ, और कल भी एक ड्रॉ हुआ 90 मिनट्स में।
1: जी ठीक, लेकिन हमारे को एक्सपीरियंस से बोला चाहिए, सकेला पोशन कुब्जिमोन में बहुत अमीलियो हो जाए अब।
0: बहुत अच्छा, हाँ आप बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि आप फुटबॉल खेलते हैं।
1: छोटा मोटा सियोंसिस है, एगो रिसर्च कहला फुटबॉल में हम।
0: ओके, वैज्ञानिक हैं आप फुटबॉल के क्षेत्र में।
1: बहुत बढ़िया चीज है। सिर्फ एगो और एगो चीज एगो बहुत एगो है जो रिम है यदि है जो लेकिन एम्बेसी बा बहुत रिमियसे कहेगा सीन पर सिर्फ बहुत बहुत मैच ऑन डायरेक्ट दिया था।
0: बहुत अच्छा, हाँ ये तो बात है।
1: एम्बेसी पैसा कुटोल बा ना, मिलियों के पैसा कुटोल बा,
0: फिर भी आप लोगों के लिए
1: अच्छा।
0: धन्यवाद आपको,
1: वजह हमें मिला था मछुआ।
0: धन्यवाद भाई दिला जी, फिर से मुलाकात
1: होगी। नमस्ते और बढ़िया बढ़िया मैच बा अब ना।
0: हाँ बढ़िया मैच
1: बा, गरम बा,
0: गरम गर्मा गरम मुकाबला। ओके धन्यवाद, ओके।
2: रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
0: जी हाँ, चार ड्रॉ करने के उपरांत काबो वर्डे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई ये टीम, कोई बात नहीं, लेकिन पहला मैच उन्होंने स्पेन के खिलाफ खेला था 0-0। यूरुग्वे के खिलाफ, सऊदी अरेबिया के खिलाफ ड्रॉ ही मैच हुआ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और आज का जो फिक्स्चर्स इस प्रकार है,

9 बजे रात्रि के आप देख पाएंगे फुटबॉल मैच कनाडा वर्सेस मोरक्को। बहुत ही गर्मा गर्म मुकाबला, कनाडा होस्ट टीम मेजबान देश वर्सेस अफ्रीकन चैंपियन मोरक्को। ये बहुत ही बढ़िया मैच है और कल 1 बजे, हाँ जी सवेरे 1 बजे पराग्वे वर्सेस फ्रांस, ये बहुत ही बढ़िया मुकाबला है पराग्वे वर्सेस फ्रांस। ये तो बहुत ही सुंदर सा मैच रहेगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो आपको हमें बताना पड़ेगा ये जो पराग्वे वर्सेस फ्रांस है, इन दोनों की मुलाकात हुई थी 1998 में। वहाँ पर फ्रांस की जीत होती है फाइनल में ब्राज़ील के खिलाफ। पहली बार के लिए फ्रांस चैंपियंस बनती है और 1998 में उसी देश में आयोजित होता है वर्ल्ड कप और उसकी जीत उसी साल होती है। तो एट फाइनल खेला जाएगा क्योंकि राउंड 32 तो समाप्त हो गया, अभी राउंड 16 है, राउंड ऑफ 16 यानी एट फाइनल। और 1998 में जो एट फाइनल में था उसमें पराग्वे ने फ्रांस के खिलाफ खेला था, वो दोनों ने साथ साथ खेले थे। तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि फर्स्ट गोल्डन गोल उसी मैच के दौरान स्कोर किए गए, हाँ जी इतिहास के पन्नों को ज़रा आप उलाटिए और ये अनुमान लगाइए कि जो फर्स्ट एवर गोल्डन गोल ऑफ वर्ल्ड कप, ये इसी मैच के दौरान स्कोर किया गया था एक्स्ट्रा टाइम में, और उसको किसने स्कोर किया था, फ्रांस के किस खिलाड़ी ने वो गोल्डन गोल पराग्वे के खिलाफ स्कोर करके क्वार्टर फाइनल में ऑटोमेटिकली उनकी क्वालिफिकेशन हो गई। तो आप हमें बताइए किसने उस गोल्डन गोल को स्कोर किया था पराग्वे के खिलाफ 1998 में। 4-0-2-8-0-8-5

0: दुनिया को क्यों मारे धक्का, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए हम बात करेंगे अगले श्रोता के साथ। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार भाई रोशन।
0: भाई हरीश जी, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी, आप बुबासे से बात कर रहे हैं।
1: Yeah,
0: अच्छा, तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि 1998 में वर्ल्ड कप के दौरान राउंड ऑफ 16 में फ्रांस ने पराग्वे को हराया था 1 गोल से एक्स्ट्रा टाइम में, गोल्डन गोल। जब ये गोल स्कोर कर दिया गया तो तुरंत मैच वहां पर समाप्त हो गया। आपको पता है ना, गोल्डन गोल रूल में जब एक्स्ट्रा टाइम में कोई गोल स्कोर हो जाता है तब उसे हम 30 मिनट्स नहीं खेलते थे, उसे वहीं के वहीं समाप्त कर देना था। तो किसने ये स्कोर किया था, ये गोल्डन गोल, फर्स्ट एवर गोल्डन गोल ऑफ वर्ल्ड कप, बताइए।
1: इत्तेफाक से मैं फ्रांस में था।
0: अच्छा,
1: 1998 में
0: फ्रांस में थे आप?
1: सैजेनी में मैं वहां था।
0: अच्छा,
1: फाइनल होने से पहले मैं वापस आ गया मॉरिशस।
0: ओ,
1: तो जवाब है लोरेंट ब्लांक।
0: बिल्कुल, फ्रांस का कारिश्मेटिक कैप्टन लोरेंट ब्लांक, आपने बहुत सही सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, और ये जो जवाब है बहुत ही बढ़िया जवाब आपने दिया है। चलिए, आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। तो अभी पराग्वे और फ्रांस के बीच में आज का जो मैच है, लेट मैच, यानी कल 1 बजे ये मैच खेला जाएगा मॉरिशन टाइम, तो आपको बताना पड़ेगा फ्रांस ने तो एलिमिनेट किया था किस टीम को, स्वीडन को, तब उन्होंने कदम रखा 8 फाइनल में। तो पराग्वे ने किस टीम को एलिमिनेट किया तब यहाँ पर पहुंचा, अब बता सकते हैं?
1: पराग्वे ने किस टीम को एलिमिनेट किया?
0: हाँ, अभी, हाँ, तब जाके वो क्वालिफाई हो गए, तब फ्रांस के साथ खेल रहा है।

0: ये देश बताइए हमें।
1: क्या बिनी?
0: जर्मनी। कहां से आपको पता चल गया? क्या बात है, क्या दिमाग पाया है आपने हरीश भाई, वाह।
1: ये जमीन एक बहुत बड़ा टीम था, अच्छी टीम है।
0: हाँ,
1: मैं अफसोस कर रहा हूँ कि ऐसी टीम आउट हो गया।
0: क्या करें, लेकिन पराग्वेज ने भी
1: बोलिए।
0: अच्छी मैच खेली थी, है ना। हाँ, तो आपका जवाब एकदम सही है हरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: शुक्रिया। बाय
0: ओके
1: बाय।
0: बाय।

जी हाँ, पराग्वे और फ्रांस के बीच में मुकाबला हुआ था 1998 में और एकमात्र गोल गोल्डन गोल स्कोर किया था कैप्टेन लूरेंट ब्लों ने। उस समय जीजे देशों का बोलबाला था, आज वो इस बहुत ही तगड़ी टीम फ्रांस का कोच है। और उस समय वो गोलकीपर था पराग्वे का, जोसे लुई शिलावे। क्या बात थी उस गोलकीपर में। फिर भी फ्रांस की जीत हो गई और उस मैच में जिनेदिन जिदान सस्पेंड थे, इसलिए वो नहीं खेल पाए थे। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और रिकॉर्ड्स की ओर हम बढ़ेंगे। वर्ल्ड कप के इतिहास में इस वर्ल्ड कप से दो बार ग्रेटेस्ट एवर गोल्स का जो रिकॉर्ड है तोड़ा गया। दो खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे पहले लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड तोड़ा और अब लियोनेल मेसी 20 गोल्स है। 20 गोल्स इन वर्ल्ड कप। और किलियान एम्बापे जो उससे बहुत जवान है, वो अभी 18 गोल आ गए हैं। ये तो मेसी का अंतिम वर्ल्ड कप है, लेकिन किलियान एम्बापे के भविष्य में बहुत ही उज्जवल हैं। वो और गोल्स स्कोर कर सकते हैं और गोल्डन बूट के दौरान हम देखेंगे। अभी तो लियोनेल मेसी 7 गोल पर पहले स्थान पर हैं और किलियान एम्बापे 6 गोल्स सेकंड प्लेस। हालैंड भी आ रहा है, ओयोज़ाबाल भी आ रहा है स्पेन का। तो आपको हमें बताना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप से पहले जो स्कोर था, रिकॉर्ड था, वो 16 गोल्स था। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी, जर्मन खिलाड़ी ने ये रिकॉर्ड रखा था इस वर्ल्ड कप से पहले, तब जाके लियोनेल मेसी और एम्बापे ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। उस जर्मन खिलाड़ी का नाम हमें चाहिए जिसने 16 गोल्स तक टाइटल होल्डर था, वो रिकॉर्ड होल्डर था। बाद में उसका रिकॉर्ड तोड़ा गया। 4-0-2-8-0-8-5 पर प्लीज आप लोग जवाब दें।

झूम फ्री का गाना है सुनिधि चौहान की आवाज में। हमने सवाल किया था कि कौन था वो रिकॉर्ड होल्डर इस वर्ल्ड कप से पहले, जर्मन खिलाड़ी था जिसने 16

0: गोल स्कोर करके रिकॉर्ड अपना नाम किया था। बाद में ये लियोनेल मेसी ने तोड़ा और एम्बापे ने भी। चलिए हम सुनते हैं अगले श्रोता को। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, ये तो इंदिरा जी हैं फ्रॉम मोदालबेया। ठीक है इंदिरा जी?
1: जी
0: हाँ। और फुटबॉल आप पसंद करती हैं?
1: मुझे बहुत पसंद करती
0: हूँ। बहुत पसंद करती हैं। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है?
1: ओ, फेवरेट टीम मैं लिवरपूल पर
0: तो। ओ, लिवरपूल इज योर फेवरेट टीम। ओके, सो यू विल नेवर वॉक अलोन। तो बताइए हमें इंदिरा जी, क्या है आपका जवाब? कौन है वो जर्मन खिलाड़ी?
1: जवाब है क्लोजे।
0: अरे वाह, क्या बात है, मिरोस्लाव क्लोजे। बहुत ही बढ़िया। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है, आपको बताना पड़ेगा हमें कि 2022 में तो कतर में वो वर्ल्ड कप हुआ था, तो किस को हराया था अर्जेंटीना ने? किस देश को, किस देश को अर्जेंटीना ने हराया था, बताइए हमें। फ्रांस को। क्या बात है, आप तो सचमुच वर्ल्ड कप में बहुत ही शौक रखती हैं। बहुत ही बढ़िया इंदिरा जी, ऐसे ही आप फुटबॉल देखती रहें और आप स्पोर्ट्स भी करती रहें। ओके, धन्यवाद आपको, बाय।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो मॉरिशस।
0: चलिए एक अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए, और अभी तो राउंड ऑफ 16 शुरू होने वाला है। आज कनाडा वर्सेस मोरक्को और कल सवेरे फ्रांस वर्सेस पैराग्वे। और इस राउंड ऑफ 16 में तो जाहिर सी बात है कि 16 टीम्स है, यानी थ्री नॉर्थ अमेरिकन टीम्स, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीनों के तीनों होस्ट टीम्स, और चार साउथ अमेरिकन टीम, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड कोलंबिया। 7 यूरोपियन टीम्स यानी इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड एंड बेल्जियम। और 2 अफ्रीकी टीम्स। ये कौन से 2 अफ्रीकी टीम्स इस राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई हुए हैं? 4028085 पर बताइए कि केवल 2 अफ्रीकी टीम्स, 10 के मुकाबले केवल 2 अब अफ्रीकी टीम्स राउंड ऑफ 16 में उपस्थित हैं। उन दोनों के नाम हमें चाहिए। 4028085।

0: बंदूक की कोई बात नहीं, ना ही संदूक की कोई बात है, हमने प्रश्न पूछा था। चलिए हम देखते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते रोशन भाई।
0: भाई विजय, क्रावेट सेबास्तोपोल से बात कर रहे हैं।
1: धन्यवाद।
0: आप वर्ल्ड कप के बहुत ही शौकीन हैं।
1: बहुत बहुत।
0: और मुझे याद है कि आप इंग्लैंड टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।
1: हाँ, ठीक है, हमने बोला था इंग्लैंड हमारा फेवरेट टीम है।
0: अरे वाह, क्या करेगा इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको कल?
1: इंग्लैंड को जीत होगा।
0: अच्छा, मेक्सिको के खिलाफ?
1: हाँ, जीत होगा मेक्सिको के खिलाफ।
0: और मेक्सिको अपने मैदान में अपने सपोर्टर्स के साथ?
1: हम लोग को समझना चाहिए, हम जाने के भाई फुटबॉल पहला खेले के शुरू हो रहा इंग्लैंड में।
0: हाँ, लेकिन एक ही बार
1: बोस।
0: हाँ, लेकिन एक ही बार इंग्लैंड के जीत होल बा।
1: हाँ, काम में भी आवत है उसे तो धीरे धीरे से अपन परफॉर्मेंस बताई।
0: हाँ, ओके, धीरे धीरे होले होले। तो चल हमनी के बताव कौन जवाब दे बा, दो अफ्रीकी टीम्स जो अब तक इस कंपटीशन में अभी उपस्थित हैं, कौन से वो दो टीम्स हैं बताइए।
1: आज को खेला था टीम मारोक।
0: अच्छा, और
1: मोहम्मद सलाह के लिखी भटे हुए थी
0: इजिप्ट। बिल्कुल, कल इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या प्रदर्शन किया, वाह। और एक्स्ट्रा टाइम में जाकर नहीं बल्कि पेनाल्टी शूटआउट पर इजिप्ट की जीत हुई ना।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छा। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है।

0: मोरक्को और इजिप्ट, आपने सही जवाब दिया। तो आपको हमें बताना पड़ेगा अफगन 2026 के जो फाइनल था, कुप दाफ्रिक दिनाशों जिसे कहते हैं, हाँ। उसमें किसकी जीत हुई थी?
1: उसमें कुछ जिब्बा की जीत हुई थी सिनेमा, जब तनिष्ण हम अपनी गड़बड़ हो रहा।
0: हाँ तब बोला
1: लापेन में चल लापेन छोके चल गल सर।
0: अच्छा के
1: छोटा प्रॉब्लम हो रहा लापेन छोके चल गल सर सब जो
0: है याद है
1: माने जाके बोला खेले गोलू की।
0: हाँ तो किसकी

0: सेनेगल ने, लेकिन वो टीम जो सेनेगल टीम थी वो छोड़कर चले गए थे, तो ये फीफा रूल के खिलाफ है, इसीलिए उन लोगों को अपील बोर्ड ने ये फैसला लिया कि मोरक्को को जीतना चाहिए 3-0 से। हालांकि वो हार गई थी एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन उन्होंने नियम का पालन नहीं किया था सेनेगल, तो मोरक्को ही चैंपियन बनी। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद भाई विजय, आप कहिए फुटबॉल की जय हो।
1: धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद। तो चलिए विजय भाई के साथ ही आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम स्पेशल वर्ल्ड कप यहां पर संपन्न हुआ। आप लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों की आज लाइन नहीं लगी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, अगर फुटबॉल आप टीवी पर नहीं देखना चाहते तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने MC Play डाउनलोड किया होगा, मोबाइल पर देख रहे होंगे, और न्यू वर्ल्ड चैनल पर जाइए, टीवी सेक्शन में आप अपने फुटबॉल का खूब आनंद उठाइए। अब किसकी जीत होगी, इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील, पोर्टुगल, स्पेन, सभी महारथी बचे हैं इस वर्ल्ड कप में, और ये तो दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। ये कंपटीशन बहुत ही दिलचस्प है। केवल आप लोग फुटबॉल न देखें, बल्कि फुटबॉल देखकर आप लोगों को व्यायाम भी करना है। याद रखिए, आपके पास समय है 24 आवर्स डे, तो इसमें केवल आप लोग 20 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, आप प्राणायाम कीजिए और अपने आप को स्वस्थ व तंदुरुस्त रखिए। ये वादा के साथ हम जा रहे हैं आपसे, हम फिर मुलाकात करेंगे अंताक्षरी प्रोग्राम के दौरान इसी चैनल पर, रेडियो मॉरिशस AM2 की लहरों पर फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।

0: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: नमस्कार, आदाब, शाम के 6 बजे है। पेश है समाचार।

0: खबर दिन सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मुशरस में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। जिटवा अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बाकामयाबी डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजा कैजिन ने मुशरन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिन बच्चों के व्यवहार में गंभीर मसले हैं, इनकी देखभाल करने में पेश चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए गठित कमेटी की बड़ी सिफारिशों से एक खास इकाई कायम। परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कानून को अमल में लाने का फैसला किया। खियौली में सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम फिर से नई सहूलतों के साथ कार्यरत। करार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और इलाके के निर्वाचित सदस्यों ने मूल ढांचे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी अभियानों के दौरान वासियों ने इस स्पोर्ट्स सुविधा के स्तर को बेहतर करने की मांग की थी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सबसे सॉलिडारिटी की मांग की है ताकि सब अच्छी दिशा में बढ़ सकें। कल खियोली में वे पेंशन प्रणाली पर बात कर रहे थे। और यूरोप में शदीद गर्मी, फ्रांस में अतिरिक्त 1000 मौतें दर्ज हुई हैं। नमस्कार, रादाब। एक बार फिर से मुर्शस में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। जिटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बाकामयाबी डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मोशन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहली बार पेसमेकर लगाया, यानी ये लीडलेस पेसमेकर लगाया। इस दफ़ा इस लीडलेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं। पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था। यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शस को महारत हासिल हुई है। कोयल सितर, रजनी बेकर।
1: मुर्शस में 87 वर्ष की मरीज पर एक वायरलेस पेसमेकर लगाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही देश में ये लघु उपकरण लाया गया। ऑस्ट्रिया के एक हृदय चिकित्सक की मदद से मॉरिशन टीम के सहयोग से ये सर्जरी संपन्न की गई। कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर देवादा सेंचलन ने कहा,
2: à deux reprises sa fille infective du côté droit du côté gauche finalement parce qu'il n'a aucun moyen pour tirer des pilules olivis que les cas typés dépendants le NPHMK temporaire. Heureusement, nous finissons de discuter avec mon directeur de l'hôpital qui, avec la bénédiction du ministère de la Santé, a accepté d'acheter un boîtier qui comme ça et qui coûte très cher. Vous pensez qu'à la longue,
1: परंपरागत पेसमेकर के मुकाबले इस उपकरण को सीधा दिल में लगाया जाता है। इसके लिए केबल की आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही इन्फेक्शन के कम खतरे और कम जटिलताएं भी है। डॉक्टर सेजा खाजन ने कहा,
3: I'm really happy that it went well. As always, the complication of this leadless are so low and it reduced the cost. It's a little bit expensive, the device, but long-term and longevity of this system can hold for 20 years or more. And there is no complication.
1: अभी तक मरीजों को इस सर्जरी के लिए विदेश जाना पड़ता था। पहली बार ऐसा किया गया है और ये सरकार के विजन के अंतर्गत आता है, जैसे बजट में घोषित विजिटिंग डॉक्टर्स स्कीम के माध्यम से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने कहा,
4: मैम के साथ ये पेपली शेयर में जनरल को सीसी इवन प्लस के ला मोचे जैसे कि नो एनवाय दे हो ए अविक सा सिस्टम ला कि नो कैपेबल रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट कि नो पे एनवाय ला मेम ला डेपिस एनवी जिसका मेंटेनेंस नो मोफिन ट्रूवे एन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स कि नो पे एनवाय दे हो अलो नी बेसे ट्रू मोयन से नो कैपेबल फे टू समन ऑपरेशन आम वुस।
1: मॉरिशस में कार्डियक इलाज के लिए एक अहम प्रगति। भविष्य में ज्यादा मरीज देश छोड़े बिना ही इस विशेष इलाज से लाभ उठा सकेंगे।
0: जिन बच्चों के व्यवहार में गंभीर मसले हैं, इनकी देखभाल करने में पेश चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों से एक खास इकाई कायम की जाएगी। और इस लक्ष्य से परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कानून को अमल में लाने का फैसला लिया है। सिलवाना पागीमामन, रजनी बेकर।
1: हमला करना, ज्यादा गुस्सा करना, नियमों का पालन करने से इनकार करना, गैर सरकारी संगठनों के अनुसार शेल्टर्स में भर्ती 5-10% बच्चों को व्यवहार संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर समान हादसे पेश आते रहते हैं और वहाँ रहने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित होती है। चिल्ड्रन फाउंडेशन के 3 शेल्टरों में

0: शून्य से 18 साल के बच्चे जाते हैं। उच्चाधिकारी और कर्मचारी इनके परेशानी वाले व्यवहारों के पहले प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं। चिल्ड्रन फाउंडेशन के अध्यक्ष विनेश कुंजल ने कहा,
1: Si dans la famille, finina brutalité, finina présence de la drogue, finina bonne situation, coûte sa bonne sa enfant, une véhicule. L'Ilien, il ramasse ça en dedans et quand il vient les autres leur place, il retient lui. Il retient lui par quoi? Par violence physique, mentale et du bully, tout du monde qui est autour lui, etc. etc. Là, lui, il est incontrôlable. D'autres se retirent à soi, se disent, t'as envie de manger à soi, des heures du matin, se brotent dans la cuisine, de bouffer ça qu'ils ont envie, d'autres qui ont envie de guetter la télévision, de dire, je ne vois plus dormir, de faire un cas comme ça. C'était dans un cas pareil. L'hiver difficile pour un personnel capable de mettre un plan de travail avec eux. Et là, oui, on les autres, quand ils guettent un comportement pareil, ils ont une tendance, je crois, mais si ça a à faire, nous aussi, nous capables de faire pareil.
0: इन दिनों मॉरिशस में 8 रेजिडेंशियल केयर संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें से एक नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल की ओर से संचालित, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एवं अटॉर्नी जनरल की ओर से एक समिति की सह अध्यक्षता करने वाली एक समिति का गठन किया गया है, जो व्यवहार की गंभीर समस्याओं वाले बच्चों को संभालने से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। कुछ प्रमुख कमियां पाई गई हैं, साथ ही एक विशेष संस्था की अनुपस्थिति है और इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात को लेकर मौजूदा संस्थाओं के बीच कंसेंसस की कमी भी। ये निष्कर्ष निकाला गया कि आपातकालीन रूप से उन बच्चों के लिए एक विशेष संस्था कायम की जानी चाहिए जिन्हें व्यवहार संबंधी गंभीर परेशानियां
1: हैं। Qui est spécialisé, multidisciplinaire. Ça, l'équipe-là, il y a besoin d'un psychologue, d'un psychiatriste, il y a besoin d'un occupational thérapeute. Aussi, nous avons besoin d'un éducateur spécialisé pour comprendre comment pour faire pour travailler avec ces enfants-là. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin d'une équipe multidisciplinaire pour capable guider ces enfants-là holistiquement dans tout ce approche.
0: Cette nouvelle विशेष संस्था के दोहरे कार्य है, बच्चों के लिए शरण प्रदान करना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पर प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारी होंगे जो पूरी तरह से स्वायत्त भी होंगे। इस संस्था को कायम करने के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के हालिया सेशल दौरे का भी जायजा लिया गया। कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालें। पूर्व अध्यक्षा की हैसियत से आफुंग चुई यूंग चोंग ये जिम्मेदारी संभालेंगी। आयोग के दूसरे मेंबरान भी होंगे। त्रियोले में सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम फिर से नई सहूलतों के साथ कार्यरत होने लगा है। कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, स्पोर्ट्स मंत्री देवेंद्र नगालिंगम और इलाके के निर्वाचित सदस्यों ने इस मूल ढांचे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी अभियानों के दौरान वासियों ने इस स्पोर्ट्स सुविधा के स्तर को बेहतर करने की मांग की थी। मौके पर एक गैला मैच का आयोजन भी किया गया। राजीव कंपत, रजनी बेकर।
0: त्रियोले स्थित सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम में फुटबॉल की शाम थी। स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य किए गए, रोशनी की व्यवस्था की गई, जिसकी बदौलत रात में भी स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाई जा सकेंगी। साथ में चेंजिंग रूम, बैठने की जगह और अन्य स्थानों में भी मरम्मत के काम पूरे किए गए। निवासियों के लिए ये संतुष्टि की बात है, जो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
3: Mais aujourd'hui, nous gagnons des gars pour nous, ça fait nous un grand plaisir, nous sommes capables de pratiquer le football plus bien.
4: Il y en a pas mal, ils nous gagnent la lumière, nous recommençons nos entraînements à soi, tout ça.
5: Il y a beaucoup de jeunes qui viennent là, ils viennent jouer au football, et ben, un grand timon aussi qui viennent le matin, ils viennent faire du sport.
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के कल कमनों द्वारा रात में इसका औपचारिक पुनः उद्घाटन किया गया। युवा एवं खेल मंत्री तथा चुनाव क्षेत्र के सांसद और अन्य कई महानुभाव भी मौजूद रहे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स में लोगों के संगठित करने की क्षमता के महत्व पर बात की। इसके अलावा उन्होंने ये याद दिलाया कि स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य करने की मांग चुनाव अभियान के दौरान बासिंदों द्वारा की गई थी।
6: Passer dans la floodlights, ce qui brille, reste brillé. Ben aucun éclairage. L'air

0: vin monter ça hôtel là pas coupé seringue dans gazon fencing in cassé pas réparé les chiens errant partout et supposé faire sport là et moi tu promets si moi vin premier ministre nous pour refaire ce stade là pour du monde qui pratique sport comme besoin et aujourd'hui d'après ce que je trouvais là, ça se tient bien un bijou.
1: मंत्री देवेन नागालिंगम ने देश भर में सभी स्तरों पर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करते रहने की सरकार की पहल पर बात की. साथ में युवा उत्थान पर भी बात की गई.
2: क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स, dans tout niveau, nous allons sentir revivre. Et c'est ça qui nous veut faire. Le tour de l'île Maurice, doucement, doucement. Nous payons pas ou nous manquons ce qu'il fait parce que c'est un outil ça pour combattre la drogue ou bien donner un moyen pour qu'ils aient enfin là contents dans ce qu'ils veulent faire.
1: Triolet स्थित इस स्टेडियम का नया रंगरूप वहां उपस्थित लोगों को इलाके की दो टीमों के बीच एक पहले मैच को देखने का आनंद उठाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. एक ऐसा स्थान जो छोटे बड़े सभी को नियमित रूप से स्पोर्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
3: सर रविंद्रनाथ गबरन स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री ने पेंशन प्रणाली को लेकर भी बात की. डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसमें तभी पेंशन से में सुधार लाने का मुद्दा उठाया गया था. प्रधानमंत्री ने सबसे सॉलिडारिटी की मांग की ताकि सब अच्छी दिशा में बढ़ सकें. उन्होंने कहा कि रास्ता मुश्किल है क्योंकि पिछली सरकार ने गंभीर आर्थिक स्थिति छोड़ी है, लेकिन देश के बेहतर भविष्य के लिए ये चरण जरूरी हैं, कहा सरकारी नेता ने. उन्हें सुनते
0: हैं pour partager. Dans l'économie, il y a des affaires qui disent où there is no such thing as a free lunch. Toutes les affaires qui vous font, il y a des conséquences. Aujourd'hui, nous avons toutes les conséquences. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qu'il ne faut pas augmenter TVA. Pense à casser, payer pension. Pas ça la solution. Parce qu'il est insoutenable. Aujourd'hui, sa pension, son budget, il peut coûter plus que budget la santé, budget l'éducation et une partie pour le logement social. Vous mettez ensemble pension coûte plus cher. Moi pas connais réforme là pour un populaire. Mais c'est moi qui m'a besoin faire moi. Pareil comme un papa dans sur la case. Il a besoin faire certains sacrifices pour que ses enfants capables gagner l'avenir du vent. C'est ça qu'il nous peut faire. Et si pas vrai que personne va gagner de pension, hein? Si nous pas là maintenant il vient dire mais là vous trouvez pas pour gagner pension à un certain moment. Nous besoin d'être les global. Nous pouvons faire tout pour transformer ce pays là. Et moi me confie moi hein. Vous confions les temps venus, nous revenons devant vous pour connaître ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Mais il prend le temps. Parce que jamais nous connaissons, nous trouvons Venezuela, il y a un tremblement de terre, mais la case est écrasée, même les affaires ici-là. Je ne détruis l'économie Maurice. Nous avons besoin de refaire tout à zéro.
3: पुल बेरोंजे जोआना बेरोंजे और चेतन बाबूलाल आज सुबह प्रेस से मुखातिब हुए. पेंशन प्रणाली में सुधार पर मुख्य रूप से बात हुई और फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के गठन पर भी चर्चा हुई. यासिंदीन मोहम्मद की रिपोर्ट पर यचना मिश्रा का विवरण.
4: पेंशन प्रणाली में बदलाव को लेकर पुल बेरोंजे ने कहा कि प्रस्तावित प्रणाली में अनिश्चितताएं हैं. उन्होंने फाइनेंस बिल के परीक्षण के लिए गठित मंत्रालय समिति पर चर्चा की.
5: Qui est Ram Gulam pour présider un comité interministériel.
4: अब जाकर नवीन राम गुलाम एक मंत्रालय समिति की अध्यक्षता करेंगे. कम से कम संबंधित लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी. पेंशन फाइनेंस बिल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था. सबसे पहले बजट कदम प्रस्तावित करें और बाद में समय लेकर चर्चाओं के बाद पेंशन सुधार लाएं.
5: Dit de ce nom, ça veut dire une mesure qui se trouve là dès l'avant dans le budget. Après, prends les temps côté pensionnerie pour m'écouter, dialoguer.
4: मींस टेस्ट हटाए जाने के संबंध में पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण बाकी हैं.
5: Comment dire, juste ça fait mince test là qui problème non.
4: सिर्फ मींस टेस्ट समस्या नहीं,

0: 60 से 65 साल के बीच और उसके बाद भी कैसे पेंशन निर्धारित होगा? राजनीति को लेकर परबे होंगे ने फो मिलिटन प्रोग्रेसिव के भविष्य पर बात की। उन्होंने कहा कि ये दल ज्यादा तेजी से हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे कई गैर संसदीय संगठनों के साथ संपर्क में हैं।
1: आज युवकों के साथ जूनियर मंत्री दनेश्वर दामगी, फैब्रिस दावीद और सांसद कविराज रुकनी ने बजट 2026-2027 को लेकर एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग का आयोजन किया साइबर सिटी एबन में। नौजवानों ने बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं, खासतौर पर नौकरी के मौक़ों को लेकर और पेशवराना विकास के चलते खरीद क्षमता पर भी बात हुई है। कई साझेदारों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और लेंस को मॉरिशस शामिल है। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में करीब 900 सहकारिता संगठन हैं जो मुल्क की अर्थनीति के अहम सेक्टरों में काबिलेदाद योगदान दे रहे हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए कई पहल ली गई हैं, खास तौर पर नई नस्ल को सहकारिता क्षेत्र में कटिबद्ध होने में हौसला देने के लिए और हौसला देने के लिए नौजवानों से सहकारिता क्षेत्र का शोला जराए रखने की उम्मीद है, ताकि सॉलिडारिटी और समर्थन की बुनियाद पर खड़े किए गए आर्थिक मॉडल में नवीनता लाकर इसे आगे बढ़ा सकें।
0: लिस्कालिए सहकारी समिति की शुरुआत बेहद सरल तरीके से हुई थी। शुरुआती दौर में कुछ निवासी पेड़ की छांव में इकट्ठा होकर अपनी सहकारी संस्था के गठन पर चर्चा करने और इस सामूहिक परियोजना की नींव रखने आए। एक छोटी सी पहल जो समय के साथ एक बड़ी सफलता की कहानी बनी। 1940 में इसकी स्थापना हुई। चुनौतियों के बावजूद हम काम जारी रख पा रहे हैं, नौजवानों को भी साथ ला रहे हैं ताकि हमारा काम आगे बढ़ता जाए। आज ये सहकारी समिति 200 से अधिक सदस्यों को एक साथ जोड़ती है जो शक्कर उद्योग से जुड़े हुए हैं। संस्था अब नई पीढ़ी को भी आकर्षित कर रही है जो इसके विकास में सक्रिय योगदान दे सकती है। कानूनी क्षेत्र में कार्यरत युवा पेशेवर शेल्विन हमसामी अब इसके प्रशासनिक परिषद का हिस्सा हैं। सहकारिता जारी रहनी चाहिए, हमें समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हम नई प्रणालियां, टेक्नोलॉजी और ज्ञान ला सकते हैं। हालिया बजट के समर्थन के साथ अब सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक आधुनिक और प्रभावी साधनों से लैस करना है, ताकि वे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल सकें और अपनी प्रतिस्पर्धा तथा आकर्षण को और मजबूत बना सकें। डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में छाई है। हम सहकारी सोसाइटियों को एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स आदि दे रहे हैं, जहां वे खाता लिख सकते हैं, संचालन को डिजिटलाइज कर सकते हैं। मॉरिशस में लगभग 900 सक्रिय सहकारी समितियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कृषि, मत्स्य उद्योग, परिवहन और सेवाएं।
1: जी हाँ, और राज्यसभा कंपनी गॉर्डन पोर्टली में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई। इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में। आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डाला गया। विदेश में दक्षिणी यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। तेज़ गर्मी की वजह से दक्षिणी फ्रांस में कई जगहों पर आग लगी हुई है। मौतों की संख्या 2025 के पार है। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेश आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था, जिस पर मुकदमा चलाया गया। टैक्सी

0: पारिजियन की जगह उबेर टैक पारिजियन नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के साथ पेश हैं कुछ दूसरी खबरें अदिति गानू अवतार के साथ।
1: भारत, रशिया, कतर और ओमान समेत दुनिया के कई वरिष्ठ नेता और उच्चाधिकारी ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामिनेई की मैयत में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कई महीने पहले उनकी मृत्यु एक हमले में हुई थी। उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल पर दफनाया जाएगा। रशिया यूक्रेन के बीच हमले थमने के आसार नहीं दिख रहे। रूसी ताकतों द्वारा केंद्रीय यूक्रेन पर किए गए सिलसिलेवार हमले में कई लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये हमले आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए। ज़ापोरिज़्या और नीप्रो शहरों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। मौजूदा कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने दावा किया है कि वो लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। इस बीच 14 पॉइंट्स वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर विचार विमर्श चल रहा है। शांति वार्ता अली खामिनेई के अंतिम संस्कार के बाद जारी रखी जाएंगी। मध्यस्थों के अनुसार अगली बातचीत दोहा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ चलेंगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मेलबर्न में वे 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में शामिल होंगे, जबकि न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत चलेगी।
0: और अब फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने काबो वेर्द के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ, जहां पेनाल्टी शूटआउट में इजिप्ट ने बाजी मार ली। कोलंबिया और गाना के बीच रोमांचक मुकाबला आज सुबह हुआ, जहां कोलंबिया ने 1-0 से जीत हासिल की है।
2: केप वर्दी वाली खेले जी जान से, पर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना सामने था। हार कर सर ऊंचा करके जा रहे हैं केप वर्दी वाली। अर्जेंटीना का पहला गोल स्कोर करता है लियोनेल मेसी 29वें मिनट पर अफ्रीका के बहादुर ब्लैक शार्क्स हिम्मत जुटाते हुए इक्वलाइज करते हैं सेकंड हाफ में जुआते का गोल। फिर से अर्जेंटीना आगे, लिजांड्रो मार्टिनेज के गोल पर इंजुरी टाइम में लोपेस काबाल का ये लाजवाब गोल लाखों में एक। मैच पेनाल्टी सत्र की ओर जा रहा था, पर 111वें मिनट पर एक ओन गोल पर केप वर्दे का दिल टूटा। अर्जेंटीना 3-2। केप वर्दे की टीम की हिम्मत को सलाम। अर्जेंटीना जैसी महारथी को थरथरी दिलाना आसान नहीं है। अर्जेंटीना का अगला मैच इजिप्ट के खिलाफ होगा। मोहम्मद सलाह की टीम पेनाल्टी सत्र में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई। 1-1 रहा ये मैच। 3rd मिनट में इजिप्ट के लिए आशूर गोल स्कोर करता है, फिर हानी के ऑन गोल पर मैच बराबर। पेनाल्टी सत्र में भाग्य ने इजिप्ट का साथ दिया, मोहम्मद सलाह का लाजवाब पेनाल्टी और इजिप्ट की टीम क्वालिफाई खेलेंगे किसके खिलाफ? डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ।
0: और आज रात 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पैराग्वे की टक्कर फ्रांस से होगी। दोनों ही मुकाबले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अरविंद बिसेसर,
3: इस वर्ल्ड कप में अभी केवल 16 टीमें बचेंगी और बेस्ट ऑफ 16 शुरू हो गए हैं। कनाडा का मुकाबला मोरक्को से आज रात। कनाडा की टीम जो अपने ग्रुप में पहले स्थान पर आई थी, पहली बार के लिए यहां तक आई है और आगे जाना चाहेगी। उनके सामने है द अटलास लायंस, मोरक्को की टीम जिसने यहां तक आने के लिए नेदरलैंड्स को हराया, ग्रुप स्टेज में ब्राजील को रोका है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वर्ल्ड कप। पिछले वर्ल्ड कप में ये लोग सेमीफाइनल तक गए थे। सुबह 1 बजे पराग्वे और फ्रांस के बीच आमना सामना। आपको याद होगा 1998 में ये दोनों जब मिले थे तो मैच गर्म था, खासतौर पर यूजे लुई शिलावे और लोरेंट ब्लांक के

0: बीच ये सब पल यादगार हैं। पराग्वे की टीम ने जर्मनी को एलिमिनेट किया है, सॉलिड है, अनुशासन है इनमें, और ये लोग परेशान कर सकते हैं फेवरेट फ्रांस को। फ्रांस की टीम जिसने स्वीडन को रफा दफा किया, जी जी देशों की टीम में सब कुछ है, चाहे वो डिफेंस हो, मिडफील्ड और उनके चार स्ट्राइकर कमाल कर रहे हैं।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद उत्तर उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो के एक हिस्से पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा आज रात दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 21 से 24, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा। मौसम के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी है। एक जोरदार एंटी साइक्लोन दक्षिण पश्चिम की तरफ से नज़दीकी बढ़ा रहा है और इसी वजह से हमारे इलाके में ज़ोरदार हवाएं चलेंगी और ठंड भी महसूस की जाएगी और तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी आवी की मदद मिली है। नमस्कार, आदाब, शोक समाचार कुछ देर में।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: पालमा रोड कथबोन में 32 साल के 32 ईयर्स ओल्ड श्री दिविज अबनाराम, जो दिविज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल शाम साढ़े चार बजे इनके पिता बाडी अबनाराम के घर पालमा रोड कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4:30 PM। ओलीगुड नंबर 1 वाकवा में 66 साल के श्री गुरुदत्त दूधी, जो मुनुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल एक बजे इनके भाई सुनील दूधी के घर ओलीगुड नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ख्वामा मेल वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नोवेल फ्रांस विलेज हॉल के पास सवान रोड नोवेल फ्रांस में 44 साल की श्रीमती सोमा देवी बोला, पैदाइशी नाम तिलक, जो सोमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 12 बजे के घर सवान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। तागोलेन लाफ्लोगा में 44 साल के श्री शक्ति मुदू, जो शक्ति के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने बारह बजे इनकी पत्नी काजल मुदू के घर तागोलेन लाफ्लोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:45 PM। कैमिलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट साबले में 84 साल की श्रीमती परमाला गंदी पेम्बन, पैदाशी नाम रामसामी, जो विनोदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे मोरा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले वालिदे प्रेत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सिमेट्री रोड प्लान मान्यों में 36 साल के श्री वितीश बुदन, जो निचले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी सोमवार को साढ़े चार बजे इनकी माँ संध्या राबूजी के घर सिमेट्री रोड प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट

half past 4 p.m. Avenue Diou Nordine, Palma 4 Bonne-Mai. Marquise Avenue Diou Narayan, Palma 4 Bonne-Mai. Avenue Diou Narayan, Palma 4 Bonne-Mai. 59 साल के 59 years old श्री सूर्य दत्त लखन, श्री सूर्य दत्त लखन जो अशोक एम्पोटिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी पूनम लखन के घर एवेन्यू जीव नारायण पालमा कात्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। जानकी रोड पुत्रदो विलाज में 78 साल की 78 years old श्रीमती बृहस्पति राम जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी बेटी सीता झुमक के घर जानकी रोड पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। बेंगली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 years old श्रीमती बिदवंती मितन जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दो बजे इनके घर बेंगाली रोड बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहताज साहिब या बॉम्बू की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। मुसलमान रामफल बुआमोंग प्लेंडी पपाई में 70 साल के 70 years old श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दस बजे इनके घर बुआमोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोंग प्लेंडी पपाई की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। काली माई रोड रिविया जोंपो में 19 साल के 19 years old श्री अजागेन रंगास्वामी जो आविसेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी बाद में इनके पिता सिवन रंगास्वामी के घर काली माई रोड रिविया जोंपो से उठाई जाएगी। सिबालक लेन वाकवा में 70 साल के 70 years old श्री रोहित बहादुर जो राधेव मौशों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी पत्नी प्रेमिला बहादुर के घर सिबालक लेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।

रेडियो मर्शस पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए अभी के लिए सुनते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां। प्लेन वेयत खासकर रू मदद उल इस्लाम, इदगा लोरान, लापे, ले नेपवे, चाइना के कुछ हिस्से और उधर वाले पितुत में खासकर रू बुलवा विक्टोरिया, मामलों वेया, देपिने के कुछ हिस्से, उन सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार 5 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर आफ्टरनून के 1 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। दूसरी विज्ञप्ति सुन लीजिए। सिमेट्री रोड सेकोंस्टांस, एनएचडीसी विन्युल, एमएसए सेकोंस्टांस विलाज, निकोली

0: Road, Montselmant Frangipane, Residence Street Catherine, Temple Lane और रेजिडेंस लागरिमों के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार 5 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति सुन लीजिए। कोयराची बॉ पियोले टेरोज के इन हिस्से जो है बॉ मॉर्शन, मनमोजेल लोर, बोरत लेन, लाक्रॉजे मोटालोंग, मोसलमा बसावन, मोसलमा तारा, सीते दुल, बाटिस लेन, मोसलमा शेख दाऊद, मोसलमा चावरी और मोसलमा रिचवुड के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार 5 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति रोजेल के रहने वालों को और इन इलाकों के कुछ हिस्से जो है एवेन्यू बाउंड्री, एवेन्यू फॉकवाओ के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार ही 5 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति रिविया जुरांपा और इन इलाके जो है रोट रॉयल, कोकेम्बोग, विनर्स, फोकियाबक्स और एमसीबी, वहां के सभी रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल रविवार 5 जुलाई सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:00 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही और एक विज्ञप्ति पुत्रदो हमलेट और लिस्पेरेंस पीटों के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:00 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति रोजेल के रहने वालों को और इन इलाके के कुछ हिस्से गुद उगने सिलिकोट एंटेल्म और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल ही रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:00 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही और दो विज्ञप्तियाँ आप सुनिए। बोबासें के रहने वालों को खासकर इन इलाके जो है एपास डुक्टियालिसिया, एसओएस विलाज, फ्लैट सेलुसिया, एमआईटीडी सर खेर जगत सिंह कॉलेज, जॉन केनेडी कॉलेज और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल ही रविवार 5 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:00 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। बोबासे में ही इन इलाके जो है डुक्टियालिसिया, एवेन्यू कोडाबोकस, एवेन्यू फिलिप राउल, एवेन्यू मोदाव ड्रीम प्राइस बोबासें, रेसिडेंस विलमें, एनएचडीसी विलमें, डॉक्टर रिड मोहादेव बिल्टू, जुपेरे, शातोनेफ और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल ही रविवार जो है 5 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह के ही 9:30 बजे तक और इसके बाद दोपहर के 2:00 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो उन सभी जगहों में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी और उन सारे जगहों पर जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 5 जुलाई को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर जो नाडेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में पाया जाता है एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है।
3: रेडियो मॉरिशस
4: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस,
4: रेडियो मॉरिशस।
5: 毛里求斯广播电台，听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台7月4号的节目。 我是您今天的节目主持人张大卫。今天是歌曲节目，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。毛里求斯广播电台听众朋友你好，欢迎收听毛里求斯广播电台7月4号的节目。我是你今天的节目主持人张大卫，今日是歌曲节目，希望在这30分钟的节目中有你喜欢的歌曲。

सभी श्रोताओं को अनीता का करजोर नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस की लहरों पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं,

जीवन में हमें क्या करना चाहिए ये रामायण हमें सिखाता है, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत हमें सिखाता है, और जीवन में कैसे जीना चाहिए ये गीता हमें सिखाती है। अतः श्रोताओं, यथाशक्ति हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो इसे सुविचार के साथ आइए कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तों, कहा गया है कि संसार कतु वृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपि सुभाषित रसास्वादरः संगति सुजने जने। कहने का आशय यह है कि इस संसार रूपी कटु वृक्ष के दो ही अमृत के समान फल हैं। एक है सुभाषित का रसास्वादन तथा दूसरा है सज्जनों की संगति।

प्रियजन, यदि हम विचारेंगे कि हम किन कार्यों में अपना रत्न के समान अनमोल समय कहाँ लगाते हैं, तो पाएंगे कि हम तो अतीत की चिंताओं से ढके हुए हैं अथवा हम भविष्य की कल्पनाओं में लगे रहते हैं। मात्र कल्पनाओं में रहने से हम स्वर्णिम आभूषण रूपी समय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हमारा वर्तमान बांझ हो जाता है, उसमें कुछ उपज नहीं होता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। अतः अतीत व भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को ठीक करें, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा।

भक्तजन, जब आप दूसरों को दुख देते हैं तब ईश्वर आपकी मूर्खता पर हंसते हैं। जब आप स्वयं प्रसन्न होते हैं तब ईश्वर आपकी बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराते हैं। और जब आप दूसरों को सुख देते हैं तब ईश्वर आपको सम्मान करते हैं। ईश्वर द्वारा सम्मान प्राप्त करें, अर्थात दूसरों को सुख दे, ना कि दुख।

श्रोताओं, एक सुविचार इस प्रकार है कि मधुरता की मूर्तिमान प्रतिमा बनो। वाणी ही नहीं, व्यवहार में भी मधुरता का समावेश रखना चाहिए। तो इन्हीं सुविचारों के साथ श्रोताओं, यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

आप जहाँ से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में इंतिली खैर मकदम करते हैं। आइए आगाज़ करते हैं इस कलाम के साथ।

सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो लुक्मा खाता है तो उस पर अल्लाह ताला की हम्द व तारीफ बयान करता है और पानी का घूंट पीता है तो उस पर भी उसकी हम्द बयान करता है। बहवाला मुस्लिम शरीफ।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। दुआ है अल्लाह पाक आपकी नींद में राहत, बेदारी में आफियत, मामूलात में बरकत और दुआओं में कबूलियत अता फरमाए और आपको इत्मीनान कल्ब के साथ रूहानी सुकून और जिस्मानी सेहत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।
4: आज की रात रत्ना के संगी एमबी

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सब कोई के स्वागत करत है रत्ना और चला आज के कार्यक्रम के संगे जितना कोई हमने के संगे जुड़ गल हवन आशा है ये करब जाके आप सब कोई मजे में हवा और शाम दी के रात ठंडा तनी जस्ती बा चला गर्मा गर्म भोजपुरी गीत संगे आज के कार्यक्रम के बढ़िया बढ़िया गीत के मजा लूटब जा अभी से लेके 11 बजे ले हम रहब आप सब कोई संगे तो जहां कहूं से भी साथ देवत हवा कोनो खास मौका बा कोई के जन्मदिन बा या शादी होवता तो जरूर अपन पसंदीदा परिवार खातिन दोस्त खातिन अपन संगतिया खातिन गीत तुम मांगे सकब 4028085 4028085 पर और मेसाज विदा करे खोज था 5251700 नहीं भूलाइए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा आज के है पहला गीत संगे ललिता पुनीत के आवाज में रखल है आज के गीत इंदिरा सन से ढोलक मंगाईला तो चला एगो बढ़िया शुरुआत आज के कार्यक्रम के

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला तेरा घर में बैठ के गमट करे के मन कराता तो जरूर ट्यून इन करा रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन हर रोज शाम के सांझ के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलेला। और ढेर कोई हमनी के बोलेला हाई सब गीत सुन के तो जैसे नाचे के हमनी के मन करे, थपरी बजाए के मन करे, कमर डोलावे के मन करे, बहुत अच्छा लगेला। तो चला इसने बस खुशहाली के संगे आज के कार्यक्रम के संगे ढेर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन, तब इसने साथ दे दे रही है जा बढ़िया बढ़िया गीत बढ़िया बढ़िया चुटकुला संगे। चला हाई जा पर नवीन भैया हमनी के संगे जुड़ गल हवन, नवीन लक्ष्मण रोज बैल बगल से और उनकर पत्नी हवन चित्रा जी जे अभी तनी कमजोर हवन, पर चला भगवान से प्रार्थना करब जा कि हाली से अच्छा हो जाए। और चित्रा जी जे तू हमनी के सुनत हवा तो बस तोहरा शिव जी के कृपा बनल रही, तोहरा बहुत शक्ति मिली, बहुत आशीर्वाद मिली और तोहर जितना परिवार हवन तोहर बेटी लोग बगल से और खास कर निवेदिता और सच्चिदानंद जी जे हवन साथ हमेशा देवेलन मेबग से, ललिता और धनराज चरण जी अपन बेटी संगे स्वीटी संगे हमेशा साथ देवेलन मॉडल भैया बगल से, राज और अमृता उबिलक हमेशा जुड़ल रहेलन न्यू ग्रो बगल से और रमेश और प्रीति जी साथ देवेलन हमनी के गाँव बुआ बगल से, तो बस ऐसे ने साथ देते रहिए जा बहुते प्यार से सुख दुख के साथ ही हैं। और शिव जी से हये प्रार्थना करब जा कि जितना लोग अभी लोपिताल में हवन, बीमार हवन, पीड़ित हवन, उन सब कई के रक्षा करी और लीलो माथुर सुकन के हई गीत नवीन लक्ष्मण जी पसंद करले हवन उनकर खातिन। और ई चाचा चाची के किस्सा तनी सुनते चला, चाचा चाची के का बोलब, कौन दिन चाची ऐसे नींद में से भड़ाक से खड़ा हो गल तो चाचा हौजा बैठे बैठे अपन पोताप देखत रहलन, तो चाची के बोले कौन ची होल, बोले जानत हव हम एगो सपना देख ल, बोले कौन सपना, बोले सपना में देखले हैं हम तो गर्ल हैं स्विट्जरलैंड घूमे, हाँ हो बड़का आवियों में बैठ के हम तो स्विट्जरलैंड घूमे गर्ल हैं, हाँ जा जितना बर्फ बा, बड़का पालतो डले हैं ऊ जो तो नवा किन के हमने के देले रहल लाने पे ऊ पहन के हम तो जैसे हौतें में बैठ के सफ़र करत हैं और ऐसा बड़का बड़का पहाड़ी देखत हैं जेकर पे इतना इतना बर्फ बा। बोले अरे वाह तो काहे उठ गई ले हाली से मोल तो ता तोप के, चाची के बोले फेरो से सूत जाइए देख देखा निमन से तू घूम के आइए, काहे के हई पौसियों जो मिला था ना हई पौसियों में तोरा हम सच्चे के नहीं घुमावे सकब, सपना में घूम लिए तो उतना पैसा के खर्चा नहीं होई।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हाइजा पर रिहाना भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन। प्यारी रिहाना के बहुत बहुत प्यार और चला फिनिक्स से उसाद देवत हवन, हमेशा वो बहुत प्यार से साथ देवेलन। और चला हाइजा पर आ विश्वानी धुमन आज अपन जन्मदिन मनावत हवन। विश्वानी जी तरह जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार से, और बस ऐसे जीवन में खुश रहिए और अपन परिवार के प्यार हमेशा तोहर पर बरसल रही, प्यार मिलते रही तोरा। और तोहर संगे जुड़ गल हवन तोहर दू गो बहिन इंदिरा और शारदा, सखी हवन नीला और प्रतिभा, शोभा जी, गीता गजाधर और तोहर लैकवन दीपा, कुश, कोमल, धर्मा और सब दुमन परिवार, बिहारी राम किशुन और मथुर की परिवार के संगे तोरा ढेर ढेर आशीर्वाद। और चला हमारे MBC बगल से MBC की टीम देने से तोरा हाई गीत हैप्पी बर्थडे बोले खातिर। तो बस ऐसे ने हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जाओ, जितना कोई आज जन्मदिन मनावत हवन जरूर तू हमनी के जनैया और अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे सकब एगो कादो के रूप में, हम जरूर चलाओ अब जा तोहर खातिर।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन उमा जी फोजु साक से साथ देवत हवन उमा जी हमनी के बोले हाउ एगो गीत हा बहुत खुशी हवन शारदा सिन्हा के गीत चाची हाई जोन गीत तुम अंगले हवा वो फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गयल गीत हा तो चला है ये गीत चलाओ आप जा तोहर खातिन और आज हाई सप्ताह में तोहर पड़ोस में जे रहेला आरती के शादी होता तो चला आरती खातिन और उनकर सब परिवार खातिन है ये गीत शादी के गीत है तो जरूर तोहर खातिन चलाओ अब जा और हंसते मुस्कुराते ओकर जीवन बस ऐसे ने आगे लेके जाए चला हंसते मुस्कुराते है जा पर चचा कौन दिन ऐसे खुशी हो गल चाची के जाके पाछे से धड़ ले लग और चाची के बोले बहुत बहुत मेर्सी बहुत बहुत थैंकू तो चाची बोले अहो इतना प्यार काहे उमड़ता हो बोले हाँ काल खातिर काल के दिन खातिर तो चाची बोले काहे चचा बोले हाँ हमर काल के दिन तू इतना यादगार बना देलक वही से तोहरा थैंक यू बोलत हई तो चाची बोले तो काल तो हम तोहर संगे नहीं रहली हम तो हिया हमर माँ हिया गल रहली बोले वही खातिर तब बोलत हई हमनी के इतना पूरा दिन जितना शांति महसूस होल का बोलब तोहरा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: चल देखते देखते तो 9:30 हो गल। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत है और हाई कार्यक्रम 11 बजे ले जारी रही और बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे हाई जा पर विश्वानी दुमन जी के भी जन्मदिन हो गल और बढ़िया बढ़िया गीत के संगे संगे ढेर कोई हमनी के बोले आज उनकर भी जन्मदिन बा जरूर तोहर खातिन चलाओ अब जाएगो बढ़िया गीत पर आगे। ऐजा पर चाची ललिता कुशल हमनी के संगे जुड़ गल अवन थ्रियो ले बगल से और उनकर खातिर हमेशा लागी ना ही छूटे राम के हाई गीत के वो बहुत पसंद करेलन। आ ये गीत गायत्री जी खातिर भी चलाओ अब जा जेनुअल फोन से हमनी के साथ देवेलन बेटा आ जाए और संगे चाची ललिता है जा पर उनकर बहिन हवन सुदेवी ज्ञानी मीता और छोटी दीदी जे पोलौजे से साथ देवेलन दादी प्रभावती नुअल फोंस के सुखलाल मौसी माला राम जवन उषा लोकाना हरीश भैया और आत्माराम भैया खातिन लागिना ही छूटे राम के हाई गीत। और दादी और चाची जोन हमर हवन चाची चमेली क्या बोले बोले देखले हवा आजकल समाज में कितना शादी टूटता था। हम बोले हाँ चाची इतना शादी टूटता का बोलब कैसे समझाओ भाई सब नौजवान लोग के कि शादी खेल नहीं हो। बोले हाँ सम हाई जानत हवा जितना पति लोग हवन नहीं समझेलन सा तो हम बोली का है चाची ऐसे बोलत हवा। बोले हाँ गर्लफ्रेंड खुशी रहेला गर्लफ्रेंड के बीवी बनावे के खुशी रहेला गर्लफ्रेंड में बीवी के खोजेला और बीवी में गर्लफ्रेंड के खोजेला और जे उ ही छोकरिया खुशी हो जाए अपन बीवी बनावे के ओकरा तो थोड़ा बरिस में जाके दूसरा गर्लफ्रेंड खोजी। हाँ चाची है तो तू बिल्कुल सच्चा बात बोला था वो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आगे बढ़ावे खातिर मीराबाई दोमिया के पसंद के है गीत चलाओ अब जा विद्मावती संपत के आवाज में। और है ये गीत दरमिया परिवार पादिया परिवार खातिन और खास कर उनकर बेटियों और दामाद खातिन और जितना कोई हमनी के सुनत हवन। और का बोलब चाचा हमनी के बोले रात के हम तो एगो बड़का सपना देख के इतना डिड़ा गईनी कि का बोलब। हम बोली कैसे सपना चाचा? बोले हमनी के सपना में यमराज साक्षात हमनी के सामने ऐसे प्रकट हो गल। हम बोले अरे वाह यमराज के दर्शन हो गल। बोले यमराज के दर्शन करके के खुश होवे लगे? हम बोले हाँ चाचा हाई तो सच्चे बात बोला था वहाँ। हाँ बोला बोला चाचा कौन सी बोलन यमराज? यमराज हमनी के बोला तो चल तोहरा लेवे आल है। हम तो पसीना पसीना हो गई नी इतना डिड़ा गई नी का बोलब। हम तो बोल देने ऐसे कैसे हो हम तो इतना बुढ़ाल नहीं है हमर तो स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो यमराज बोले हाँ तोहर उम्र तो नहीं है होल बा पर तू जाने ल तू आज अपन पोताप जोन है घरे भुला गल हव और पोताप में तो लोक नहीं दल्ले हवन और जन तोहर बुढ़िया है तोहर पोता निमन से चेके करता केकर संगे तू हमेशा चैटिंग करते रहेला व्हाट्सएप पे जितना मैसेज तू सब छोकरी लोग के विदा करेला है सब मैसेज वह देख ले ले बा चाची। तो चाचा बोले हाँ हाँ यमराज भैया

हमनी के तू लेके जाइए असल में। देखो हम बोला था भैंसवा के हम बिल्कुल आगे में बैठब, आइए हमनी के लेके जाइए जल्दी से। ऐसे सपना देख के तो चचा डरा के एकदम से ठप से खड़ा होके बैठ गल। बोले अच्छा होल बाप रे बाप, ऐसे सपना देख लेनी का बोलब।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 9:41 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे चल हम भी जुड़ गल हाँ और मजेदार गीत सुना था तो और संगे संगे ठुमका मारत है आईजा पर गर्मा गरम और चला अगला गीत जन है बहुते मजेदार गीत और है गीतवा चलाव अब जा चाची शांता सुकागी खातिन से जमील फॉरेस्ट साइड से वो हमने के संगे जुड़ गल हवन और उनकर प्यारी नातिन संजना के जन्मदिन रहल काल नहीं 2 के यानी कि बीफे के इनकर मामा किरण पापा रावीन संगे हवन चाचा सुदेश सुजीत चाचा अशोक पुपू चांदनी और भैया हवन फावेश

माथुर सुकन की आवाज में रखल है गीत दादी बहुत प्यार से मंगले हवन उनकर खातिर। एगो ललना के गीत है तो चला है प्यारा सन गीत ओकर दादी की ओर से उनकर खातिर चलावट जा। संजना तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार हमर टीम देने से, और मजेदार कार्यक्रम सुनते रह, प्यार से हंसते रह, मुस्कुराते रह, जिंदगी बहुते हसीन है। और चुटकुला तो सुनते चला। चाचा कौन दिन चाची के बोले हाँ तू यूनिवर्सिटी कबो गल नहीं हवा, तो चाची बोले नहीं नहीं नहीं गल है। चाचा बोले काहे, तो चाची बोले ओ हमनी के कबो ऊपर चटनी नहीं मिलल बा। बोले कौन सी नहीं मिलल बा? बोले ऊपर चटनी नहीं मिलल बा हो। चाचा बोले अच्छा तोहर मतबल है अपॉर्चुनिटी। बोले हाँ हाँ वही तो बोला था। बोले वही कहाँ बोला था वा बुड़बक, अपॉर्चुनिटी और ऊपर के चटनी कहाँ बोला था वा तू।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हंसते रह मुस्कुराते रह और ही मजेदार कार्यक्रम संगे चला है। जापर आत्माराम भैया हमनी के साथ है।

देवत हवन और बेले से उजुड़ गल हवन बेले अगिवेश से और उनकर चार गो बहिंदा दीदी प्रभावती और संगे हवन छोटी और दीदी ललिता खातिन कुशल परिवार खातिन सब कोई खातिन और संगे हवन सुनीता दीदी खातिन चलावत हैं। अगला गीत और जन गीत मंगले हवन ऊ है ज्ञान महिपत लाल के आवाज में और मजेदार कार्यक्रम संगे चाचा और चाची के किस्सा के का बोलब हम रात के 10 बजे चाची के बोले आई हो जन लड्डू तोहर साथ तोहर माँ विदा कल हवन बहुत मन करा था खाई के डब्बा खोल के बैठल हवन और चाची के बोले हाउ कहाँ बा बोले कौन चीज खोजत हवा बोले रात के हाउ हथौड़ा खोजत हई बोले हथौड़ा काहे चाहिला बोले हाई जन लड्डू तोहर माँ विदा कर ले बा हम हमर दांत से तो नहीं टूटता कहिए से हथौड़ा मार के तोड़ब दब दब जाके खाई के मिली ओकरा

0: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
0: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम और आप सबको के साथ देवत हवन रत्ना। अभी रात के 10 बज गल बा और अभी से लेके और ही एगो घंटा रह गल बा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने खाते इंत चला आगे बढ़ब सब बढ़िया बढ़िया गीत संगे है जहाँ पर ज्ञान महिम बदलाल के आवाज में रखल है मजेदार गीत संगे। और जो अगला गीत चुनले हाई हई हा पूर्णिमा फोकिरा जी के आवाज में रखल और हई गीत मानती जी पसंद कर ले वन नुवेल फ्रांस से उनकर बहिन हवन आरती और आनंदी संगे हवन उर्वशी और अनुषा उनकर दुगो बहु दुगो नातीन हवन गिरीशा और मितिशा संगे हवन नातीन हितांशु भव्य और पुष्कर। चला बस आईजे ऐसने साथ देते रहिए जा और चचा चाची के झगड़ा का बोला दिन ब दिन जैसे चाची भी जैसे गाल बजावे लंस चचा भी जैसे खीस करे लंस का बोलब कौन दिन चाची इतना गुस्सा में चलाल चाचा के बोले देखिए देखिए तू एक दिन नरक में जाइब नरक में तोरा जगह मिली नरक में भी तोरा जगह नहीं मिली ऐसे बोल देलक चाची कि का बोलब तो चाचा बोले हाँ तो ठीक हा नरक में जगह नहीं मिली तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है काहे के तू जहाँ रह हम तो हौजा तनको नहीं जाब चचा भी फटक से जवाब देलक बुझाता है झगड़ा तो जाना था हौला मेघी के लड़ाई फिनी हो जाए पर चचा और चाची के लड़ाई झगड़ा कबो फिनी नहीं हुई।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है। रात के 10:06 हो गल बा और हई जा पर नीता खेदनी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन सेंट जूलिया विलार से और उनकर भाई जी के दामाद के जन्मदिन रहल 3 तारीख के यानी काल शुक के रहल पाविन सुकलाल जी के जन्मदिन उनकर पत्नी हवन आयुषी ममा हवन देवी का और संगे 2 गो लैका नयन और शुभ संगे हवन सासू माँ रीटा और फूपू सास हवन नीता जी संगे आज 7 दिवस हवन रूमा और कृष्णानंद अपन ममा हिया घूमे गल हवन और संगे संगे हवन वैभव विभा और उनकर बेटा वैष्णव जे मालेजी में हवन दमाद बाबू हवन रवि और छोटी प्यारी नातिन आव्या। तो चला प्रवीण शुक्लाल के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। एक और बात देवत हई तो खुशियाली के संगे साथ देते रहिए जा और चचा के तो हमेशा जाने ल न चचा इतना ज्ञान के बात का जानी कहाँ से खोज खोज के आने लन सो हमनी के बोले जाने ल जब झगड़ा हो जाला। हम बोली हाँ चचा हमेशा तो चाची संगे इतना झगड़ा करेला तो तोरा सुलहा कैसे होला हो

बोले हम जानीला टाइमिंग। हम बोले कौन टाइमिंग? बोले जितना भी हमने के सुना था वह जान लिया, जब वो कबो कभी तोहरा झगड़ा हो जाए तोहर बुढ़िया संगे तो तोहर बुढ़िया के कबो नहीं बोलिए पगला बुढ़िया, पगली हो गल हवा, हमेशा बोलिए ओकरा ए पगली छोकरिया तोरा नहीं बुधिबा। जैसे तू ओकरा छोकरिया बोलबे तो उ हंस के मुस्कुरा दे और तोहर झगड़ा ऐसे ने फिनी हो जाए।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर अमृता गणेश हमनी के संगे जुड़ गल हवन पिंटो बगल से और संगे हवन उनकर दूगो नातिन सोनिया और परी संगे हवन पूनम।

विशन और मीनाक्षी जी, हमने के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवलन और सब गणेश परिवार खाती अगला गीत के मांग करा था वन बहाल गौरी और सुग्रीव गौरी के आवाज में रखा लाई अगला गीत करब जा उनकर खाती नौरी ऐसा ठंडा के मौसम में जाना था चाचा कौन ची कलन चाची कौन दिन बेचारा सुतले रही और जाके ओकर पे एगो भोग पानी फेंक दिलक ऐसे हड़बड़ा के चाची नींद में से जाग गल और हम पूछले चाहे काहे चाचा हाई का कर देलक तू काहे चाची के गीला कर देलक काहे ओकर पे पनिया डाल देलक बोले हाँ हमर ससुर जी बोले रलन हमर बेटी है फूल के समान नाजुक है ओकरा कभी मुरझावे न दिया बुढ़िया सुतले रहल त हमनी के बुझाल कि जैसे मुरझा गल हवन हवे से पानी डाल देली ओकर पे हम बोली चाचा तू मार खावे वाला धंधा काहे करत हुआ

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:22 और हाई जा पर हमनी के संगी हवन पूर्णिमा फुकीरा जी जे साथ देवत हवन और उनकर एल्बम के अगला गीत मांगत हवन उनकर चार गो बेटी पिंकी प्राविनी पूजा और पूनम खातिन उनकर नाती हवन शायन श्वानिश कानिश आयन और संगे हवन उनकर नातिन परी उनकर सब संगतिया खातिन जे SSRN लोपिताल में काम करेलन सब और उनकर जितना जिले हवन जितना स्टूडेंट्स हवन गाँव पर से उनकर

तीन सब फुकीरा परिवार, देवी दयाल परिवार, कालिया चेती परिवार, नायको परिवार, दसोई परिवार जे आज बहुत खुशहाली में होवन, मगन में होवन। तो चल मगन में रहिए और मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा और ही मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर विजय बंदन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हमन खिलावेज से उनकर पत्नी हवन रेखा और साथ देवत हवन उनकर तीन गो बहिन चंदनी बिंदु कुमारी और उनकर सब संगतिया खातिन हैजा पर सुनीता जी भी गाँव गोब से बहुत प्यार से साथ देवत हवन उनकर बहिन कुंगुमा से साथ देवत हवन विमला जी और ही हवन गाँव गोब से अमृता जी और गुडलैंड से वीना जी भी हमनी के साथ देवत हवन तब ऐसने हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और हंसते हंसते चाल आगे बढ़ब सा और चचा गजोधर अपन संगतिया मनोहर से मिलन मिल के बोले हाँ कैसे हाल चाल भैयो। तो बोले बहुत बढ़िया चलता। तो बोले हाँ जाने ल हमर बुढ़िया बहुत गुस्सा करता, बहुत खीस करता। तो मनोहर भैया बोले हाँ हमनियों के बहुत खीस करता पर जानत हव हम एगो ऐसन बात बोल देले हैं ओकरा तब से उ तनी हमनी के संगे तनी कमती खिसियाला। तो चाचा बोले हमनियों के बताओ भैया है सिख है एगो राज के बात तो बतावा कैसे तू कौन चीज बोल देलक ओकरा। बोले जाने ल हम जोन दिन से ओकरा बोल देले हैं है गुस्सा है चिड़चिड़ापन जाने ल बुढ़ापा में आवेला उ दिन से उ कबो गुस्सा नहीं करता। इतना प्यार से हमनी के बोल देले काहे कि हम जैसे ओकरा बोल देले के हई कि गुस्सा जोन है उ बुढ़ापा के निशानी है तो ओकरा तनी त्राका लगेला। अरे वाह ऐसे राज के बात बोल देले हवा। जितना नानी दादी सुनत हवन अब तनी कम खिसियन से हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हाईजा पर आज लक्ष्मण जी भी हमनी के संगे जुड़कर हवन ला फ्लोगा बगल से और उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना आउरी प्रगति बहिन हवन मानती संगे हवन उनकर एगो भगिनी उर्मिला तुलसी उनकर साली साहिबा सुबा जी आज उनकर हियाँ घूमे आल हवन और हर भरी में तो राजन भैया साली साहिबा के नामे भूल गल बोले के चल लक्ष्मण परिवार संगे हंसते रह मुस्कुराते रह बस ऐसने जीवन बिताते रह और हमनी के प्यार से ऐसने साथ देते रहिया जा। और ये हैजा पर चचा जी खातिर एगो बढ़िया चुटकुला हमर जोन चचा गजोदर ह कौन दिन एगो बाबा जी के भेंट करे गल त बाबा जी के जाके बोले चचा कैसन हव बाबा जी तब बाबा जी बोले हम तो साधु है बाबा हम तो साधु है बेटा हमनी के तब भगवान राम जैसे रखे वैसे हम रहब तू सुनाओ बेटा तू कैसे हवा तो चचा बोले हम तो संसारिक आदमी है बाबा जी हम का बोलब हमनी के जोन सीता है हमर घर के मैया हमर पत्नी हमर बुढ़िया वो हमनी के जैसे रखी उसने रहब का बोलब चचा का बोलब बाबा जी गौरी ब्रदर्स की आवाज में रखल है अगला गीत चलावब जा राजन लक्ष्मण जी के पसंद पर
2: प्यारी प्यारी माँ

0: भोजपुरी तड़का
1: चला तनी ठेला ठेली के हाई गीत सुनब जा। साजिद जी रोजिल से हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर सब दोस्त खातिन सब संगतिया खातिन विनोद सिद्धत के आवाज में रखल बिस्टप में ठेला ठेली हाई गीत के उमांग करत हवन। और ठेला ठेली कहाँ बिस्टप के तो छोड़ द, घर में जितना ठेला ठेली होला का बोलब। कौन दिन चचा इतना परेशान होके चल गल फार्मासी में जाके भैया से बोले हमर बीवी हमर पत्नी जितना हमनी के संगे चपड़ चपड़ करेला, कोनो ऐसन दवाई बा जेकर से उकर मुंह बंद करब। तो फार्मासी वाला भैया बोले हाँ भैया का बोलब, जे रहते ऐसन दवा तो हम का दिमास के दिन सांझ के 8 बजे ले बैठत हैजा पर। तो समझ गई ला ना, जितना लोग अपन दुकान में अपन काम में देरी ले बैठेलन सब, काहे बैठेलन सब, तू तक खुद समझदार हवा हो।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो चला आगे बढ़ब सा आगे बढ़े खातिर अगला गीत जोन है चलाओ अब जबाई आबू आफिज उनका जितना नाती पोता हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी संगे हवन उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी बहाल गौरी की आवाज में रखल अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन

सूरज गुप्त मधु के आवाज में रखल आज के है आखिरी गीत, और है ये गीत के संगे आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हो जाए। हमने के साथ देलन हैजा पर युधीश, बहुत बहुत धन्यवाद युधीश, साथ देते रहिए जा। श्यामा जी भी हमने के बहुत प्यार से साथ, देलन बहुत बहुत प्यार सब कोई के, और जितना कोई हमने के अभी ले सुना था वन, आप सब कोई के दिन बढ़िया बढ़िया रही। रविवार के दिन तोहर परिवार संगे एगो निमन दिन बितैया, और हये साथ बस अपन सेहत के बहुत बहुत ख्याल रखिए, काहे के ठंडा बढ़ता और कबो कबो गरम कबो कबो ठंडा, ऐसे खोंकी ढेर कोई के धरता, तब बस अपन गर्मा गर्म चाय कॉफी पीते रहिए, और संगे संगे चाय संगे संगे तनी अदरक। चला इसी के साथ आज के रात के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त करे के बेरा हो गल बा, हमने के जाए घरे जाए के बेरा हो गल बा। आप सब कोई बहुत प्यार से साथ देलन, बहुत बहुत धन्यवाद, फेरों से भेट आप सा आवत सामदी के रात के, तबले अपन ख्याल रखिए और रत्ना की दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: प्यारे प्यारे रेडियो मॉरिशस के हमारे सभी श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। स्वागत है आप सबका सुनहरे पल कार्यक्रम में। एक बार फिर आपको ले चले हैं गोल्डन एरा के उस सुनहरे पल में, द 60s। आज खास तौर से जो संगीत है, जो फिल्म है उस दौर में बनती थी, जो जॉ कहते हैं, चाहे वो रोमांटिक मूवीज रही हो, चाहे वो म्यूजिकल फिल्म, चाहे सोशल ड्रामा, चलिए आज इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

0: कहो ना।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
0: फिर कहो।
1: दीवाना।
2: श्रोताओ, 1960s को बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता है, हम सब जानते हैं। ये वो दौर था जब फिल्मों में कहानी का दम था, संगीत में रूह थी और कलाकारों में एक अलग ही किस्म का चार्म। आज भी जब हम 60s की फिल्में देखते हैं या उनके गाने सुनते हैं तो एक गहरी सी मिठास दिल को छू जाती है ना। 60s के दौर में फिल्मों का एक अनोखा मिक्स होता था, रोमांस, ड्रामा, ट्रेजेडी, थ्रिलर, सोशल मैसेजेस फिल्म्स, सब एक साथ फलते फूलते थे।

चलिए उन फिल्मी जौ का कमाल देखते हैं जब बात करते हैं रोमांटिक मूवीज। इस दौर का रोमांस बहुत ही नाजुक, हल्का, गहरा और दिल से जुड़ा हुआ था। राज कपूर, शम्मी कपूर, देवानंद, शर्मिला टैगोर, दिलीप कुमार, साधना वगैरह वगैरह, सबके रोमांटिक केमिस्ट्री ने एक अलग ही जादू फैला दिया। सॉफ्ट गेज, स्लो मोशन सॉन्ग्स और नजर चुराकर मुस्कुराना, ये सब इस दौर की पहचान थी।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

बेकरार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: जाते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।

0: संवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ संवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ संवरिया। 60s
2: की फिल्में बिना मेलोडियस गाने म्यूजिक के सोचे ही नहीं जा सकती। कहीं पर क्लासिकल का छंद था तो कहीं मॉडर्न जैज का फ्यूजन। म्यूजिक ही फिल्म का बैकबोन होता था। फिर आया सोशल ड्रामा। ये वो वक्त था जब फिल्मों में समाज के मुद्दों को बहुत ही खूबसूरती से उठाया जाता था। गरीबी, समानता और इंसानियत के इमोशंस को इतनी शिद्दत से दिखाई जाते कि ऑडियंस दिल से कनेक्ट हो जाती।

या थ्रिलर और सस्पेंस। 60s में बड़ी खूबसूरती से सस्पेंस फिल्म्स बनी, जैसे कि वो कौन थी, 20 साल बाद, गुमनाम, मिस्टिकल म्यूजिक, हॉन्टिंग बैकग्राउंड्स को और ट्विस्ट फिल्ड कहानी, ये सब एक नए जॉ को डिफाइन करता था। और फिर आए फैमिली एंटरटेनर्स, बड़े घर, जॉइंट फैमिली, वैल्यूज और संस्कार, ये सब 60s की फैमिली फिल्म्स का स्पेशल चार्म रहा।

बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और जब बात हो रही है बॉलीवुड फिल्मों की, तो संगीत के बिना कोई भी फिल्म अधूरी ही रही। जो संगीत था उस दौर का रूह को छू जाने वाला था। 60s का म्यूजिक आज भी टाइमलेस है। इस दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन, रवि, सलील चौधरी, सब ने मेलोडी की दुनिया को एक ऐसा रंग दिया जो आज तक धुआं नहीं हुआ। फिर रोमांटिक मेलोडीज, लता जी की मधुर आवाज और रफी साहब, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे की सोलफुल गायकी, इन्होंने रोमांस को एक पवित्र रूप दिया। जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं आज भी दिल को पिघला देते हैं।

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

फिर आता है उस म्यूजिकल जॉन में क्लासिकल टच। 60s में राग बेस्ड सॉन्ग्स का एक रिच एरा था। मदन मोहन शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गजल और क्लासिकल न्यूएंसेस को फिल्मी गाने का हिस्सा बनाकर एक शानदार लिगेसी छोड़ी। तो दूसरी तरफ शम्मी कपूर के सॉन्ग्स, आरडी बर्मन का अर्ली मॉडर्न टच, इलेक्ट्रिक गिटार्स, रॉक एंड रोल बीट्स, 60s के गाने फन और यूथफुलनेस से भरे होते थे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ हसीना जुल्फों वाली या फिर पिया तू इस वाइब के हिस्सा रहे। और फिर सैड एंड सोल स्टीयरिंग सॉन्ग्स, मुकेश और रफी के दर्द भरे गीत दिल के तार हिला देते थे। उनमें एक सच्चाई और गहराई होती थी जो हर लिसनर से जुड़ जाती। श्रोताओं, 60s की फिल्में सिर्फ कंटेंट नहीं, एक विजुअल ट्रेड भी थी। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर ट्रांजिशन, सॉफ्ट फोकस कैमरा शॉट्स, एलिगेंट कॉस्ट्यूम्स, विंग्ड आईलाइनर, बुफॉन हेयर स्टाइल्स, क्लासिक सूट्स, ऑल एडेड एंड ओल्ड वर्ल्ड चार्म जैसे कहते हैं। शम्मी कपूर का एनर्जेटिक डांस, देवानंद की टाइटल्ड वॉक, साधना कट हेयर स्टाइल, वहीदा रहमान की ग्रेस, मीना कुमारी की नजाकत, ये सब एक एरा का कल्चरल आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि 60s की फिल्में और म्यूजिक दिल से बना होता था, न ज्यादा शो ऑफ, न लाउडनेस, बस इमोशंस, मेलोडी और कहानियों का असली स्वाद। आज भी गानों को सुनकर हम अपने आप को एक शांत, प्यारे और कहानियों से भरे वक्त में महसूस करते हैं।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandariki Hrudayapurvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में। जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं

0: चाली तक झुम तक ताली तक झुम तक झाला आंब तक झुक तक ताली के नक तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबो तारी के ताक झुम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबो तारी के झम तारी जग तारी तक नक तक तक झुम तक झुम तक झुम तक झम तारी जग तारी जन जाने को तक झुम तक झुम तक झुम तक तक दंग कर दम कर दंग कर दम तक दंग कर दम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: काटूंगा वही इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं पुत्री को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: This is Radio Voices.
2: 您好 ，Assalamualaikum. Welcome to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: ये सब गुजर को ट्रांसफर कर दो, मार खाएंगे।